मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज दिन है शुक्रवार, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 और 32 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये पहली सभा।

सुबह की पावन बेला और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ आइए करते हैं दिन की शुरुआत। तो नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आइए रुख करते हैं आकाशवाणी दिल्ली की ओर, जहां से अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरो मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से

0: शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा, जिसमें आज कद्दू वर्गीय सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। आइए सुनते हैं।
2: शुभ प्रभात। कद्दू वर्गीय सब्जियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं इस मौसम में। कारण यह है कि यही एक मौसम है जिसमें हम बहुतायत से इसकी खेती करते हैं। करने को तो इसको रबी में भी करते हैं, खरीफ में भी करते हैं, लेकिन जायद की बात ही कुछ और होती है। कद्दू वर्गीय जो हमारी सब्जियां हैं उनकी देखभाल में यह कहा जाता है कि हमें कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। कारण यह है कि इस समय कीट पतंगे या जो भी रोग के कारक हैं वह खुले में रहते हैं, फसलें उतनी रहती रहीं, उनके लिए आश्रय स्थल उतना रहता नहीं, इसलिए इनके सुरक्षा कार्य को संपादित करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियों में हम देखते तो रबी मौसम में हैं कि जो चोड़िल फफूदी होती है वह ज़्यादा लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो इसमें हम खीरा, परवल, खरबूजा और करेला विशेष रूप से उगाते हैं उस पर ये पाई जाती है मृद्रोमिल आसिता। रोग वर्षा ऋतु के उपरांत जब तापमान 20 से 22 सेंटीग्रेड होता है तब विकराल रूप धारण करता है, इसलिए पहले से ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हमारे अपने उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो इस रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग के मुख्य लक्षण पत्तियों पर कोणीय धब्बे जो शिराओं द्वारा सीमित होते हैं, पत्ती के ऊपरी पृष्ठ पर पीले रंग के होते हैं, अधिक नमी जो है उसकी उपस्थिति में इन भागों के नीचे पत्ती की निचली सतह पर मृद्रोमिल कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसके प्रबंधन के लिए भी वही सामान्य सी जो प्रक्रिया है उसको अपनाना चाहिए, जैसे कि बोने के लिए रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, बीजों का एग्रोसान नामक कवकनाशी जो है उसका 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोने पर भी फायदा होता है, मैंकोजेब 0.25% का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से भी नियंत्रण के लिए एक उपयोगी साधन के रूप में देखा गया है। पूरी तरह रोगग्रस्त लताओं को निकालकर जला देना चाहिए, क्योंकि वहां छोड़ेंगे तो फिर ये दूसरी जगह फैलाएंगे। रोग रहित बीज उत्पादन करने के लिए गर्मी की फसल से बीज उत्पादन करना बेहतर होता है, इसलिए इसी मौसम को आप चुने जिससे कि बीज आपका स्वस्थ मिले और अच्छा रहे। एक मलानी रोग होता है और साथ ही साथ जड़ सड़न जिसे हम कह लेते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ करके देखा जाता है। यह आमतौर पर खीरा और खरबूजा में पाया जाता है। रोग ग्रसित एवं पूरा पौधा मुरझा जाता है, पौधे की जड़ भी सड़ जाती है, जिसके कारण पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है और सूख ही जाता है। इसके प्रबंधन के लिए भी आपको इसी समय बेहतर रूप से सोचने की जरूरत है। जैसा कि एक सामान्य सी प्रक्रिया में अपनाया जाता है, रोग ग्रसित पौधों को खेत से निकाल कर जला देना, बीज को कार्बंडेजिम 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर उपचारित करके बोए हैं तो फिर कोई चिंता नहीं, आप निश्चिंत रहें और इस समय आपके लिए कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं होगी, फसल बचेगी। धान एवं मक्का के साथ अगर हम इसे देखें तो 4 से 5 साल तक का फसल चक्र अपनाया जाता है जब, तो स्थिति बेहतर हो जाती है। खेत की गर्मी में जुताई करें और हरी खाद का प्रयोग करके ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना अगली आने वाली फसल के लिए बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। वैसे हम देखते हैं ये कि फसल सुरक्षा जो कद्दू वर्गीय फसलों की बात हम करते हैं तो उसमें फल गलन रोग भी बहुत ही अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह रोग प्रत्येक स्थान पर देखा गया है, प्रत्येक खेत में पाया जाता है, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्य रूप से घिया तोरी, चिचिंडा, परवल, लौकी के साथ साथ करेला के फलों पर कवक की अत्यधिक वृद्धि हो जाने से फल सड़ने लगते हैं। धरातल पर पड़े फलों का छिलका नरम गहरे हरे रंग का हो जाता है और जब नम वायुमंडल होती है तो उस स्थिति में सड़े हुए भाग पर रुई के समान घने

0: कवक जाल विकसित हो जाते हैं, एक सामान्य से इसकी पहचान है। भंडारण और परिवहन के समय भी फलों में यह रोग फैलता है और फिर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कारण ये होता है कि पूरी फसल तैयार रहती है, केवल मार्केट में ले जाकर के बेचने की स्थिति जो होती है उस बीच यह नुकसान पहुंचा देता है, तो पूरे किए कराए पर पानी फेर देता है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें, ज़्यादा पानी न लगाएं। खेत की गर्मी में जुताई अगर की गई रही है, अगर ऐसी स्थिति रही है, तो फिर मान करके चलें कि इससे आपको काफ़ी हद तक सुरक्षा मिलेगी। और ये सुरक्षा अगर इस साल नहीं मिल पा रही है तो अगले साल के लिए ध्यान रखें कि खेत की गहरी खोप गर्मी की जुताई जिस खेत में लगाना है उसे अभी से कर दें। हरी खाद का प्रयोग करके ट्राइकोडर्मा 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना भी बेहतर सी स्थिति उत्पन्न करता है। फलों को भूमि के स्पर्श से बचाने का प्रयत्न तो बिल्कुल समसामयिक बात है, उसको आपको अभी करना ही करना है। भंडारण एवं परिवहन के समय फलों में चोट लगने से नुकसान होता है, हवादार एवं खुली जगह पर रखें। बेहतर होगा क्रेट्स का प्रयोग करें, वह सुरक्षा प्रदान करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, एंथ्रेक्नोज हो या फिर इसी तरीके के कुछ और होते हैं, लेकिन जो हमारी रोकथाम की प्रक्रिया है कद्दू वर्गीय फसलों में, बस इतने तक का ही रखेंगे ध्यान, तो कोई भी फसल जो कद्दू वर्गीय है इस समय की हमारी जायद की, वह विशेष रूप से सुरक्षित रहेगी।
1: कद्दू वर्गीय सब्जियों में फसल सुरक्षा कार्य, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह रघुवंशी। इसी के साथ खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, और अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

0: सबसे पहले आप सुनेंगे बापू के विचार।
1: मनुष्य का अंतिम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति। मनुष्य चाहे जो करे, उसकी सारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हलचलों को ईश्वर के साक्षात्कार के चरमोद्देश्य से परिचालित होना है। सभी मनुष्यों की तत्काल सेवा हमारे प्रयत्नों का अविभाज्य अंग इसीलिए बन जाती है कि ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय उसे उसकी सृष्टि में देखने का प्रयत्न करते हुए उससे एक रूप हो जाना है। ऐसी स्थिति सबकी सेवा लिए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। मैं समग्र का अंग हूँ और सारी मानवता से विलग होकर मैं समग्र से जुड़ा नहीं रह सकता। सच्चा व्यक्तित्व अपने को शून्य बना लेने में है। जीवन का रहस्य है स्वार्थहीन सेवा। सबसे बड़ा उद्देश्य है वीतराग बनना। ऋषियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सदाचार के नियम बनाए थे। ऋषि वह है जिसने वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। गीता ने फल की इच्छाओं से प्रेरित कर्म के त्याग को संन्यास कहा है। जो कामनाओं अर्थात कर्म फल की इच्छाओं को छोड़ देता है, जो जितेंद्रिय है, वही वास्तव में मनुष्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य जिस अनुपात में मानवता प्राप्त करता है, अर्थात मानव समाज से अपनी एकता का अनुभव करता है, वो उसी अनुपात में ईश्वरत्व के निकट पहुंचता है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति का विकास करे तो दूसरे व्यक्ति या समूहों द्वारा शोषण कम होता चला जाएगा।

व्यक्ति स्वयं अपने विवेक के अनुसार काम करेगा। भावना और विचार दोनों ही मनुष्य स्वभाव के अंग हैं। इंद्रियों की अंधी प्रगति के वश में होकर बुद्धि अथवा विवेक के अंकुश को अलग कर देना मानो एक बहुत बड़े मानवीय सत्ता क्षेत्र को छोड़ देना है। मनुष्य को ये सत्ता क्षेत्र कुछ दिनों के लिए सौंपा गया है। इस क्षेत्र में अच्छी और बुरी ताकतें हावी होने की कोशिशें किया करती हैं। लोभ और मोह इसे लेना चाहते हैं। इन्हें पराजित करना ही पुरुषार्थ है। जो किन्हीं बाहरी शत्रुओं से लड़ता है और भीतर के अनंत शत्रु के विरोध में एक उंगली भी नहीं उठाता, यहाँ तक कि उन्हें मित्र समझने की भूल करता है, सच्चा योद्धा नहीं है। विवेक के जाग जाने पर भावनाएं उसका अनुकरण करती हैं। विवेक को जगाने का अर्थ है बुद्धि को जगाना, अच्छे और बुरे में अंतर करना और आत्मा की आवाज को सुनना और समझना।

अभी आप सुन रही थी गांधी चर्चा, मीडियम वेव 401.61 मीटर पर। इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, और अब प्रस्तुत है आस्था प्रार्थना आत्मा व परमात्मा के प्रेम भाव से परिपूर्ण कार्यक्रम आराधना।

जब प्रभु श्री कृष्ण यमुना किनारे अपनी मुरली की मनमोहक तान छेड़ते हैं, तो क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, ये पृथ्वी और गगन सब झूम उठते हैं। सभी का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और हम सभी हरि दर्शन के आस लगाए रहते हैं।

ए प्राणी, तू ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। तुझे अन्य प्राणियों की अपेक्षा न सिर्फ बुद्धि वरन सब कुछ अधिक मिला है। इसलिए इस संसार में आने के बाद से ही तुझे मानवता और श्रेष्ठता की पल पल परीक्षा देनी पड़ती है। तू कर्म करता जा, फल की इच्छा न कर। फल देने वाला तो वो ईश्वर है जो हर पल तेरे साथ खड़ा है।

प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीला बहुत ही मनमोहक है। जब भी प्रभु यमुना के किनारे अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हैं, अपनी छोटी छोटी गैया के बीच मुरली की तान छेड़ते हैं, तो चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी झूम उठते हैं। उनका ये मनमोहक रूप देख सभी का हृदय प्रफुल्लित होता है।

हम सभी पर ईश्वर की कृपा यूं ही बनी रहे और हम सभी का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, इसी शुभेच्छा के साथ आज का भक्तिमय कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय पाठ।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुंधुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी, किंतु केवट नाव नहीं लाता। कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में

सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता, कहता है, नाथ आज मैं कहा न पावा।

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस से आज का संगीतमय प्रसंग। स्वर थे सुरेश वाडेकर के और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों

0: पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, हमारी दिनचर्या और हमारी रोजमर्रा की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना कितना जरूरी है, ये रोज हम आपको बताते हैं हमारी स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। और आज के इस कार्यक्रम में नीना सोनकर हमें बताने जा रही हैं स्वास्थ्य का खजाना चकोतरा के बारे में। आइए सुनते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है एक ऐसा फल जिसे आप बाजार में देखकर शायद कई बार नजरअंदाज कर जाते होंगे, लेकिन अगर इसके गुण जान लें तो इसे अपनी थाली में शामिल करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं चकोतरा की। चकोतरा दिखने में मोटा और भारी होता है, लेकिन अंदर से रसीला, ताजगी से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक गुणों का भंडार है। चकोतरा का स्वाद अनोखा होता है, खट्टा मीठा और कभी कभी हल्की कड़वाहट लिए हुए, लेकिन यही स्वाद इसे खास बनाता है। हमारे देश में ये खास तौर पर उत्तर भारत, उत्तर पूर्व और दक्षिण के कई हिस्सों में उगाया जाता है। ग्रामीण इलाकों में तो इसका उपयोग परंपरागत औषधि के रूप में वर्षों से होता चला आ रहा है। जब खाना भारी पड़ जाए, पेट फूलने लगे या सर्दी जुकाम की शुरुआत हो तो चकोतरा काटकर उसमें थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च डालकर खा लेना एक तरह की घरेलू दवा मानी जाती है। चकोतरा में सबसे प्रमुख पोषक तत्व तो है विटामिन सी, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। जब शरीर बार बार थकने लगे, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाए या घाव भरने में वक्त लगे तो ये संकेत होता है कि शरीर को विटामिन सी की जरूरत है। ऐसे में चकोतरा एक आदर्श फल है जो न केवल पोषण देता है बल्कि शरीर की अंदरूनी रक्षा प्रणाली को भी मजबूत करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं, कोशिकाओं को क्षय से बचाते हैं और त्वचा को अंदर से पोषण देकर उसे दमकता और युवा बनाए रखते हैं। यही वजह है कि चकोतरा उन फलों में गिना जाता है जो डिटॉक्स यानी शरीर की सफाई करने की प्रक्रिया में बेहद कारगर होते हैं। इसे सुबह खाली पेट खाने से शरीर को ताजगी तो मिलती ही है, साथ ही पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं पाचन की। तो चकोतरा में रेशा भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो पेट की सफाई में सहायक होता है। जो लोग गैस, अपच या बार बार कब्ज की शिकायत से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये फल एक प्राकृतिक उपाय है। इसका सेवन भोजन से पहले करने पर भूख बढ़ती है और बाद में करने पर भोजन का पाचन बेहतर होता है। खासतौर पर भारी और तेलयुक्त भोजन के बाद अगर एक टुकड़ा चकोतरा खा लिया जाए तो वो पेट को हल्का बनाए रखने में मदद करता है। चकोतरा का रस हृदय के लिए भी लाभकारी माना गया है। इसमें पोटेशियम और फ्लेवोनाइड्स की उपस्थिति इसे हृदय की धमनियों के लिए लाभदायक बनाती है। ये रक्तचाप को संतुलित रखने, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और रक्त प्रवाह को सुधारने में मदद करता है। कई शोधों में ये सामने आया है कि नियमित रूप से चकोतरा जैसे फल खाने से हृदय रोगों की संभावना कम हो सकती है। इसका एक और बड़ा लाभ है वजन को नियंत्रित करना। चकोतरा में कैलोरी की मात्रा बेहद कम होती है, लेकिन फाइबर अधिक होता है जिससे ये पेट को भरता है और बार बार भूख लगने की प्रवृत्ति को कम करता है। जिन लोगों को वजन घटाने की प्रक्रिया में बार बार भूख सताती है, उनके

0: लिए ये एक अच्छा नाश्ता या सलाद का हिस्सा बन सकता है। इससे शरीर को पोषण भी मिलता है और वजन नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। चकोतरा में एक विशेष ताजगी होती है जो गर्मियों में शरीर की गर्मी को शांत करने और मानसून में उमस से राहत देने का काम करती है। यही कारण है कि कई लोग इसका शरबत बनाकर गर्मी के दिनों में पीते हैं या फिर इसे सलाद में शामिल करते हैं। इसके छिलके का भी अपना महत्व है। पारंपरिक चिकित्सा में चकोतरा के छिलके का पेस्ट त्वचा पर लगाने से कील, मुहासों और एलर्जी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। अब बात करें इसके मानसिक प्रभाव की। इसका सुगंधित स्वाद और हल्का तीखापन मानसिक थकावट को दूर करता है और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। जब काम के दबाव में मन भारी हो जाए तब चकोतरा का एक टुकड़ा खाने से मूड में एक ताजगी सी महसूस होती है। यही वजह है कि इसे कभी कभी मूड बूस्टर फ्रूट भी कहा जाता है। श्रोताओं, चकोतरा न केवल एक फल है बल्कि ये एक ऐसा प्राकृतिक उपहार है जो स्वाद, सौंदर्य और स्वास्थ्य तीनों को एक साथ पोषण देता है। ये सादा होते हुए भी चमत्कारी है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसे छीलिए, काटिए, स्वादानुसार मसाला डालिए और फिर धीरे धीरे उसका स्वाद और गुण दोनों महसूस कीजिए। श्रोताओं, चकोतरा की खट्टी मीठी मिठास को अपने जीवन में शामिल कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वास्थ्य का खजाना चकोतरा, इसके बारे में अभी हमें स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत बता रही थी नीना सोनकर। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। तो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब आइए डालते हैं एक नज़र आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। जिले की हलचल आप सुन सकते हैं सुबह 9:15 से, जिसमें आज आप सुनेंगे वाराणसी और गाजीपुर जिले की हलचल। सुबह 9:30 का वक्त होगा उर्दू कार्यक्रम का। आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज आप सुनेंगे मुशायरा। आज के शायर होंगे जनाब अतीक खान, जनाब सूफी गोंडवी और जनाब आमिर मुख्तार। समनिदेशिती होगी शमशुल आरफीन की। विश्व रेड क्रॉस दिवस, इस विषय पर विविधा प्रोग्राम में सुबह 7:10 से आपके साथ होंगी सीमा शाही। सुबह 7:31 से शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे शीतल प्रसाद मिश्र का तबला वादन। विज्ञान और किसान, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे कृषि वानिकी की उन्नत पद्धतियां। इस विषय पर सुरेश चंद्र दीक्षित की भेंट वार्ता, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। लोकगीतों के लोक माधुरी कार्यक्रम में आज दोपहर 2:40 से आप आनंद लेंगे डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के गाए लोकगीतों का। और यही लोकगीत आप सुन सकते हैं लोकरंग कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 9:50 पर भी। युवा तरंग, युवा साथियों का ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:10 से, जिसमें आज की बात क्रम के अंतर्गत आज चर्चा होगी विश्व रेड क्रॉस दिवस और यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक पर। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 का। लोक आयतन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 से, जिसमें आज आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण विषय पर चर्चा, साथ ही साथ डिजिटल पद पर बढ़ता ग्रामीण भारत। इस विषय पर राधेश्याम दीक्षित की भेंट वार्ता आप सुनेंगे, भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अंग्रेजी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:31 का, जिसमें आज

सुनेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत शुक्ला से डीकोडिंग सिंबोलिज्म के बारे में। महिलाओं के लिए अपराजिता कार्यक्रम के अंतर्गत आज दोपहर 1:15 से चर्चा होगी सुरक्षित बचपन हर बच्चे का अधिकार इस विषय पर। साथ ही आकाशवाणी @90 कुछ यादें कुछ बातें इस विषय पर महिलाएं सुनेंगी श्रीमती शारदा यादव और नीना श्रीवास्तव की भेंट वार्ता। भेंट करता होंगी ममता उपाध्याय। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषि वानिकी के बारे में। तो ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।

और श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में अब पेश है विविधा। नमस्कार, लखनऊ के इस खास सेगमेंट में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, आभार। विविधा, ये खास प्रोग्राम लेकर आज हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानवता, सेवा और करुणा के मूल भाव से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है विश्व रेड क्रॉस दिवस।

दोस्तों साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने रेड क्रॉस दिवस मनाने की शुरुआत की थी। भारत में रेड क्रॉस की स्थापना हुई साल 1920 में और तब से ये संस्था निरंतर सेवा कार्यों में जुटी हुई है।

इतिहास हमें यही सिखाता है कि मानवता की सेवा का भाव समय के साथ और भी मजबूत होता गया है। तो दोस्तों, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिन उस महान व्यक्ति यानी कि हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने मानव सेवा को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने ये संदेश भी दिया कि संकट के समय हर इंसान की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म है।

रेड क्रॉस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है, चाहे युद्ध हो, प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई महामारी। रेड क्रॉस हमेशा मानवता की सेवा में तत्पर रहता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यही सिखाता है कि सेवा, सहयोग और करुणा केवल शब्द नहीं है बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस संगठन के 7 मूल सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। ये सब इसके कार्यों की आधारशिला मानी गई है।

यदि हम इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे कि रेड क्रॉस ने अनेक संकटों में लोगों की मदद की है। युद्ध के समय घायल सैनिकों की देखभाल से लेकर प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्य तक इस संगठन ने हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाई है। भारत में भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी स्वास्थ्य सेवाओं यानी कि रक्तदान शिविरों और आपदा राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये संस्था समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाने का प्रयास करती है। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है तो रेड क्रॉस हमें ये प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में मानवता और सेवा के मूल्यों को अपनाएं। हमें ये समझना चाहिए कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है ना?

दोस्तों, सेवा का भाव ही समाज को जोड़ता है। यदि हम दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़े तो एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव है। दोस्तों, सेवा का भाव ही समाज को जोड़ता है। यदि हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता के लिए आगे बढ़े तो ये कदम एक बेहतर और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, अंत में चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। तो आइए हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि हर जरूरतमंद की सहायता करेंगे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन को लाने का पुरजोर प्रयास करेंगे। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ आज के विविधा कार्यक्रम से सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नमस्कार लखनऊ का ये खास प्रोग्राम विविधा। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे गोरखपुर केंद्र से रिले प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन

0: आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1,00,000 से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
3: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जातीय गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचा है।
5: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर

0: उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
2: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
3: किसानों ने मांग की कि सेल्फ लाइफ बढ़े तो हम बेच पाएंगे, नहीं तो हमारा खराबी हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है। तो हम सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे, विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम। क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जहाँ फलों की बैगिंग की गई है।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
4: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक एक की तलाश जारी थी। IPL क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच में 19 ओवर में 3 विकेट

पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 7:32 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। तो आइए श्रोताओं, इसके अंतर्गत सुनते हैं शीतल प्रसाद मिश्र का तबला वादन। वादन 3 ताल में निबद्ध है, आइए सुनते हैं।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शीतल प्रसाद मिश्रा का तीन ताल में निबद्ध तबला वादन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 8 बजने को है, अब से बस थोड़ी देर में रिले किया जाएगा समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के

0: सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ता

0: के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है। देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है। कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: News. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकान असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के अरकान असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तो लैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी ज़रई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इकदामात का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफबरदारी की तकरीब हफ्ते के रोज़ 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज़ से ही शुरू हो गईं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नबीन और मुतअद्दिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीरे आला और नायब वज़ीरे आला को भी तकरीब के लिए मदऊ किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएस की मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वज़ीर दाखला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4,000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे क्योंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है, इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकान असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिल का वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या ना देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरत हाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टियों ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जुमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का यह फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबरा एम के स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकान असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और कहा कि मौजूदा सियासी गैर यकीनी के हालात में गैर मुतवक्को फैसले भी सामने आ सकते हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के

मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजिमीन के साथ साथ उनके अरकाने खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर तो लैम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में कलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान तआवुन और इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों के सनतकार, सरमायाकार और पेशेवराना अफराद जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों से वाबस्ता हैं, एशिया के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के दो रोजा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइक के बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमराह 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भी है। सदर तो लैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दिसा नाइके की दावत पर कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की क़यादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलंबो में श्रीलंका वियतनाम तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, तहकीक और स्टार्टअप इको निज़ाम में तआवुन और इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुज़ाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब डॉक्टर वू हाई क्वान के साथ दो तरफा मुज़ाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मसनू जहानत, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इख्तराई इको निज़ाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तआवुन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तराई मराकज से मुतालिक तआवुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाती इश्तराक का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चेंबर के चेयरपर्सन डॉक्टर एम जे खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज़्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़राई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तराई सफर और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अबू जहबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर मुमलिकत और खसूसी एलची रीम अल हाशमी और फ्रांस की यूरोपी और खारिजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेन्स शामिल थे। वजारत खारिजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकत दारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाइहा अमल के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। इसकी वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाए हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।

आप हमारे केंद्र के सभी कार्यक्रमों को डीटीएच के माध्यम से और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आप सभी के मेल और फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का। तो जल्दी से करें हमें मेल और भेजें हमें अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश। हमारी ईमेल आईडी नोट करें, हमारी ईमेल आईडी है आपके मेल आपके गीत @gmail.com। तो आइए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

आरती मुखर्जी की आवाज़ में। श्रोताओं आपको बता दें कि इस गीत की फरमाइश का मेल हमें आया था दतरंगी से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण थे भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अपना प्रिय कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। तो आप हमें जल्दी से मेल करें और सुने अपनी फरमाइशी फिल्मी गीत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना अगला मेल। ये मेल हमें भेजा है ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने। आप सबने सुनना चाहा है नदिया के पार फिल्म का ये प्यारा सा गीत। तो आइए आपको सुनवाते हैं हेमलता की आवाज़ में गाया ये गीत, जिसका गीत और संगीत तैयार किया है रविंद्र जैन ने।

0: हेमलता की आवाज़ में नदिया के पार फिल्म का ये था प्यारा सा गीत। तो आप भी अगर अपने फरमाइश के फिल्मी गीत सुनना चाहते हैं तो हमें जल्दी से मेल करें आपके मेल आपके गीत @gmail.com पर।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: तो श्रोताओं, सुबह के 8:59 और 46 सेकंड हो रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत। तो जल्दी से करें हमें मेल और सुने अपने फरमाइशी फिल्मी गीत। तो चलिए लेते हैं अगला अपना मेल जो कि आया है मेरठ कैंट से। लिखने वाले हमारे श्रोतागण हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। तो आप सबने सुना चाह है अपनी पसंद का ये गीत जो है कर्ज फिल्म का, एक हसीना थी एक दीवाना था। जी हाँ, ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और ऋषि कपूर की आवाज़ में। तो आइए सुनिए आनंद बख्शी का लिखा ये प्यारा सा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर।

कर्ज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, आशा भोसले और ऋषि कपूर की आवाज़ में। कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आपके मेल आपके गीत, और अगला गीत आइए शामिल करते हैं। पहले आपको बता दें इस गीत की फरमाइश का मेल हमें कहां से आया है। चंडीगढ़ सिटी से हमारे श्रोता ने भेजा है ये मेल, सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी ने। आप सबने सुनना चाहा है दुल्हन फिल्म का ये प्यारा सा गीत, तो आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में दुल्हन फिल्म का ये गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: किशोर कुमार की आवाज में ये था दुल्हन फिल्म का गीत।
1: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए, रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: श्रोताओं, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। जी हाँ, वक्त हो रहा है 9:10 और 18 सेकेंड और कार्यक्रम चल रहा है आपके मेल आपके गीत। तो जल्दी से करें हमें मेल और सुनें अपने फरमाइशी फिल्मी गीत। तो चलिए लेते हैं अपना अगला मेल जो कि हमें भेजा है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गव्या मल्होत्रा ने। इन्होंने हमें मेल लिखा है अनारकली बाजार जगराओं से। जी हाँ, तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवा देते हैं। आपने फरमाइश की है दो बदन फिल्म को सुनने की और इस फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। शकील बदायूनी का गीत लिखा हुआ है और संगीत है रवि का। आइए सुनते हैं।

0: रवि की बनाई तर्ज पर शकील बदायूनी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में दो बदन फिल्म से। इसी के साथ आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। श्रोताओं, आप हमारी कार्यक्रम डीटीएच के माध्यम से भी सुन सकते हैं, साथ ही न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। 9:15 होने को है। अब प्रस्तुत है जिले के हलचल। आज सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काशी दौरे के दौरान 6332.08 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 2464.46 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय पुल के पास बनने वाले रेलवे रोड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा 1582.99 करोड़ रुपए की सीवरेज व जलापूर्ति योजनाएं तथा 429.36 करोड़ रुपए के कबीर चौरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल परियोजना का भी शिलान्यास किया। लोकार्पित प्रमुख परियोजनाओं में 308.09 करोड़ का STP, 144.43 करोड़ का कजाकपुरा ROB और सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज शामिल है। प्रधानमंत्री का यह दौरा काशी के समग्र विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण

0: और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित भव्य बौद्ध महोत्सव श्रद्धा, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरा। गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में देश विदेश से आए 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा इंडो श्रीलंका जम्बू द्वीप बुद्ध विहार सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मूल गनकुटी विहार में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए तथागत बुद्ध विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, वहीं सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धम्म देशना, विपस्सना और विचार गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सेवा और करुणा का संदेश भी प्रसारित हुआ। इस अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव सुमितानंद थेरो ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा पावन दिवस है।
1: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तरफ से सारनाथ में हर साल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि ये मूलगंधकुटी महाविहार में रखा है, हम लोग को भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन कर रहा है।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस की पासिंग आउट परेड वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से परेड को संबोधित किया, जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर किया गया। वाराणसी मंडल के विभिन्न भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में कुल 3,070 प्रशिक्षु आर्ची अब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के रूप में सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। वाराणसी, जौनपुर एवं गाजीपुर जनपदों के प्रशिक्षण केंद्रों सहित PSC 36वीं वाहिनी रामनगर एवं 34वीं वाहिनी भुल्लनपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आरक्षियों ने परेड में भाग लिया। इसके बारे में विस्तृत रूप से वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में विशेष रूप से महिला आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया।
2: 491 महिला आरक्षियों ने यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किया है। दीक्षांत परेड 491 महिला आरक्षियों की यहाँ पर हुई है। इन महिला आरक्षियों की जो लगभग 9.5 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, इन महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को पूरा किया है,
0: जिसमें से 491 महिला प्रशिक्षुओं ने भी परेड में सहभागिता की। परेड के उपरांत इन सभी महिला आरक्षियों को विभिन्न थानों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जहाँ वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुदृढ़ीकरण एवं जन सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर एवं गाजीपुर प्रशिक्षण केंद्रों से 1390 आरक्षियों ने भी परेड में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय की चेक वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर के गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि वे देश के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने मानदेय वृद्धि को शिक्षा मित्रों के मनोबल को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।
3: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: गाजीपुर के कासमाबाद तहसील स्थित कयामपुर छावनी गांव में मगई नदी पर लोगों ने श्रमदान कर पुल निर्मित कर दिया, जिसका लोकार्पण प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव ने किया। मगई नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 15 से 20 गांव के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। इसके लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की एवं आपस में चंदा इकट्ठा कर मगई नदी पर पुल निर्मित कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा कि यह संकल्प शक्ति एवं अच्छी सोच का ही परिणाम है कि आज ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के मगई नदी पर पुल बनाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में गाजीपुर के भावरकोल

0: ब्लॉक अंतर्गत पलिया गांव निवासी उमेश राय ने कोलकाता के चर्चित हावड़ा उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव पलिया सहित पूरे जनपद में जश्न का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब गाजीपुर में भी दिखने लगा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने पिछले दिनों एक पावर हाउस के 10 ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में विभागीय संलिप्तता को देखते हुए 3 अफसरों को और 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ प्रमोद यादव, जेई राजीव गुप्ता, जेई नीरज खरवार को निलंबित कर दिया। वहीं 2 संविदा लाइन मैन बर्खास्त कर दिए गए। पिछले दिनों गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में हुई संदिग्ध मौत के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी कटरिया गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पिछले दिनों गाजीपुर में हुई बरसात और आंधी तूफान के कारण जहां सब्जियों को नुकसान हुआ, वहीं तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला मृतकों के परिजनों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 1 मई को गाजीपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने श्रमिकों के साथ बैठक की और उन्होंने उनके बीच मजदूर दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गाजीपुर में 780 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है तथा उन्हें 3.25 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुसार गाजीपुर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रमिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस ने जनपद में अपराध मुक्त वातावरण बनाने की उद्देश्य से पुलिस की 12 टीमों के द्वारा एक गैंग के 61 सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि गैंग के 24 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तथा गैंग के कुल 90 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने राजभर समाज के आजादी की लड़ाई में योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में 26 राजभर युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी राजभर समाज महाराजा सुहेल देव के चलाए रास्ते पर ही चल रहा है एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गाजीपुर पहुंचे एवं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बीच भी भारतीय युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर न्याय आपके द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए यह लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें बैंकिंग तथा पारिवारिक वाद के मामले तथा अन्य विभिन्न मामलों का भी निपटारा होगा। इस लोक अदालत के माध्यम से वादकारी का समय, श्रम एवं पैसे की बचत होगी। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भागकर अपने मामले को निपटाएं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गाजीपुर के 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों 2 आरोपियों राहुल यादव एवं दयाराम सिंह ने न्यायालय में हाजिर हुए एवं उन्हें जेल भेज दिया गया। 1 आरोपी सर्वांश वर्मा की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य 3 के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कुर्की आदि के माध्यम से पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। अभी आप सुन रहे थे जिले की हलचल। इसके अंतर्गत आपने सुना वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। तो श्रोताओं, आइए डालते हैं एक नजर आज के प्रमुख शेष कार्यक्रमों पर। न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण का अनुप्रसारण समय रहेगा सुबह 10:10 का। अब से बस थोड़ी देर बाद यानी 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज की पेशकश होगी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। आज आप सुनेंगे मुशायरा। आज के शायर होंगे जनाब अतीक खान, जनाब सूफी गोंडवी और जनाब आमिर मुख्तार। समुन्देशिती होगी समशुल आरफी की।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम आप सुन सकते हैं दिन में 11 बजे से। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा दिन में 12 बजे का। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाई सुनेंगे कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी। आलेख एवं वाचन होगा शिव राम पांडे का और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। साथ ही कृषि वानिकी के बारे में चर्चा भी होगी इसी कार्यक्रम में। रात्रि 8:10 से सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे अरशद हुसैन चिश्ती के गायी कव्वालियों और नाच शरीफ का। तो ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण।
1: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
2: तुमने दिया आवाज लो मैं आ गया।
1: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
0: श्रोताओं अब आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 9:30 हुए हैं। अब पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश है आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से, जिसमें आज आप सुनेंगे मुशायरा। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेज़बान शम्सुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, एक बार फिर से हम आपकी खिदमत में महफिल शायरी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की महफिल में हमारे साथ शरीक महफिल हैं मोहतरम जनाब अतीक फतेहपुरी साहब, मोहतरम जनाब सूफी गोंडवी साहब और मोहतरम जनाब आमिर मुख्तार साहब। आप तीनों का हमारे उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम है।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
1: तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग

0: लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। इसी शेर के साथ मैं दावत देता हूँ मोहतरम जनाब अतीक फतेहपुरी साहब को कि वो अपना कलाम पेश करें।
1: गजल का मतलब समाज फरमा
0: जी अता करें मोहतरम।
1: उसकी आमद का इशारा भी जो पाया मैं।
0: वाह, उसकी आमद का इशारा जो पाया मैंने।
1: उसकी

0: वाह।
1: अपने कमरे को बहुत देर सजा।
0: वाह वाह वाह वाह, बहुत ही खूब, बहुत खूब।

0: बहुत खूब अतीक साहब
1: और शेर सुनने का
0: जी अता करें मधुर भाई
1: कि घूम फिर के वो मेरे पास चला आता
0: वाह घूम फिर कर वो मेरे पास चला आता।

0: बहुत ही खूब
1: शेर सुनने का
0: जी जी जी
1: तौर पर
0: जी
1: कि आंधियां रोज सरे शाम बुझाने आई।
0: वह आंधियां रोज शमे
1: आंधियां

0: ये गदर के चंद शेर।
1: मैं सुकून दिल की तलाश में,
2: मैं सुकून दिल की तलाश में
1: न

0: समर गया, बहुत ही खूब, बहुत खूब है भाई, बहुत खूब, क्या गजल है।
1: आखिरी शेर भी ये भी खुशी तौर पे समाज फरमा ले कि तेरी बेरुखी का है गम मुझे,
0: तेरी बेरुखी का है गम मुझे,
1: क्या कर

0: जी जी
1: जख्म बहुत गहरा है,
0: जख्म बहुत
1: जख्म बहुत गहरा है जो अभी तक भरा नहीं। जख्म बहुत गहरा है जो अभी तक भरा नहीं, तौबा ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होने की। तौबा ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होने के। और देखिएगा उस मालिक के हमदोसना में है शेर, एक पत्थर को कोहिनूर बनाने वाले
0: जी,
1: जलवानुमा हर जर्रे में किस शान से है इनकार नहीं होने की। जलवानुमा हर जर्रे में किस शान से है इनकार नहीं होने के। और एक सूफिज्म का शेर है
0: जी, जी, जी,
1: जो आप लोग के नज़ कर रहा हूँ। गलती आदम ने किया,
0: गलती
1: आदम ने किया सजा मूसा को दिया। गलती आदम ने किया सजा मूसा को दिया, तेरे वजूद का जलवा है कोहितूर पे दीदार नहीं होने की। तेरे वजूद का जलवा है कोहितूर पे दीदार नहीं होने के। और देखिएगा
0: जी जी कर।
1: उस मालिक के हमदोसना में
0: जी जी जी,
1: तू क्या है कैसा है क्यों है क्या कहना, तू क्या है कैसा है क्यों है क्या कहना, बहरूपिया है बस खुदा है इनकार नहीं होने। एक गजल का मतलब मुलाहिजा फरमाए
0: जी, अता करे।
1: मेरे शहर का चौक अभी जिंदा है,
0: मेरे शहर का चौक,
1: मेरे शहर का चौक अभी जिंदा है, रौनकें मोहब्बतें शौक अभी जिंदा है। रौनकें मोहब्बतें शौक अभी जिंदा है, वो डर का तिजारत करता है,
0: वो डर का तिजारत करता,
1: वो डर का तिजारत करता है, इसीलिए शहर में खौफ अभी जिंदा है।
2: अच्छा, वो डर का तिजारत करता है,
1: वो डर का तिजारत करता है, इसीलिए शहर में खौफ अभी जिंदा है।
0: सामिन, सूफी गोंडवी साहब के कलाम के बाद इस महफिल के आखिरी शायर मोहतरम जनाब आमिर मुख्तार साहब का इस शेर के साथ खैर मकदम करते हैं कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, और नहीं लगेगा उसे देख कर मगर खुश है, नहीं लगेगा उसे देख कर मगर खुश है, मैं खुश नहीं हूँ मगर देख कर लगेगा नहीं। मोहतरम आमिर मुख्तार साहब माइक पर।
3: बहुत शुक्रिया, और एक मतला और एक शेर से शुरुआत करता हूँ
0: जी जी, अता करें मोहतरम,
3: और फिर एक मुकम्मल गजल पेश करने की
0: जी जी
3: कोशिश करूंगा।
0: अता करें मोहतरम।
3: जो गुनाहों से दूर होता है,
0: जो गुनाहों से दूर होता है
3: उसके चेहरे पे नूर होता है।
0: वाह क्या शेर है भाई।
3: जो गुनाहों से दूर होता है
0: उसके चेहरे पे नूर होता
3: उसके
0: है,
3: उसके चेहरे पे नूर होता है, मंजिलें करती हैं तवाफ उसका,
0: मंजिलें करती हैं तवाफ उसका,
3: मंजिलें करती हैं तवाफ उसका, जिसको फन पे उबूर होता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या शेर है, बहुत ही खूब, बहुत खूब मोहतरम।
3: गजल के चंद अशआर
0: जी जी अता करें मोहतरम।
3: था कभी सच का ताजदार कलम,
0: था कभी सच का ताजदार कलम,
3: था कभी सच का ताजदार कलम, खो चुका अब मगर वकार,
0: खो चुका अब मगर वकार कलम, वाह,
3: खो चुका अब मगर वकार कलम। ये हुस्न मतलब ही
0: जी जी अता करें मतलब।
3: हो गया कितना दागदार कलम,
0: हो गया कितना दागदार कलम,
3: हो गया कितना दागदार कलम, जब से बेचा है तुमने यार
0: कलम। वाह वाह वाह वाह, सच्ची बात है भाई, बहुत खूब, सदाकत पर मबनी ये शेर है आपका, बहुत ही खूब।
3: तुमने यार कलम। और ये भी शेर
0: जी इरशाद मोहतरम,
3: तवज्जो का तालिब
0: जी जरूर।
3: लिख रहा है कसी दे जालिम के,
0: लिख रहा है कसीदे जालिम के,
3: लिख

0: एक सच्चाई और
1: जी, अता
0: कलम
1: करें
0: की है,
1: मतलब।
0: हकीकत है। इनकलाब आए हैं जमाने
1: इंकलाब आए हैं
0: में,
1: जमाने में,
0: इनकलाब आए हैं जमाने में, यानी तलवार की है
1: धार
0: धार
1: कलम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: कलम,
1: बहुत ही खूब।
0: यानी
1: तलवार की है धार कलम।
0: तलवार की है धार कलम। और ये भी शेर,
1: जी अता करें।
0: अहदे हाजिर की सिर्फ बात
1: अहदे हाजिर की
0: नहीं,
1: सिर्फ बात नहीं,
0: अहदे हाजिर की सिर्फ बात
1: जाकिर आमिर साहब ने बहुत
0: नहीं,
1: अच्छा अंदाज दिया था।
0: हर सदी का है
1: राजदार कलम, हर सदी का है राजदार कलम।
0: राजदार
1: क्या खूब
0: कलम,
1: शेर है भाई,
0: हर
1: बहुत खूब,
0: सदी का
1: बहुत
0: है
1: उम्दा,
0: राजदार
1: बहुत ही
0: कलम।
1: खूब।
0: और ये भी शेर,
1: जी अता करें। आतिक भाई आप भी शामिल हो जाइए।
0: क्या
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ।
0: कहें दोस्तों मगर सच
1: क्या
0: है,
1: कहें दोस्तों मगर सच ने।
0: क्या कह

0: बहुत ही खूब। अब सियासत का है शिकार कलम, बहुत खूब
1: शिकार कलम। और ये आखिरी शेर मक्ते से पहले,
0: जी जी जी अता करें मोहतरम।
1: कोई तहरीर सच न बोल सकी,
0: कोई तहरीर सच न बोल सकी,
1: कोई तहरीर सच न बोल सकी, चीखते रह गए हजार कलम,
0: चीखते रह गए हजार कलम,
1: चीखते रह गए हजार,
0: बहुत उम्दा है।
1: और ये मक्ता भी
0: जी,
1: दास्तां जुल्म की लिखो आमिर,
0: दास्तां जुल्म की लिखो आमिर।

0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: कर रहा है
0: बहुत उम्दा
1: ये इंतजार कलम,
0: बहुत अंदाज, क्या
1: था कभी सच का ताजदार कलम, खो चुका मगर वकार कलम।
0: बहुत खूब आमिर मुख्तार साहब। सामईन, ये थे जनाब आमिर मुख्तार साहब, जिनके कलाम से आप हजरात लुत्फ अंदोज हो रहे थे। सामईन, आज की ये खूबसूरत महफिल अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। हम अपने तीनों शोरा कराम के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा। ये खूबसूरत पेशकश थी मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब की। कैसा लगा हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम? अपने तासुरात हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kklsurdu@gmail.com। अगर आप अपने पैगाम हमें व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लीजिए, 7991778157। एक बार फिर सुने, 7991778157। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपने मेज़बान शम्सुल आरिफीन को दें इजाज़त, आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम, आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब चलिए आपको ले चलते हैं गांव जवार की माटी से जुड़े लोक परंपरागत गीतों की ओर। कार्यक्रम है लोक रंग। तो श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम में अवधि माटी की खुशबू फैलाने आ रहे हैं डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इनका गाया ये देवी गीत।

डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत आप सुन रहे हैं लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत, और अब आइए आपको सुनवाते हैं इनका गाया खेमटा।

0: जाऊं मथुरा नगरिया। ये खेमटा आप सुन रहे थे डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के स्वरों में। कार्यक्रम था लोक रंग और आपके साथ संगत करता थे ढोलक पर इफ्तिखार आलम, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम थी सिद्ध प्रकाश त्रिपाठी की। इसी के साथ लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और श्रोताओं सुबह के 10 बज चुके हैं और अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत प्रोग्राम का। तो चलिए फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उदित नारायण, शंकर महादेवन, सैफ अली खान, हेमा सरदेसाई और हरिहरन की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। राम लक्ष्मण का संगीत है और गीत लिखा है मिताली शशांक ने। फिल्म है हम साथ साथ हैं।

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज़।

यस बॉस। इस फिल्म से अभी आप सुन रही थी अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत, जिसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत था जावेद अख्तर का, माफ कीजिएगा, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था जतिन ललित का। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। सुबह के 10:10 होने को हैं। अब से बस थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। तो बने रहिए हमारे साथ और ट्यून करके रखिए आकाशवाणी लखनऊ।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट तीन अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नामित किया। समाचार विस्तार से। अमेरिका

0: के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 3 अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमरीकी सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तीनों अमेरिकी जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल आए। अमेरिकी सेना ने इन जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को नष्ट कर दिया और ईरानी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने कहा है कि वो युद्ध आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हर हाल में अपनी सेना की रक्षा के लिए तैयार है। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने टकराव की शुरुआत की और ईरानी सेना ने केवल इसका जवाब दिया। अमेरिका और इसके अरब सहयोगियों के बीच तनाव के बाद ये हमला हुआ है। है कि सऊदी अरब ने जबरन जल डमरू मध्य मार्ग खुलवाने के अमेरिकी प्रयास में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: उधर सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमेरिकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए कोई स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्क लगाए जाने की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि 1-2 मत से इस टैरिफ को अवैध बताया। ये फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी झटका है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। इस वर्ष जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और फरवरी में अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों पर प्रगति का भी जायजा लिया गया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबू धाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में संविधान परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। डॉक्टर शर्मा न्याय परिषद द्वारा भेजे गए 6 उम्मीदवारों में वरिष्ठता क्रम में 4th स्थान पर हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने की। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: नेपाल में पहले आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर होती थी, लेकिन इस बार वरिष्ठता क्रम को छोड़कर डॉक्टर शर्मा का नाम आगे बढ़ाया गया है। नेपाल के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 3 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इस पद के लिए योग्य न्यायाधीशों में सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर नाहकुल सुबेदी और तिल प्रसाद श्रेष्ठ शामिल थे। न्यायिक परिषद द्वारा अनुशंसित

0: पीछे व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हैं और संविधान किसी की भी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आयु सीमा 65 वर्ष है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं पायल शर्मा।
1: रूस ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में आज से 10 मई तक संघर्ष विराम की घोषणा की है। ये घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की विजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक सम्मेलन में कहा था कि रूस 9 मई के विजय दिवस परेड के दौरान मॉस्को के रेड स्क्वायर पर संभावित ड्रोन हमलों के डर से युद्ध रोक सकता है। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लैम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। एक रिपोर्ट।
2: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और व्यापार तथा निवेश सहयोग को बढ़ाना है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। ये पिछले 15 वर्षों में किसी वियतनामी राष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है। राष्ट्रपति तो लैम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, संसद को संबोधित करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इससे पहले राष्ट्रपति तो लैम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। श्री लैम ने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
1: बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 6 बच्चों की मौत ढाका में और शेष की बारिसाल, खुलना, मेमन सिंह, राजशाही और सिलहट में हुई। महानिदेशालय ने बताया कि इनमें से 1 बच्चे में खसरे की पुष्टि हुई जबकि 11 बच्चों में खसरे जैसे लक्षण पाए गए। देश भर में 1238 बच्चों में खसरा जैसे संक्रमण के लक्षण हैं। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि क्रूज जहाज पर फैले हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 3 अन्य मामलों में संक्रमण का संदेह है। WHO के अनुसार स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये संक्रमण क्रूज जहाज MV होंडियस से जुड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 3 अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नामित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप इस सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। और अब चलिए आपको सुनवाते हैं सुहाने मन भावने नए नए फिल्मी तराने। कार्यक्रम है चित्रपट से।

0: जरा हट के जरा बच के। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे वरुण जैन और सचिन जिगर शादाब फरीदी, साथ ही अल्तमश फरीदी की आवाज़ में। संगीत था सचिन जिगर का और गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने।
1: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज़।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नए फिल्मी तराने। तो चलिए आपको सुनवाते हैं गदर 2 फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह के साथ मिथुन ने। संगीत है मिथुन का और गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने।

0: अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज़ में आप सुन रहे थे गदर टू फिल्म का ये गीत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद
0: श्रोताओं। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण और कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। तो आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं पद्मावत फिल्म से शिवम पाठक की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं AM तुराज ने और संगीत है संजय लीला भंसाली का।

शादी में ज़रूर आना, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे चित्रपट से कार्यक्रम में। अब आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत गुड न्यूज़ फिल्म से। गीत को गाया है दिलजीत दोसांझ, सुखबीर, ध्वनि भानुशाली ने और गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने।

अमित त्रिवेदी और देव नेगी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से ये गीत। संगीत था अमित त्रिवेदी का और गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस वक्त आप सुन रही हैं कार्यक्रम चित्रपट से, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नए फिल्मी तराने। तो चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं भूत बंगला फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत है प्रीतम का, आवाज़ है विशाल मिश्रा, नक्काश अजीज और अंतरा मित्रा की।

प्रीतम की बनाई तर्ज पर कुमार का लिखा ये गीत आप सुन रही थी। नकाश अजीज, विशाल मिश्रा और अंतरा मित्रा की आवाज़ में फिल्म थी भूत बंगला। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं नए फिल्मी तराने चित्रपट कार्यक्रम के अंतर्गत। अब आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, पति पत्नी और वो दो फिल्म से।

गीत आपको सुनवाते हैं, पति पत्नी और वो दो फिल्म से। राजेश रोशन का संगीत है और गीत है इंदिवर का। ये गीत गाया है गुरु रंधावा के साथ हीर ने।

गुरु रंधावा और हीर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे पति पत्नी और वो दो इस फिल्म का गीत। कार्यक्रम चित्रपट से यह आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गाना कलंक फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है प्रीतम का।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कलंक फिल्म का गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, और समय हो चला है कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहेंगे। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को निधि चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि ये हमारा संगीत का, फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, तो जल्द

0: से हम आपको अपना नंबर बता दें ताकि आज जो भी नए श्रोता हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी हमें कॉल करके अपने पसंद के गीतों की फरमाइश हमसे कर सकें। तो हमारा नंबर है 0522-22-38825। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 0522-22-38825। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत और जान लेते हैं कि आज के हमारे पहले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से निधि चौधरी जी का भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ मैं।
0: मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हूँ दीदी, आपकी दुआ और भगवान की कृपा से मैं बढ़िया हूँ और ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम सबकी यही कामना है कि हम सबके जो भी श्रोता जो इस आकाशवाणी को सुनते हैं चाहते हैं वो सभी सलामत रहे हमेशा, उन भगवान की कृपा उन सब पे बनी रहे। बताइए आज कौन से गीत की फरमाइश लेके आए आप?
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो है हीर रांझा और गाने के बोल हैं मिलो ना तुम तो जी घबराए, मिलो तो आंख चुराए तुम्हें।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या गीत है। तो किसको डेडिकेट करना चाहते हैं आप ये गीत?
1: जी, पुराने गीत अच्छे लगते हैं मेरे को। मैं क्या है, पुराना ही, बहुत पुराना लिसनर हूँ
0: जी जी,
1: और पुराने गाने अच्छे लगते हैं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, तो किसको आज डेडिकेट कर रहे हैं आप ये गीत?
1: हाँ बहन जी, कुछ आपने मेरे मन की बात छीन ली, यही मैं आपसे बोल रहा था कि मैं कुछ मित्रों को याद कर लूं, लेकिन आपने बोल दिया, आपको धन्यवाद। और
0: जी,
1: मेरे मित्र इस तरह से हैं कि गोपाल ओझा जी हैं
0: जी
1: मध्य प्रदेश से, ककवासा जिला गुना से, और गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, दिनकर सिंह जी हैं चित्रकूट धाम से, फूलचंद पाल जी हैं मनकारी से, प्रेमदास बाबा जी हैं, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, विजय कुमार पांडे जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं सीहोर मध्य प्रदेश से, राकेश जी हैं शिमला से, इन सभी को बहन जी ये गाना डेडिकेट रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए आपको और आपके सभी चाहने वालों को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।

0: हीर राजा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, और आइए अब जान लेते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हेलो, माफ़ कीजिएगा, हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक ये प्यारा सा गीत डॉन फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे

बोला सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ हाँ, अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से।

सुबहला खुल जाए बंद अकल का ताला।

0: डॉन फिल्म का गीत अभी आपने सुना, और आइए अब जान लेते हैं कि कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो,
1: निधि जी नमस्ते
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
1: जी थैंक यू सो मच निधि जी, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: जी
1: गर्मी काफी फिर से 2 दिन से बढ़ गई हमारे यहाँ पे।
0: अच्छा, हमारे यहाँ
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: आजकल आंधी पानी तूफान सब आ रहा है लखनऊ में तो।
1: जी बिल्कुल जी जी मैं आपको बताऊं, 1 हफ्ते पहले यहाँ पे भी आंधी, मतलब धूल भरी आंधियां भी चली थी, थोड़ी सी हल्की सी बरसात भी हुई थी, लेकिन फिर से 2 दिन से मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, और अभी मतलब ऐसे लग रहा है कि कूलर वो ऐसी को छोड़ के कहीं जाए ही नहीं घर से बाहर।
0: ये बात तो सही है, और बार बार इतनी जल्दी जल्दी मौसम जो चेंज होता है उसकी वजह से हमारे शरीर पे बहुत फर्क पड़ रहा है, ये बात।
1: जी बिल्कुल,
0: हाँ
1: जैसे बताऊं आपको, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कच्ची केरिया काफी मात्रा में मिल रही है।
0: अच्छा, ओके,
1: जी हाँ, तो उसमें चटनी और ऐसे मतलब सब्जी बना के लोग काफी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ में आकाशवाणी लखनऊ सुनते रहते हैं। कुछ तुम कहो कुछ हम कहे एक कार्यक्रम हमारा सबसे फेवरेट होता है,
0: वाह
1: जिसमें
0: वाह,
1: हर राज्य के श्रोता फोन लगाते हैं, अपनी पसंद के गाने सुनते हैं, सभी की
0: बिल्कुल
1: बातें बड़ी अच्छी होती
0: जी
1: है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज आप कौन से गीत की फरमाइश लेके आए हैं?
1: जी, फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, और गाने के बोले मैं तो रास्ते से जा रहा था, लेकिन अभी इतनी गर्मी है ना निधि जी,
0: जी
1: मुझे रास्ते से कहीं भी नहीं जाना है, घर पे ही रहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, घर पे
1: जी
0: आराम करिए, घर से बैठ के जितना हो सके उतने काम को मैनेज करिए, और आकाशवाणी लखनऊ को ऐसे ही सुनते रहिए, अपना एंटरटेनमेंट करते रहिए। तो किसी का नाम लेना
1: जी
0: चाहेंगे आज आप?
1: जी बिल्कुल, हमारे दोस्त आकाशवाणी लखनऊ के हैं,
0: जी
1: आकाशवाणी लखनऊ के हैं दीप्ति जोशी जी और भगवान सिंह परमार, और हमारा एक ग्रुप बना हुआ हेलो फरमाइश रेडियो एक्टर ग्रुप के सभी श्रोता,
0: अच्छा, चलिए आपको
1: और निधि जी
0: सुनवा,
1: आपके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी,
1: जी।
0: लीजिए
1: और
0: सुनिए
1: इतनी
0: अपनी
1: गर्मी है ना, आप कहीं रास्ते से बाहर मत निकलिएगा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: जी थैंक यू सो मच, नमस्ते जी।

0: कुली नंबर वन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और आपको बता दें कि कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और ये सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आइए जान लेते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मैं अशोक कुमार बोल रहा था, जबलपुर MP से।
0: अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
1: मैं बिजनेस करता हूँ मैडम
0: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। किस चीज़ का बिजनेस है आपका?
1: ये हमारा फुटवेयर का काम है।
0: ओके, फुटवेयर का काम है। तो लेदर सारी चीज़ों का आप अच्छे से किस तरीके के फुटवेयर हैं, लेदर का यूज करते हैं?
1: अच्छा, होलसेल का काम है हमारा।
0: होलसेल का। ओके। तो बताइए, आज आप आकाशवाणी लखनऊ को वैसे पसंद करते हैं, आप सुनते हैं?
1: बहुत बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मैडम मैं पूरे प्रोग्राम तो नहीं सुन पाता।
0: जी जी,
1: मैं ये वाला प्रोग्राम बहुत जरूरी सुनता हूँ, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के श्रोता फोन करते हैं, बातें होती हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, आप समय निकाल के इस प्रोग्राम को सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: ये फिल्म का नाम है अपना देश।
0: जी
1: सुनरी चंपा।
0: जी जी जी,
1: सुन तारा।
0: हाँ हाँ, अच्छा गीत है। और किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: बस जितने भी श्रोता है वो है, और आपकी पूरी टीम को।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको ये गीत डेडिकेट करने के लिए और हमें कॉल करने के लिए। लीजिए सुनिए अपनी,
1: जी
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। नमस्कार
1: जी, धन्यवाद।

0: सुन चंपा सुनतारा, ये गीत था फिल्म अपना देश से, और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: जी, पूरन वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: क्या करते हैं आप? धन्यवाद आपका भी।
0: क्या करते हैं
1: जी? मैडम हम तो खेती बाड़ी करते हैं, मम्मी पापा और मैं तो घर पे रहता हूँ और आप प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। दिव्यांग आंखों से तो मैं कार्यक्रम के साथ लखनऊ आकाशवाणी डीटीएस के माध्यम से सुनता रहता हूँ। मैडम
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। और पूरन जी आप बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मैडम

0: आज फिल्म का नाम है कहीं प्यार ना हो जाए, और गाने के बोल है दिन ताना ये गाना मैं सुना चाहता हूँ।
1: जी जी किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं आप ये गीत?
0: जी मैडम, सबसे पहले तो आप सुनेंगे,
1: जी धन्यवाद।
0: और मेरा दोस्त है राकेश, भगवान सिंह परवान जी है, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, और रोहित है इटावा से, और दिनेश है, गोल्डी बाई है, और शिवा लोहार है, पुरुषोत्तम है, और जितने कॉलर आपके आकाशवाणी लखनऊ को चाहने वाले कॉलरों को लाइव सुन रहे हैं उनका भी नाम छूट गया, उन श्रोताओं के लिए सुनाना चाहता हूँ मैडम ये गाना।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।
0: थैंक यू
1: धन्यवाद
0: मैडम, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। और एक बार फिर से हम अपना फ़ोन नंबर आपको बता दें ताकि अभी अभी जिन लोगों ने रेडियो सेट ऑन किया है तो वो भी हमें कॉल करके अपनी पसंद की गीतों की फरमाइश हमसे कर सकें। तो हमारा नंबर है 0522-22-38825। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 0522-22-38825। तो चलिए जान लेते हैं कि अब हमारे कार्यक्रम में अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो,
1: इन फूलों में खुशबू आपकी रहेगी, इन फूलों में खुशबू आपकी रहेगी, इस दिल में चाहत आपकी रहेगी, न टूटेंगे न झुकेंगे न कभी बिखरेंगे हम, इस दिल में सूरज सदा आपकी रहेगी। हाय मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप?
0: नमस्कार, और इतनी प्यारी प्यारी आवाज का नाम बताइए पहले हमें।
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से।
0: जी पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद इतनी प्यारी शुरुआत करने के लिए। और क्या करती हैं आप पूनम जी?
1: जी मैम, मैं रेडियो आर एन पर कार्यक्रम देती हूँ, फोनिंग प्रोग्राम, और मुझे भी श्रोताओं से बातें करके बहुत अच्छा लगता है, आप ही की तरह।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है, और आपकी आवाज़ मीठी मीठी हमें ये बता रही है कि आप इसी तरीके से सबसे बात करके अपनी प्यारी सी आवाज़ सबको सुनाती होंगी और उनका एंटरटेन करती होंगी। और बताइए, आज आप कौन से गीत की फरमाइश लेके आई हैं?
1: जी मैम, आज हमें गीत आप सुना दीजिएगा, अभी जो हमने आपको गीत बताया है, क्योंकि जब कार्यक्रम में कॉल लगता है ना तो इतना एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसा लगता है ना कि सारी बातें आज ही कर लें और कल के लिए कल देखा जाएगा।
0: जी जी, मैं आपकी जी मैं आपकी इमोशंस को समझ सकती हूँ। तो बताइए एक बार गीत बता दीजिए मुझे फिर से आप।
1: जी मैम, गीत बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं जो दोस्त है हमारे उनका नाम जो
0: जी
1: सुनना चाह रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: रिंकी पिंकी जी है, अविनाश जी है, भगवान सिंह परमार जी हैं, साथ साथ राम बाबू शर्मा जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं बुंदेलखंड से, राजू भाई हैं, जयपाल भाई हैं और लोकेंद्र भाई हैं, सभी को ये गीत मैं सुनाना चाहूंगी लाइव। और मैम, अभी जो मैंने गीत आपको बताया था, फिल्म का नाम चल मेरे भाई, गीत के बोल चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, ये गीत आप सुना दीजिएगा, सभी श्रोताओं को डेडिकेट है।
0: जी तो चलिए आपको और आपके सभी चाहने वालों को सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत हमें कॉल करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चल मेरे भाई फिल्म का गीत। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी नमस्कार, जय सियाराम।
0: जय सियाराम, अपना नाम बताइए।
1: जी मैं तहसील चंदवा मध्य प्रदेश से देवीदास वाड़ीले बोल रहा हूँ। मेरा जी
0: देवीदास जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: हाँ
0: जी, क्या करते हैं आप देवीदास जी?
1: जी मैं बैठा हूँ अभी दुकान पर।
0: अच्छा अच्छा, तो बताइए आप आकाशवाणी लखनऊ के इस प्रोग्राम को सुनते हैं लगातार?
1: लगातार लगातार, बिल्कुल।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैडम जी मैं ढोलक मास्टर भी बताऊँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हुनर भी है आपके अंदर। तो
1: हाँ
0: बताइए आज आप कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का नाम दिल है कि मानता नहीं, गीत के बोले एक चंचल चौकासी ना मेरे सपनों में आई। अच्छा। आवाज अभिजीत और अलका याग्निक की।
0: हाँ तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूँ, ये गीत जो है बागी फिल्म का गीत है। और बिल्कुल सही बताया, अभिजीत और अलका याग्निक जी की आवाज़ है। तो
1: बागी, बागी फिल्म का गीत है।
0: जी जी जी, बागी फिल्म का गीत है।
1: हाँ हाँ,
0: आप बताइए किसको डेडिकेट करना चाहेंगे ये गीत?
1: जी जितने भी श्रोता लोग सुनते सभी को।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग अभी आपने सुना बागी फिल्म का अभिजीत की आवाज़ में। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी गुरमुख बोरा मैम, जिला जलंधर, तहसील शाहकोट, ग्राम परजिया कलास।
0: गुरमुख जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
1: धन्यवाद जी मैम।
0: जी आप क्या करते हैं?
1: मैम दृष्टिहीन हूँ, घर पे ही रहता हूँ, आपके प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: चलिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पसंद करते हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं हम?
1: तेरी माया का ना पाया कोई पार के टीला, तेरी तो ही जानो।
0: अच्छा, ये
1: और
0: जी किसी का नाम ले,
1: मेरे ख्याल गीत गाता थी।
0: गीत गाता चल से। अच्छा, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी मैम नाम तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान को डेट लिए गाना रहेगा डेडिकेट, और
0: जी
1: उसके
0: जी
1: बाद आपको, आपने इतनी मेहनत की मेरे गाने के लिए, ढूंढने के लिए।
0: जी जी बहुत बहुत,
1: और जितने जितने लोग छोटा सुन रहे हैं सभी लोगों के लिए।
0: चलिए बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून।
0: नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं पहले ये बताइए।
1: जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर से।
0: विनीत कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: चांद के पार चलो फिल्म का है, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतबार बस की बात, चांद के पार चलो।
0: वाह वाह, बताइए किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप?

0: रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से।
1: विनीत कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
0: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
0: चांद के पार चलो फिल्म का है, सितारों की दुनिया में तुमको ले जाऊंगा, कर लो मेरा एतबार बस के बाहर चलो चांद के पार चलो।
1: वाह वाह, बताइए किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये गीत?
0: डेडिकेट करना चाहते हैं सुनील मोनू है गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से, और भगवान सिंह परमार है गगनदीप है औरैया से, और समान परवीन अंसारी है जामा मस्जिद के सीतापुर से
1: जी,
0: ममता है हरदोई से
1: जी,
0: सुरभि सीतापुर से हैं
1: जी,
0: हेमंत संडीला से हैं
1: जी,
0: और तो हमारे पास से हैं ओमकार अतरौली सीतापुर से, उनको है डेडिकेट, और संतोष कुमार मौर्य हैं हरदोई कोथावा से, इनको डेडिकेट
1: तो है। चलिए आपको
0: सुने सभी के लिए,
1: ठीक ठीक आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार,
0: धन्यवाद।

0: और आइए अब जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो,
1: भय मुक्त हो जाए समाज और भरोसे का दीदी हो जाए आगाज, तो मानो कलयुग में आ जाए फिर रामराज, पुनः रामराज।
0: जी जी, बहुत बहुत
1: नमस्कार दीदी जी।
0: हाँ नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ और मैं अभी बाहर से आया था और आपके फोन को ट्राई किया, फर्स्ट कॉल मेरी लग गई और ये लास्ट कॉल है आपकी।
0: जी हाँ बिल्कुल सही, समय सीमा समाप्त हो रही है और बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। बताइए जल्दी से कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: चांदनी फिल्म का गीत सुना दीजिए, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी, और प्रेम दास बाबा देवी शंकर शुक्ला जी मांगीलाल चंदेल और फूलचंद पाल जी के साथ ये गीत सुनूंगा।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत
1: जी। नमस्कार।

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक ही के।

चांदनी फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें से अपनी दोस्त निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अभी आप फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्ना।

0: कर यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
0: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
0: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
0: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
0: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
0: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
0: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
0: जी।
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
0: जी।
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
0: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
0: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
0: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
0: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
0: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा

0: वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर

0: की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना, सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का

0: महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
1: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
2: आमादेर शांति निकेतन, आमादेर
1: शांति। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
3: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
3: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
3: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
3: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही

0: बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे। मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म धरती कहे पुकार के गीत से, जिसे अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: कार्यक्रम सदाबहार नगमे जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

आनंद बख्शी के बोल और एसडी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आराधना, आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। आइए आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

मेरे जीवन साथी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीत था आर डी बर्मन का और बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम है जीने की राह।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जीने की राह फिल्म का गीत। इस गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं लोफर फिल्म का गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी के बोलों को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था लोफर और आवाज़ थी लता मंगेशकर की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सच्चा झूठा फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

कल्याण जी आनंद जी का संगीत और इंदिवर के बोल। फिल्म का नाम था सच्चा झूठा और आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा

0: कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए आवश्यक सूचनाएं। आकाशवाणी @90 राष्ट्रीय सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता। नियम एवं शर्तें। यह प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। प्रतिभागी केवल एक प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। स्वामित्व विजेता सिग्नेचर ट्यून का पूर्ण स्वामित्व आकाशवाणी के पास होगा। रचनाकार भविष्य में किसी भी रॉयल्टी का दावा नहीं करेंगे। प्रामाणिकता ट्यून पूरी तरह नई होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की रॉयल्टी फ्री लूप्स या स्टॉक म्यूजिक का उपयोग मान्य नहीं है। AI प्रतिबंध। AI म्यूजिक जनरेटर से बनाई गई प्रविष्टियाँ सख्त रूप से प्रतिबंधित हैं। संशोधन आकाशवाणी को चयनित ट्यून को प्रसारण मानकों के अनुसार मास्टर, रिमिक्स या छोटा करने का अधिकार है। प्रस्तुति सभी प्रविष्टियां माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। साथ में अधिकतम 150 शब्दों का एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट भी देना होगा। अंतिम तिथि और समय के बाद प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब सुनिए एक और सूचना। आकाशवाणी @90 राष्ट्रीय चैनल जिंगल प्रतियोगिता। नियम एवं शर्तें। यह प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। प्रतिभागी केवल एक प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। प्रत्येक जिंगल पूरी तरह मौलिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकल या पहले से कॉपीराइट किए गए जिंगल का उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। कॉपीराइट एवं बौद्धिक संपदा। प्रविष्टि जमा करने पर प्रतिभागी आयोजकों को अपने डिजाइन जिंगल पर विशेष अपरिवर्तनीय और रॉयल्टी फ्री लाइसेंस प्रदान करते हैं। विजेता प्रविष्टियां आकाशवाणी की संपत्ति बन जाएंगी। AI नीति। AI द्वारा बनाई गई आवाज या AI से तैयार संगीत का उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसी कोई भी प्रविष्टि अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। एक प्रतिभागी प्रति चैनल एक प्रविष्टि जमा कर सकता है। अधिकतम 3 प्रविष्टियां। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.mygov.in पर विजिट करें। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी लखनऊ है।

0: बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
6: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
7: ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संगी बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तकदीर दोनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके तक पहुँचा है।
8: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
7: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से मर्दमशुमारी 2027 का आगाज किया। इसके साथ ही रियासत भर में खुद मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक कल रियासत में 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्दमशुमारी मुकम्मल की। मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वजीर आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है, बल्कि हमजहत जामे और मनसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है।
9: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी, जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
7: गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल, दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें।
10: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
7: वजारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम

घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम अपराजिता में। मैं हूं आपकी सखी साधना
1: और मैं हूं मेघा।
0: सखियों नमस्कार।
1: साधना, कहते हैं ना कि बचपन सबसे खूबसूरत मौसम होता है जिंदगी का, जहां खिलौनों की दुनिया होती है, माँ की गोद का सुकून और सपनों को पंख मिलते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने मेघा। और ये जो बचपन होता है ना, केवल उम्र का पड़ाव नहीं होता है, ये भविष्य की नींव होती है। और जरा सोचो, अगर ये नींव सुरक्षित नहीं होगी तो समाज की इमारत कैसे मजबूत होगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और जानती है साधना, आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने बच्चों के बचपन को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि सुरक्षित बचपन ही हर बच्चे का अधिकार होता है। और ये सुरक्षा शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से होनी चाहिए। और यही सही वक्त होता है कि जब हम उन्हें खुद की ढाल बनाना सिखाते हैं।
0: हाँ हाँ, कि अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है, ये चीज़ हम उन्हें सिखाएं। और हाँ भाई, आज के दौर में बच्चों को हम बहुत सारी बातों से अवगत कराते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, उसके साथ ही साथ गुड टच और बैड टच की सही समझ देना उतना ही ज़रूरी है जितना उन्हें आज के दौर में विद्यालय भेजना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही क्यों भाई, मानसिक सुकून भी तो उनका अधिकार है। जब एक बच्चा डर में रहता है, चाहे वो डर स्कूल का हो या किसी अनजान का या घर के ही किसी तनाव का, तो उसका बचपन कहीं खो सा जाता है।
0: बिल्कुल। और तो और मेघा, आजकल बच्चे घर के किसी कोने में बैठकर घंटों स्क्रीन पर वक्त बिताते हैं, जानती हो ना।
1: बिल्कुल।
0: ऑनलाइन गेम्स, सोशल मीडिया पर रील्स, तरह तरह के कॉन्टेंट सामने स्क्रीन पर होते हैं।

0: तो हमारे बच्चे वहाँ भी तो सुरक्षित नहीं है।
1: बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और देखिए ना साधना भाई, स्क्रीन के उस पार कौन है हमें क्या पता, तो ये जो स्क्रीन की दूसरी तरफ अजनबी होते हैं ना, ऐसी दुनिया से बचाना ही आजकल हम माओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।
0: बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए बच्चे जब घर के अंदर रहते हैं ना, तो हमें ऐसा माहौल देना होगा कि वो स्क्रीन से दूरी बनाएं, है ना, अपने परिवार के सदस्यों के साथ वक्त बिताना ज़्यादा बेहतर समझें। अपनी हर बात चाहे वो कैसी भी हो हमें बिना डर के बता सकें।
1: कहा तो आपने बिल्कुल सही है साधना, लेकिन ये संभव भी तभी हो सकता है जब हम उन्हें डांटने के बजाय दोस्त बनकर उनकी बातों को सुनेंगे, और तभी बच्चों की आंखों में बेफिक्री दिखाई देगी, ना कि कोई डर।
0: एकदम सही। और जो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, दूसरों से कंपैरिजन है ना, ये उन्हें और भी तनावपूर्ण स्थिति में डाल देता है, मानती हूँ ना इस बात को।
1: साधना सही कह रही हैं आप। और देखिए कई बार ऑनलाइन बुलिंग का भी शिकार हो जाते हैं हमारे ये मासूम से बच्चे। ऐसे में हम अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट और स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करते रहें।
0: तो सखियो एक बात और, कि सुरक्षा का मतलब सिर्फ उन्हें किसी से बचाना ही नहीं बल्कि उन्हें ना कहना सिखाना भी है। कि मतलब ऐसा ना करें कि सामने वाले की हर बात को वो मान ही लें। तो जब हम उन्हें अपने फैसले लेने की छोटी सी आज़ादी देते हैं तो उनका आत्मविश्वास खुद उनकी सुरक्षा करने लगता है।
1: सही कहा आपने। और साधना एक बात बताऊं कि बचपन की सबसे बड़ी खुशी होती है जब हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी छोटी छोटी शरारतों में खो जाते हैं। ऐसे में जो बॉन्डिंग हमारी हमारे बच्चों के साथ बनती है ना, वही हमारे बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है।
0: बिल्कुल हाँ। तो चलिए आज थोड़ी देर के लिए ही सही सारी फिक्र छोड़कर उनके साथ खेलते हैं और डिजिटल दुनिया से दूर करते हैं उनको, ताकि कोई डिजिटल चोर उन्हें चौंका न दे। तो आइए खेलें ये टंग ट्विस्टर अपने बच्चों के साथ।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: सखियों, आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे कर चुका है और आज भी रेडियो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके माध्यम से सूचनाएं, मनोरंजन और शिक्षा से संबंधित जानकारियां हम तक निरंतर पहुंचती रहती हैं।
1: और हमारे बहुत से श्रोता रेडियो सुनने से संबंधित अपने अनुभव हमसे साझा करते रहते हैं, किंतु कितना रोमांचक होता है जब उनके अनुभव हम तक पहुंचते हैं जिन्होंने अपने श्रोताओं को रेडियो की दुनिया से बांध कर रखा अपनी दिलकश आवाज़ और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से।
0: तो आइए अपनी सखियों को सुनवाते हैं ये बातचीत आकाशवाणी @90। कुछ यादें, कुछ बातें।
2: आकाशवाणी 90 वर्ष का कारवां। इस सुरमई यात्रा में जुड़े असंख्य कलाकार, वार्ताकार और प्रसारणकर्ता, जिनके पास आकाशवाणी से जुड़ी यादों और बातों का खजाना है, और ये खजाना अनमोल है। अनमोल यादों और बातों को लेकर हमारे साथ हैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ी हमारी दो वरिष्ठ प्रसारण साथी, श्रीमती शारदा लाल और श्रीमती नीना श्रीवास्तव। आज सुनिए इस बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। फिर हम नीना जी की तरफ चलते हैं और कुछ उनके अनुभव खजाने से निकालते हैं, कुछ और मोती हीरे क्या निकालेंगी आप?
3: कंसर्ट की बात बताएं तुम्हें।
2: जी जी जी,
3: वाकई के नैयर साहब, पी माथुर जी के सामने पहले कंसर्ट बहुत होती थी। खुद अपनी बात बताते हैं, और उसमें अनाउंसमेंट के लिए बहुत बार हमी को जाना पड़ता था। तो उसमें ये था कि अब छोटी वाली बात बताते पहले, कि पहले ये होता था कि भाई आज जाना है अनाउंसमेंट के लिए, अब आज ये साड़ी पहनी। अब हफ्ते में 3 अगर कंसर्ट हो गई या 2 हो गए, या महीने में 4-5, तो 4-5 साड़ियां चाहिए। अब शुरू में आया है कहाँ इतनी साड़ियां, आज इनसे मांगो कल। तो हम लोग आपस ही में आशा दी थी, वो अपनी साड़ी कभी देती, आज तुम ये पहन ले।
2: जी जी,
3: तो उस तरह से हम लोग करते थे। और कंसर्ट्स में नैयर साहब के समय में बहुत अच्छी कंसर्ट्स हुई और बहुत ही अच्छा लगता था। अभी तो हम लोग नए स्टूडियो में, उस समय जब हम आए थे तो पुराना स्टूडियो था, वहाँ स्टूडियो नंबर 2, 5 और 1 नंबर स्टूडियो हुआ करता था। 1 नंबर स्टूडियो जो था, तो उसमें ये छोटी मोटी, जैसे अभी कंसर्ट की बात करी इन्होंने, या बिस्मिल्ला खान साहब की रिकॉर्डिंग, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर होती थी।
2: जो हम लोग का कॉन्फ्रेंस हॉल है अब वो,
3: अब जो कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया गया है,
2: जिसे
3: उसमें तख्त पड़ा हुआ था, बड़ा सा 2-4 पड़े होंगे, मतलब स्टेज टाइप का वैसे था, और सामने कालीन और वो सब बिछी रहती थी वहाँ पे। उस समय मलका पुखराज आई थी, नैयर साहब ने बुलाया था।
2: अभी तो मैं जवान हूँ,
3: अभी तो मैं जवान। मलका पुखराज जी आई थी और नैयर साहब ने हमसे कहा था कि एक तो वो पवार साहब ने मूर्ति बनाई थी बेगम अख्तर जी की, तो बेगम अख्तर जी की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया था। शाम को उन्होंने कहा, नीना मूर्ति के ऊपर तो कुछ पढ़ना चाहिए। हमने कहा, जी पढ़ना तो चाहिए, तो इसका कवर अब तुम बना के लाओ। फिर हम, और उस समय म्यूजिक पैक्स यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा उनका नाम, तो हम दोनों गए हजरतगंज, वहाँ से कपड़ा खरीद के लाए, रात में बैठ के हमने कवर सिला, सुबह आकर के मूर्ति पे ढका। नया साहब को पसंद आया। फिर जिस समय मलका पुखराज आई थी, क्या बताएं हम ममता, कि मतलब क्या वो थी, उनकी बेटी थी, दामाद थे, इतने खूबसूरत, खूबसूरती की बात तो अलग रख लो, लेकिन जो गाया उन्होंने, और लास्ट में तो फिर एक फरमाइश हुई, पूरा स्टूडियो खचाखच भरा था 1 नंबर, और लास्ट में उनकी कि अभी तो मैं जवान हूँ, उसके बाद जो उन्होंने अभी तो मैं जवान हूँ आज तक हमारे कान में बज रहा है, गूंज रहा है।
2: जी जी,
3: ऐसी ऐसी कंसर्ट

0: होती थी, या तीजन देवी। तीजन देवी जब आई उस समय, जिस समय आकाशवाणी ने उनकी कंसर्ट करी थी, तो उस समय अनाउंसमेंट उनका हम ही ने किया था, रविंद्रालय में था वो
1: जी।
0: पास में एक होटल था आकाशवाणी के पास में, उसी में रुके। तो दिन में म्यूजिक पैक्स ने नीना चलो उनसे डिटेल्स ले लो चल के, तो हमने कहा ठीक है। फिर हम लोग जीना चढ़ के ऊपर गए, उस समय जीना चढ़ के ऊपर गए थे, समझ सकते हैं आपकी कितनी सिंपल थी वो। तो एक उनके ग्रुप के 6-8 लोग थे उस समय, तो हमने सोचा ये तीजन देवी जी इनका मतलब प्रोग्राम क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद जिस समय स्टेज पे अनाउंसमेंट किया और जो वो आई है ममता, मतलब क्या कहें कि आज भी सांस रुक जाती है।
1: हाँ, वो पंडवानी का जो
0: पंडवानी उन्होंने, और क्या मतलब इतना जबरदस्त वो प्रोग्राम था कि हम कह नहीं सकते। तो उस तरह के बहुत से, और अपनी खुशनसीबी इसको कहेंगे कि बेगम अख्तर जी जो थी उन्होंने लाइव आइटम दिया था, सुबह 8:30 बजे का था, अभी तक हमें चंक याद है वो
1: जी जी।
0: और हम थे, दो नंबर स्टूडियो था जो पुराना वाला हमारे स्टूडियो में, उसमें एक तरफ म्यूजिक का होता था, एक तरफ शाम में प्रोग्राम ये ग्रामीण चलते थे, उसमें था उनका।
1: आप अभी भी भाव विभोर हो जा रही हैं।
0: अरे
2: ये पहुंच गई आ
0: करके ड्यूटी रूम में, पुराना ड्यूटी रूम जो ऐसे पैर पे पैर रख के बैठी, और मुन्ने खां साहब तबला उनके साथ बजाते थे, गुलाम साबिर कादरी उनके साथ सारंगी बजाते थे, तो वो दोनों खड़े, और मुन्ने खां क्या हाल है, इस तरह से मतलब उन्होंने बात करी। हम बता नहीं सकते तुम्हें कि कैसे कैसे लोगों से मिले, कैसे कैसे आर्टिस्ट हमने देखे, मतलब कितनी विनम्रता थी, कितने अच्छे थे वो लोग कि क्या ही बताएं।
1: कला साहित्य है, संगीत है, राजनीति,
0: वैसे ही साहित्य के
1: अंदर लोग यहाँ आते रहे।
2: ममता जी हम लोग के पास
0: के नैयर का वो याद है, विद्या निवास।
2: हाँ, विद्या निवास, अरे वाह
0: कितना खचाखच जबरदस्त, यहाँ से गैलरी में गद्दे बिछे थे।
2: देखिए विद्या निवास को लेकर के मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि तब मैं रामपुर से आई थी
1: जी।
2: तो बड़े सहम के मैं लखनऊ में कदम रख रही थी, विद्या निवास मिश्र को आना था, बड़ी मतलब मन में उत्सुकता हुई कि उनको देखने की बड़ी इच्छा थी। बहरहाल उस समय नैयर साहब ने बताया कि आप लोग सुनने आइएगा, और नंबर एक स्टूडियो इतना भर गया कि मैं कहीं उसमें जा ही नहीं पा रही थी, बड़ी मुश्किल से कहीं जगह मिली। बहरहाल उनको देख करके हम लोग इतने क्या अभिभूत हुए कि हम बता नहीं सकते हैं। सिल्क का कुर्ता पहने, जैकेट, बड़ा सा माथे पर टीका, गोरा रंग, पान से रंगे होंठ, अद्भुत उनका व्यक्तित्व। और जब वो बोलने लगे तो हम लोग स्तब्ध सुनते रहे।
0: और पहले समय का बंधन नहीं होता, मतलब जब बोल रहे हैं जितना ही वो, तो उतना बाद में आप वो देखे जाएंगे, चाहे
2: उसको एडजस्ट करते रहिए,
0: एडिट करिए, चाहे आप जिसको कहते हैं ना धारावाहिक रूप में प्रसारित करिए, चाहे कुछ भी करिए।
1: हाँ।
0: तो इस तरह से होते थे प्रोग्राम, और इतने रसिक श्रोता भी थे, इतने साहित्य प्रेमी श्रोता भी थे कि सब उसमें आते रहते थे
1: जी।
0: और ममता एक बात और बताएं, अब शायद मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बोल रहे लेकिन फिर भी
1: बिल्कुल बिल्कुल अभी बहुत
0: इसलिए बोल रहे हैं कि सुनने वाले भी कहेंगे, तुम भी कहोगे, शायद जो यहाँ पर है वो भी कहेंगे कि पुराने स्टूडियो ही कर रहे हैं अभी तक उसी से जुड़ी हुई। जबकि जब नया स्टूडियो ये बना तो सबसे पहले जब यहाँ की टेस्टिंग हुई तो यहाँ भेजे गए कि भाई जाओ वहाँ से अनाउंसर्स बूथ से जा करके प्रसारण करो, तो यहाँ से प्रसारण किया। फिर आया इसका इनॉग्रेशन डेट, कि इसका इनॉग्रेशन किया था उस समय प्रसारण मंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी थे, 1978 की बात है
1: जी जी।
0: मतलब 72 में आए हैं और 78 में ये हुआ है, 26 नवंबर 28 नवंबर कुछ ऐसे ही था डेट, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रही लेकिन नवंबर था वो लालकृष्ण आडवाणी। और वो प्रोग्राम जो था ऑडियंस के सामने था, अनाउंसमेंट हमें करना था, और उस समय के जो डीजी थे चटर्जी साहब हुआ करते थे वो आए थे, और वाधवा साहब थे वो डीडीजी थे। सुबह से उन्होंने इतनी रिहर्सल करवाई थी कि शाम तक जब एंड परफॉर्मेंस का टाइम था उस समय तक ये लगा, फिर बाद में उनका अब जाओ चेंज करो और फिर आओ साड़ी वाड़ी पहन के। पहले तो वही बात है ना कि लिमिटेड चीज होती थी, अब देखा तो जो साड़ी हमने पहनी वो तो पीछे वाले रंग से मिल रही थी स्टेज के क्योंकि मैरून सी हमारी भी साड़ी थी और मैरून सा पीछे का पर्दा भी था। फिर अरे क्या, फिर जल्दी से घर से ब्लू कलर की साड़ी मंगाई, फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के जब आए प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद आ करके हम ड्यूटी रूम में बैठ गए, दोनों पैर ऊपर उठा करके क्योंकि मैं पैरों में इतना दर्द। तब तक के माथुर जी थे उस समय, वो अंदर आए ड्यूटी रूम में, उनका वाह बहुत अच्छा किया बेटा तुमने, कल इसकी छुट्टी करो, कल इसकी छुट्टी।

0: तो नहीं रेस्ट करेगी,
1: तो
0: बहुत मेहनत करी
1: समझते थे
0: वरना तो रिहर्सल के लिए भी आजकल जरा सी इतनी सी होती तो पूरा पूरा दिन दे दिया जाता है रिहर्सल के लिए। पहले नहीं मिलता था, ड्यूटी तो आप कर ही रहे हो अपनी
1: ड्यूटी
0: के साथ
2: ममता जी करना पड़ता। आकाशवाणी में बोलना ही एक काम नहीं है, आकाशवाणी से जो कुछ हम बोलते हैं उसमें हमारी संवेदना जुड़ी होती है, वो संवेदना जो होती है
0: वो बहुत
2: महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने कहा नीना जी ने कि अगले दिन उनको छुट्टी दे दो, ये कोई छोटी बात नहीं है,
0: बहुत बड़ी चीज होती है।
2: अगर संवेदना से रहित हो जाए तो जीवन बड़ा व्यर्थ हो जाए।
1: जी जी, और रेडियो में जब आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत संवेदनशील होते हैं, क्योंकि आप यदि भावनाओं के साथ नहीं जुड़ेंगे तो जो आप
2: कार्यक्रम कैसे करेंगे,
1: और जो बोल रहे होते हैं उसमें आपकी भावनाएं जुड़ी तभी वो सजीव शब्द बनते हैं। मतलब अक्षर है।
2: एक बात और ममता जी, मैं ज्यादा तो
1: जी देखिए, अभी अभी नीना जी ने कहा था कि जब पहले बड़े महानुभाव आते थे जब वो बोलते थे तो उनको रोका नहीं जाता था, उसका धारावाहिक बना दिया जाता था या उसको किश्तों में बजाया जाता
2: था। हम लोगों को रोक नहीं रहे हैं।
1: मैं आपकी बात को किश्तों में बजाऊंगी, आप बोलती रहिए,
0: काम की बातें चुन लेना।
1: नहीं, सब बातें काम की है।
2: पिक्चर में अगर हॉरर सीन ना हो तो पिक्चर बेकार। मानती है आप?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो हमारे काम में भी हॉरर सीन आए हैं।
1: अच्छा।
2: मैं कार्यक्रम करती थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के, तो क्षेत्र में जाकर के लोगों से बातचीत करके रिकॉर्डिंग करके लाना, ये तो आपको मालूम ही है। एक बार मैं लखीमपुर गई, काम हो गया, एक बस मुझे मिली जो मुझे सीतापुर तक ले आई, और हमने सोचा सीतापुर से तमाम बसें जाती हैं, हम चले जाएंगे घर। हम सीतापुर आ गए, शाम हो गई, अंधेरा हो गया और अंधेरा हो गया, कोई बस नहीं। उसके बाद एक सज्जन वहीं टहल रहे थे, सिगरेट हाथ में दबाए, हम अपने मन में सोच रहे थे आज तो शारदा तुम गए काम से। खैर, बहरहाल पान वाला जो बैठा था अपनी गुमटी में वो हमको देख रहा था, वो भी पता नहीं क्या सोच रहा था। बहरहाल हमने पान वाले से पूछा कि भैया आप कोई बस नहीं आ रही बहुत देर से, तो उसने कहा दीदी यहाँ अब कोई बस नहीं आएगी, अब सब बसें यहाँ से निकल गई हैं। तो उन सज्जन ने आके हमसे कहा कि देखिए मैं आपकी वजह से यहाँ टहल रहा हूँ, आप अगर उचित समझें, अगर आपको ये सही लगे तो मेरे साथ चलिए, पास में मेरे एक मित्र का घर है, आप वहां रुकिए, सवेरे आप चली जाइएगा।
1: अब
2: आप सोचिए कि मेरी मना स्थिति क्या होगी। हाँ। क्या सोचा होगा मैंने, मैंने कहा अब तो लगता है ये पिक्चर का जबरदस्त सीन आ रहा। बहरहाल
1: आपके मन में बहुत सारी
2: बड़े सवाल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल हमने कहा हमें अब विश्वास तो करना पड़ेगा इनके ऊपर। उनके साथ हम गए, दरवाजे पर बड़ा बड़ा लिखा था घंटी मत बजाइए यहाँ दिल का मरीज रहता है। अब आप सोचिए
0: अब तो और भी चाहते हैं कि हालत बेकार,
2: अब और मेरी हालत
1: उनकी दिल की अंदर घंटी बज रही होगी कि अब होगा।
2: बहरहाल मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल एक सज्जन ने दरवाजा खोला, उनको उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहां से आएंगे, इनकी बस कोई उनको मिल नहीं रही है, तो उन्होंने कहा आप आइए अंदर आइए। इतनी देर में उनकी वाइफ भी आ गई, और 1:30 बजे रात में हमने उनके साथ खिचड़ी खाई, और सवेरे 6 बजे की बस हमने पकड़ के लखनऊ आके दम लिया। अब आप सोचिए पूरी घटना मेरा
0: शारदा जी के ये एक्सपीरियंसेस जो है ना बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि ये फील्ड में बहुत जाती थी।
2: जी जी, लोग कहते थे कि ये महिला अपने घर में कब रहती है।
1: मतलब रेडियो का प्रसारण सिर्फ माइक्रोफोन के सामने ही नहीं होता है, सिर्फ स्टूडियोज में ही नहीं होता है, उसके पीछे जो फील्ड का वर्क है।
0: स्टूडियो तो सबसे बाद में आता है, सीधी बात जहाँ पर हम है वो बाद में आता है, हमारे पास तो जिसको कहते हैं ना पका पकाया सामान आ जाता है, बस वो हमें आप लोगों को परोस देना है। ये काम हमारा होता है, और इनका काम सारी जगह से क्या अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको बटोर के लेकर के आना होता है, फिर उसको एक कंपैक्ट तैयार करके देना होता है।
2: और उस समय ममता जी हमने जो महिलाओं की स्थिति देखी वो देख करके मैं दंग रह गई। गांव में महिलाएं कितनी निरीह, स्वास्थ्य से बिल्कुल एकदम लाचार, कुछ भी नहीं खाने को उनके पास, किसी को कोई फिक्र नहीं, वो अपना जीवन कैसा जी रही हैं। ऐसी महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा रेडियो में हमारा अगर नाम अगर हमारा पति सुन लेगा तो हमसे कहेगा कि तुम जाओ अपने महके चली जाओ, हमारे साथ मत रहो, आप हमारा नाम मत बताइएगा। ऐसे ऐसे लोग।
1: हाँ, और वो समय आपने देखा, और उन जो महिलाओं की स्थिति रही होगी, उनका जो दुख रहा होगा,
2: बहुत दयनीय,
1: आपने अपने कार्यक्रमों में होंगी आप, है ना, और वो लोगों तक जब श्रोताओं तक पहुंचा होगा तभी वो कार्यक्रम जो है वो उनके दिल को भी छुआ होगा, क्योंकि उस कार्यक्रम ने आपको भी छुआ था तभी आपने उससे बना।

0: नहीं तो
1: और
0: पहले तो यही होता था ना, भौजी है ये वो है
1: हाँ,
0: वो, उस तरह से सब,
1: एक पात्र का नाम
0: हाँ
1: हुआ
0: पात्र
1: करता
0: का
1: था।
0: नाम
1: आप क्या
0: हुआ
1: बनती
0: करता
1: थी
0: था।
1: शारदा जी?
0: मैं तो सिर्फ अपने नाम से ही जानी जाती
1: शारदा
0: थी,
1: जी तो
0: अपने
1: अपने
0: नाम,
1: नाम से
0: मैं
1: ही
0: अपने
1: थी।
0: नाम से ही जानी जाती थी। वो
1: जी
0: सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी थी वो भानुमति भौजी थी,
1: हाँ
0: भानुमति
1: जी,
0: भौजी या
1: खैर
0: अंबेश्वरी श्रीवास्तव थी वो अंबे जी थी,
1: जी,
0: पनघट
1: अम्बे
0: में गांव
1: भौजी,
0: होता था अंबे
1: अम्बे
0: भौजी।
1: भौजी, हाँ।
0: तो नंदम बनते थे शुरू में, उसमें जब हम
1: अच्छा,
0: आए तो फिर
1: तब
0: नंदम
1: ऐसे
0: बनते थे।
1: ये
0: इस तरह से
1: भी
0: आपस में ही सबका हो जाता था कि वो भौजी हैं, हम नंद हैं, वो सास हैं सुमित्रा जी, उस
1: जी,
0: तरह से बहुत अच्छे अच्छे
1: जब
0: प्रोग्राम्स। और
1: मैं
0: क्या
1: रेडियो में आई हूँ उससे पहले ये परंपरा थी कि लोग अपना नाम नहीं बताते
0: नाम
1: थे,
0: नहीं।
1: नाम नहीं बताते थे। अब ऐसा हो गया है, उसके बाद नाम बताने शुरू हो गए और लोग जानने लगे इनका नाम ये है, तब नाम नहीं बताते थे।
0: जैसे
1: जी
0: कृष्णा मिश्रा जी, दाई दाई कौन है, बहरे बाबा रमई काका
1: हाँ
0: थे,
1: जी
0: उनका
1: जी
0: चंद्रभूषण त्रिवेदी नाम था
1: जी जी
0: ना,
1: जी हाँ
0: तो उनका नाम नहीं, वो रमई काका बहरे
1: हाँ
0: बाबा ये था उनका।
1: जी,
0: और वैसे ही दाई का, वैसे ही वो अर्जुन लाल जी,
1: अर्जुन लाल जी थे।
0: और
1: ये
0: वो
1: तो हम लोगों से भी बहुत पुराने समय के
0: बहुत
1: लोग
0: पुराने,
1: हैं। जी
0: लेकिन आए आए
1: हाँ,
0: तो थे ना, देखा तो
1: हमने
0: सबको,
1: देखा
0: सबसे
1: उनको,
0: मिले।
1: मिले उनसे, उनके कार्यक्रम सुने हम लोग। जैसे दाई ने जोर से कहा तो वो दाई से काका पलट के कहते कि अरे इतनी जोर से काहे बोलती हो, कहा हम इतने बहरे हैं, जी, बहिरे बाबा
0: कहा हम
1: कार्यक्रम
0: इतने
1: नहीं,
0: बहरे
1: हमने
0: हैं,
1: तो मतलब लाइव उनके आइटम्स देखे
0: देखे,
1: हैं।
0: देखे नहीं मतलब ऑन ड्यूटी रहे
1: जी
0: हम।
1: जी जी
0: लोकायतन में एक दिन फिक्स था उनका, बहरे बाबा का आने का महीने में।
1: जी तो वो समय जो आप लोग याद कर रही हैं, उन यादों में आप हमें ले जा रही हैं, खुद भी जा रही हैं और हम सब जा रहे हैं, हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे वो भी हमारे रेडियो की उन यादों के साथ।
0: लेकिन ममता, पुरानी और नए स्टूडियो की बात कर ली, चलते चलते इतना जरूर कहेंगे कि नए स्टूडियो में आने के बाद, फिर उसके बाद हम गए एफएम स्टूडियो,
1: अच्छा
0: इसी में बना, बहुत पहले वो लाइब्रेरी हम लोगों की हुआ करती थी, वहां पर एफएम स्टूडियो बना और एफएम का प्रसारण शुरू हुआ लखनऊ से,
1: जी, और
0: और उसमें भी अनाउंसर हम ही थे, हम और हमारे साथ में एक दिलीप थे, हम ही दोनों की ड्यूटी उसमें
1: जी जी
0: शुरुआत से।
1: जी जी
0: तो ओपनिंग अनाउंसमेंट एफएम का हम ही ने किया था, और जो उसका उद्घाटन समारोह हुआ था वो प्रेक्षागृह में हुआ था,
1: जी
0: गन्ना संस्थान था,
1: एफएम
0: गन्ना
1: रेनबो की
0: संस्थान
1: बात कर रही हैं आप क्या?
0: हाँ। और ड्यूटी हम ही लोग करते थे पूरा, सुबह की हमने करी, शाम को दिलीप ने करी, दो ही अनाउंसर थे उसमें,
1: तब
0: हम ही लोगों ने ट्रेनिंग ली थी
1: शुरुआत
0: घर
1: हुई थी
0: की,
1: उसकी जब
0: उसकी
1: प्रोग्राम, तो
0: शुरुआत हुई
1: उसका
0: थी।
1: जो जैसे आज एफएम रेनबो और जो प्राइमरी चैनल के कार्यक्रम है उनके थोड़ा स्वरूप में चेंज होता है, थोड़ा सा बोलने के ढंग में भी बदलाव रहता है, तो क्या आप लोग भी कुछ अलग ढंग से एफएम के प्रोग्राम पेश करते थे
0: नहीं,
1: या?
0: उस समय तो स्क्रिप्टेड ही होता था, हमें अभी तक याद है कि एफएम इनॉग्रेशन हुआ, शाम को हुआ, फिर सुबह हमारी ड्यूटी थी, तो अभी तक मैं याद है, पहले भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम था, तो सुबह सुबह ले शिव का नाम वाला
1: भजन
0: भजन
1: बजाया।
0: हमने बजाया था, कंपेयरिंग के साथ, पूरी
1: जी जी
0: कंपेयरिंग
1: जी
0: के साथ,
1: जी
0: आधे घंटे का, 1 घंटे का था कुछ, अर्चना नाम था उसका कार्यक्रम का।
1: अच्छा जी,
0: तो इस तरह से होते थे, और स्टाफ के ही लोग कर रहे थे शुरू में, ये
1: अच्छा,
0: कैजुअल अनाउंसर
1: बाद
0: बाद में
1: में
0: सब
1: आए जो
0: तैयार किए
1: आरजेज
0: थे।
1: आए वो बाद
0: हाँ
1: में आए। कभी श्रोताओं से कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला हो, या कई बार लोग कहते थे कि वो बाहर अनाउंसर निकलते थे तो रात को भी श्रोता जो होते थे वो बाहर मिल जाते थे।
0: इसमें एक बार बताएं तुम्हें, एक बार हम गए थे, अनाउंसमेंट था आकाशवाणी का, नहीं था वो बाहर का था, लच्छू महाराज जी का,
1: जी
0: बहराइच में, उस समय गीत सुमन प्रोग्राम होता था, और वो गीत सुमन प्रोग्राम हम करते थे, उसकी लिसनिंग अच्छी थी,
1: कंपेयरिंग के
0: तारीफ,
1: साथ करते
0: हाँ
1: होंगे।
0: कंपेयरिंग के साथ पूरा करते थे, गाने बजाते थे, फिल्मी गानों पर आधारित होते थे ये। तो वहाँ पर बहराइच में क्या हुआ, कथक डांस का प्रोग्राम था और भी बहुत कुछ थे, तो एकदम बड़ा शोर मचा, किसी को पता लग गया कि गीत सुमन वाली नीना श्रीवास्तव है जो
1: अच्छा
0: बोल रही, अब वो अनाउंसर को सामने लाओ, नया नया वक्त था वो, बताया ना 72 74 76 वाला समय था
1: जी जी
0: वो,
1: ये
0: तो डर भी लगा, अरे बाप रे, इतनी सारी भीड़ और इतना तेज शोर। तो उस समय जो डीएम थे वहाँ पे शायद सेठी साहब थे, शायद नाम इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमें याद है सेठी जी थे, उन्होंने कहा एक बार प्लीज आप अपने अनाउंसर को पर्दे के बाहर ले आए, और हम कहाँ आने वाले, वो पीछे स्टेज से निकल के गाड़ी में बैठे और अपने जहाँ पे रुके थे वहाँ
1: मतलब
0: पहुँच
1: वो
0: गए।
1: क्रेज जो आज लोगों के मन में फिल्मी कलाकारों के लिए होता
0: हाँ
1: था,
0: उस समय
1: वही
0: हम लोग
1: वो
0: के थे,
1: पहले
0: उद्घोषकों के लिए, अनाउंसर्स के लिए या रेडियो से जुड़े लोगों के
1: के लिए
0: लिए होता था।
1: आकाशवाणी कानपुर में मेरी पोस्टिंग हुई, तो जब सभा समाप्त होती थी तो बाहर लोग खड़े रहते थे मुलाकात करने के लिए, तो हमारे स्टेशन इंजीनियर ने ये सख्त

0: हिदायत दे रखी थी चपरासी को, गार्ड को, कि कोई भी अंदर नहीं आएगा और शारदा जी से कोई मिलने अगर आए तो वहीं उसको वापस कर दीजिए। वहीं वापस कर दिए। और जब 15 मिनट बीत जाते थे तब हम गाड़ी में बैठ के अपने घर तक आते थे। ये उस समय था, ये उस समय रेडियो का क्रेज था, ये उस समय रेडियो का महत्व था जिसे हम लोगों ने देखा और समझा और उसको अनुभव भी किया।
1: जी जी।
0: तो नीना जी के पास ये खजाना बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे ख्याल से आज हम लोगों ने जो बातचीत की है तो शायद आधी पर्दी रह गई है, अभी बहुत सा बाकी
1: बहुत
0: है।
1: सारे अभी पर्दे खुलने
2: ममता एक अपने प्रसारण का जो एक जिसको कहेंगे इंसिडेंट, वो जरूर हम तुमसे शेयर करेंगे कि एक बार SOS खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं, पहले 6:05 ऐसे आते थे तो वो करते थे हम लोग, 10 मिनट का होता था, बीच में न्यूज थी, फिर उसके बाद 5 मिनट और
1: अभी भी प्रसारित होते हैं दिन में। अच्छा। दो बार, दोपहर में एक शाम को,
2: नहीं पहले शाम को ही होता था, दोपहर में नहीं। तो वो हमने किया, उसी में कभी कभी ऐसा होता था कुछ ऐसे लोग आते थे, ड्यूटी ऑफिसर ने जैसे ही दिया बीच में दे देते थे कि उन्होंने कहा कि ये कर दो, जैसे ही एंट्री हुई तो हमने फेडर ऑफ किया अपना, ये इसको कर दो, वो किया। और उसके बाद जब हम ट्रांसमिशन हमारा ऑफ हुआ, हम बाहर निकले, हमारी ड्यूटी जब खत्म हुई बाहर निकले तो एक बूढ़ी औरत थी और एक उनके साथ में लड़का था, वो एक छोटे से एक जैसे आजकल 250 ग्राम का डिब्बा होता है ना, तो उसमें पेड़ा या लड्डू कुछ ऐसा था, वो लेकर के स्टूडियो से, मतलब जो ये स्टूडियो के उससे बाहर हम निकलते उस जगह पे बैठी हुई थी। उनका बिटिया तुमने कर दिया, हमारी वो मिल गई, मतलब वो तुरंत हुआ, इमिजिएटली हुआ। हाँ, हाँ। और तुरंत वो ट्रेस आउट हो गया था। वो वाकई मतलब इसके पहले तक तो हम इतनी अहमियत नहीं देते थे। उस दिन हमें ये खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं का जो असली महत्व था, उसके पहले तक वो सिर्फ हमारे लिए एक फॉर्म था जिसे हमें बोलना था
1: जी।
2: चार बोलने होते थे तो चार इधर बोले, चार उधर बोले, उतना तक का एक काम रूटीन वर्क था। लेकिन उस दिन के बाद से उसकी अहमियत पता लगी
1: जी जी।
2: वो क्षण हमें आज तक याद है।
1: आपको बहुत सुखद क्षण लगा होगा कि आपकी एक उद्घोषणा से कोई बिछड़ा हुआ मिल गया किसी को और परिवार मिल गया। तो सच में रेडियो जो में काम करना है वो सिर्फ एक कार्य नहीं है, एक कर्तव्य है हमारा। और कितनों का हम मनोरंजन करते हैं, कितनों के दिलों तक पहुंचते हैं, कितनों को सूचना पहुंचाते हैं, कितनों की जानकारियां बढ़ाते हैं, और जैसे कहा कि कितनों को हम मिला भी देते हैं, जोड़ते भी हैं। हम सब रेडियो से जुड़े हुए जो प्रसारण कर्मी हैं वो अपने काम को शिद्दत के साथ करें और आप लोगों से प्रेरणा ले करें कि कितना आप लोगों ने जो काम किया मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ किया और
2: इंजॉय करके करें। सबसे बड़ी बात है कि अपने काम को इंजॉय करें, जो हम आज भी कर रहे हैं। जैसे लोग बहुत होते हैं, अरे भाई ये नौकरी का वक्त ऐसा, लेकिन उसको तो हम लोग स्वर्णिम काल अपना
0: समझते हैं। नौकरी को नौकरी का समझा,
2: क्योंकि यहीं पर तीज है, यहीं पर त्योहार है, यहीं पर बर्थडे है, यहीं पर सब कुछ हम लोगों का हो जाता था।
1: तो अभी भी आप लोगों के पास तो मुझे लगता है कि जो यादें हैं वो बहुत सारी होंगी,
2: बहुत बहुत ढेर सारी।
1: यदि हम अलग अलग बिंदु पर टच करें, छेड़े, तो आपके पास नए नए
2: बहुत सारे
0: उब जाएंगी सुनते सुनते।
1: हम नहीं उबेंगे, श्रोता भी नहीं उबेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विराम तो देना ही होगा अपने कार्यक्रम को। हमें जो हमने आपसे बातचीत की, नीना श्रीवास्तव जी, शारदा लाल जी, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आई और आपने अपनी उन यादों को हमारे सामने रखा कि कब से रेडियो से प्रेम हुआ, कैसे कैसे आपकी यात्रा उनमें चली। पूरी यात्रा है वो बहुत ही सुखद रही और रेडियो अभी भी आपके दिल में।
0: जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जहाँ मैंने अपने जीवन के इतने लंबे वर्ष गुजारे,
2: श्रेष्ठतम
0: है वो, श्रेष्ठतम है
1: जी।
0: और लोग अक्सर अपनी नौकरी को, अपने काम को लेकर के बहुत कुछ कहते हैं, भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन मैं एक शब्द भी नहीं कहना चाहती।
2: मैं नहीं, हम हम कभी
0: हम एक शब्द भी नहीं कहना चाहते।
2: आज भी हमें घर लगता है
0: कहीं कोई किसी किस्म से किसी प्रकार का कोई अफसोस हुआ हो। बहुत खुशी और बहुत सम्मान लेकर के हम लोग यहाँ से निकले
1: जी। तो आपने अपने काम को पूजा माना और उतनी ही शिद्दत के साथ अपने जो ड्यूटीज दिए गए वो आपने निभाए और अभी भी आप रेडियो से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, हमसे जुड़ी हुई हैं और हम अपनी यादों को आगे भी
0: साथ रहेगा।
1: जी जी, रेडियो कहीं नहीं जाएगा हम सबके जीवन से। और आप दोनों स्टूडियो में आई और हमसे जो बातचीत की, यादों को साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सखियां सुन रही थी विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी एट 90 कुछ यादें कुछ बातें की तीसरी और अंतिम कड़ी। प्रतिभागी थी श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी और श्रीमती शारदालाल जी। इनसे बातचीत कर रही थी ममता उपाध्याय जी। और सखियों, कैसा लगा आपको ये बातचीत का अंश? भाई हम तो पूरी तरह से खो गए थे उस दौर में जिस दौर की वो बातें कर रही थी।
1: बिल्कुल साधना, बातें बहुत ही अच्छी थी। और देखो कुछ बातें तो हमने भी की थी कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सुरक्षा का घेरा सिर्फ घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल मेघा। और आज 8 मई है यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है निस्वार्थ सेवा और मानवता का, है ना? जब भी कहीं कोई आपदा आती है या किसी की जान जोखिम में होती है तो रेड क्रॉस के स्वयं सेवक सबसे पहले ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा साधना आपने। और जब हम जान बचाने की बात करते हैं या मानवता की बात करते हैं तो इसमें सड़क सुरक्षा का जिक्र भी बेहद जरूरी हो जाता है।
0: जरूरी हो जाता है।
1: और 8 मई से 14 मई तक हम UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक भी मना रहे हैं। तो सखियों, सड़क पर हमारी छोटी सी सावधानी ना सिर्फ हमारी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकती है।
0: बिल्कुल, जान बचाती है, हमारी सावधानी हमें भी सुरक्षित रखती है और साथ में जो हमारे चलने वाले हैं उन्हें भी। तो बिल्कुल जैसा कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना हो तो तेज रफ्तार पर लगाम, ये भी जरूरी है। मानवता की सेवा का तो ये रूप है।
1: बिल्कुल भाई, नींद और नशे की हालत में हो तो भूलकर भी गाड़ी ना चलाएं और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो सखियों, सड़क पर सुरक्षा के नियम हमें सिर्फ सड़क तक ही नहीं, हमें ये सारे नियम हमारी सेहत पर भी लागू होते हैं क्योंकि हमें अपनी सेहत पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज है वर्ल्ड ओवरियन कैंसर डे जिसकी थीम है नो वुमेन लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी महिला पीछे नहीं होनी चाहिए। हमारी छोटी सी लापरवाही हमारे ऊपर बिल्कुल भी भारी ना रहे, इसके लिए आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। और सखियों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी मेघा को
0: और मुझे यानी साधना को दीजिए अनुमति।
1: सखियों नमस्कार, नमस्कार।

महिलाएं अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम अपराजिता। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

जवानों के लिए कार्यक्रम में फौजी साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। फौजी साथियों जय हिंद। अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं स्वदेश के इस गीत से।

स्वदेश फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान की आवाज़ में। कार्यक्रम चल रहा है जवानों के लिए और कार्यक्रम में हमें मेल आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप की और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज की। और ये इन्होंने फरमाइश की है कलयुग फिल्म के गीत सुनने की, तुझे जिया धड़क धड़क। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कलयुग फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। और अगली मेल हमें मिली है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरकरे मोहेरकर, और ये सभी सुनना चाहते हैं कन्यादान फिल्म का गीत। तो आइए आपको सुनाते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

कन्यादान फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अगली मेल हमारे पास आई है विजय लक्ष्मी कुशवाहा सांडी जनपद हरदोई से, और इन्होंने फरमाइश की है अधर्म फिल्म का गीत सुनने की। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज़ में।

अधर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज़ में। और अगली मेल हमें आई है विजय पाल यादव जी की। इन्होंने हमें नमस्कार भेजने के साथ साथ लिखा है कि आपके यहाँ के प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप सभी की मधुर आवाज़ बहुत ही मनमोहक लगती है, कृषि चर्चा से लेकर आपके पत्र ईमेल तक हम सभी लोग रोज़ सुनते हैं। आज का कुछ कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए, और आपको ये कार्यक्रम हमारा पसंद आया। और इन्होंने निवेदन किया है दाता फिल्म का गीत ये सुनना चाह रहे हैं, तो आइए आपको सुनवाते हैं दाता फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: अभी आप जवानों के लिए कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग 1.5 दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का

0: निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
3: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
4: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
3: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि

0: कि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
3: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
3: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
5: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
6: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
3: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स

0: 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुरेश चंद्र दीक्षित से की गई भेंट वार्ता सुनिए, कृषि वानिकी की उन्नत पद्धतियां। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ वानिकी यानी कृषि वानिकी जहां आप करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत पद्धतियां क्या हैं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ SC दीक्षित साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। दीक्षित साहब, ये बताएं कि जहां किसान भाई बहन खेती के साथ वानिकी करना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, कि मैं कृषि वानिकी के बारे में बताना चाहता हूं कि इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये शब्द जो कृषि के साथ साथ में खेती बाड़ी करते हैं उसी को कृषि वानिकी कहते हैं। इससे क्या होता है कि किसानों की आर्थिक आय अच्छी होती है, मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और उसको निश्चित रूप से उसके आय में वृद्धि होती है। इससे को जीवन में मानव उपयोगी जो वस्तुएं हैं, जैसे खाना है, चारा है, फाइबर है, लकड़ी है और उस पैसा है, ये सब चीज़ें 6F उनसे जो मिलती हैं ये वानिकी से उपलब्ध होती है।
2: और एक निश्चित भूभाग पर खेती भी और वानिकी भी,
3: वानिकी दोनों साथ साथ किए जाती है।
2: तो इसके उद्देश्य होंगे कुछ जो आज की आवश्यकता है, ये क्यों पड़ी है।
3: इसलिए आवश्यकता बड़ी है, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई जोत के कारण कृषि वानिकी की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति के तहत 33% वनों का आच्छादन होना चाहिए, जबकि हमारे देश में लगभग 25% है और प्रदेश में लगभग 10% है। इस कमी को पूरा करने के लिए खेतीबाड़ी के साथ साथ पेड़ पौधों को लगाने से उसकी पूर्ति की जा सकती है। इससे हमारा पर्यावरण स्वस्थ होगा और मृदा भी हमारी संरक्षित रहेगी, मिट्टी का कटाव नहीं होगी और जो उसकी पत्तियां गिरेंगी सड़ेंगी उससे जो सड़ने के बाद उसमें जो कार्बनिक पदार्थ जमीन में मिलेगा उससे भी होगी, उसमें जल संरक्षण की क्षमता भी बढ़ेगी। और खेती के साथ में ये जो हमने आपको बताया था कि अन्य जो उत्पाद मिलते हैं उससे भी लाभ होगा और साथ ही साथ हमारी जमीन में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है
2: जी,
3: इसमें भी काफी हमें सहारा मिलेगा।
2: यानी जलवायु परिवर्तन के आज के दौर में कृषि वानिकी एक ऐसा माध्यम है जिससे किसान भाई आगे बढ़ सकते हैं।
3: बिल्कुल बढ़ सकते हैं,
2: आज की चुनौतियों से जूझ सकते हैं।
3: बिल्कुल जूझ सकते हैं।
2: तो ये बताएं कि कृषि वानिकी में फसल और जो खास पौधे लगेंगे वानिकी प्रजाति के, तो उनका चयन कैसे करें किसान भाई बहन।
3: पौधों का चयन में विशेष का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी अल्पावधि में 8-10 साल में पौधे तैयार हो जाएं कटाई के लिए, जिससे उनको इनकम हो जाए और जल्दी बढ़ने वाले पौधे हों, स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधे हों और जो मृदा के भी जो वहाँ की है उसके अनुकूल भी पौधों की प्रजातियों का चयन किया जाए। साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा जिनके भी छायादार है, जिनकी ज़्यादा कैनापी है, उन पौधों को उसमें न

0: किया जाए। अगर उनको प्रयोग करते हैं तो उसके नीचे जैसे अदरक है, हल्दी है, अरवी है, इन फसलों के नीचे की बुआई करके भी अच्छा लाभ किया जा सकता है। जो समुदाय के लिए, समाज के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको करते हैं, उन प्रजातियों को लेते हैं। इसमें बहुत सी जमीन समस्याग्रस्त जमीन होती है,
1: जैसे ऊसर है, जलमग्न है,
0: जी दोनों प्रकार की जमीनें हैं। जैसे आपका ऊसर में है, सुबबूल है, बेर है, बबूल है, इनको लगाते हैं। और जल भराव वाली स्थिति में अर्जुन और यूकेलिप्टस, जामुन, इस तरीके के प्रजातियों का हम प्रयोग करते हैं।
1: और छायादार स्थान पर,
0: छायादार स्थान पे हम उसके नीचे आपको है हल्दी है, अदरक है, अरवी है, इन फसलों की बुआई करेंगे तो हमें उससे अच्छा लाभ मिलेगा।
1: दीक्षित साहब, कृषि वानिकी की पद्धतियों के बारे में बात हो रही है तो कौन कौन सी प्रमुख पद्धतियां हैं जिनको किसान भाई बहन अपना सकते हैं आसानी से?
0: इसमें चार प्रकार की पद्धतियां हैं, जैसे एग्री सिल्वीकल्चर, इसमें फसलों के साथ साथ में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं,
1: यानी वन प्रजाति के।
0: जी, वन प्रजाति के। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने गेहूं लिया, गेहूं की फसल बोई, उसमें हम पॉपुलर लगाए, पॉपुलर में उसकी छाया कम लगती है और उसमें पौधे भी, पत्तियां गिर जाती, पतझड़ हो जाता है तो उसमें छाया कम रहती है, उससे अपज अच्छी मिल जाती है और जो पत्तियां गिरती हैं वो सड़ जाती हैं, जिससे जमीन में कार्बनिक पदार्थ मिलता है और जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब पंक्ति से पंक्ति की 9 मीटर रखते हैं, जिसमें आसानी से सस्य क्रियाएँ भी ट्रैक्टर या यंत्रों से की जा सकती हैं, साथ ही साथ उसमें छाया कम लगेगी और दोनों उपज अच्छी की जा सकती है, और पौधे की दूरी 3 मीटर रखते हैं।
1: इसके अलावा
0: है एग्री हॉर्टिकल्चर,
1: यानी कृषि बागवानी।
0: इसमें फसलों के साथ साथ आप फलदार पौधे लगाते हैं, जैसे आंवला की आप पौधे लगाए, उसमें आपने लगाया, और उसके बीच में और जो सह फसली और जो फसलें हैं, चाहे उड़द है, मूंग है, गेहूं है, किसी भी फसल की बुआई करके उससे आप लाभ दोना कमा सकते हैं।
1: कहीं कहीं जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन है, ऊंची नीची जमीन है, वहाँ कृषि वानिकी की कौन सी पद्धति अपनाएं किसान भाई बहन?
0: देखिए, सिल्वी पास्चर है, उबड़ खाबड़ जमीन में है, इसमें जहाँ पे रिवाइंस इस तरीके के जो गड्ढे वाली होती हैं जमीनें, इसमें आंवला बहुत अच्छा होता है, जामुन होता है, इनमें अगर लगाने के बाद और उसमें घास लगा दिया जाता है जिसमें मिट्टी का क्षरण नहीं होता है और अतिरिक्त उससे लाभ हमें प्राप्त होता है।
1: क्या शीशम का प्रयोग भी फायदेमंद होगा?
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा। शीशम के साथ साथ उसमें फायदा होगा, उससे आपको बहुमूल्य लकड़ी मिलेगी, साथ में उससे पशुओं का चारा भी मिलेगा और वो बहुत अच्छा उसमें होती है।
1: तो कृषि बागवानी के साथ वानिकी प्रजाति भी हो सकती हैं?
0: वानिकी प्रजाति भी हो सकती हैं।
1: जैसे
0: आपका हमने फलदारी जमीन के लिए जैसे बेर हमने लगाया, बेर के साथ आपने घास लगा दिया, किसी आम लगा दिया, किसी भी कोई भी फसल उसमें आप लगा के उसको कर सकते।
1: दीक्षित साहब, हर खेत पर मेड़ हो, हर मेड़ पर पेड़ हो, ये कैसा रहेगा कृषि वानिकी का तरीका?
0: ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि मेड़ आपकी खाली रहती है, उसका आप पूरा सदुपयोग करेंगे, मेड़ के किनारे आपके पौधे लगा दें, उस तरीके के पौधे लगाएं जैसे आपका पॉपुलर है, शीशम है, यूकेलिप्टस है, इन प्रजातियों का अगर चयन करते हैं, पौधों का चयन करते हैं बहुत है, और पश्चिम में बहुत ज़्यादा आपका पॉपुलर की रूप से किया जाता है, जिससे माचिस का भी प्रयोग होता, तो साफ होती है,
1: प्लाईवुड
0: में काम होती है और माचिस की तीली में भी काम आती है।
1: दीक्षित साहब, जहां कृषि वानिकी की उन्नत पद्धतियों का चुनाव करना है किसान भाई बहन, तो पहले से तैयारी करनी होगी पेड़ लगाने की?
0: बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है, गड्ढे खुदाई किए जाते हैं, अगर आपके वानिकी के पौधे हैं तो 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट गहरा, 1.5 फीट चौड़ा आप गड्ढा खोदते हैं, ये आप मई में खोदते हैं।
1: और ये चल रहा है समय,
0: बहुत उपयुक्त समय चल रहा है, खुदाई करते हैं। इसमें क्या होता है, उसकी मिट्टी के गड्ढे का तापमान भी बढ़ जाता है और उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। थोड़े दिन उसे 1 महीना खुला रखेंगे, जून के महीने में उसमें 5 किलो कंपोस्ट, सड़ी हुई कंपोस्ट, और 10 ग्राम आपका उसमें डाल के कीटनाशक दवाई मिट्टी के गड्ढे की भराई कर देते हैं। इसके बाद अगर पौधा लगाते हैं तो जुलाई में तो आपको बहुत अच्छा पौधा चलेगा।
1: और फलदार
0: के लिए 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, इस तरीके का पौधा 1x1 मीटर के किया जाता है। इसमें भी वही प्रक्रिया की जाती है जो इस वक्त चल रही है, इस वक्त गड्ढा खुदाई का बड़ा उपयुक्त समय है। ये करने के बाद इसमें जैसे भी पटाई की जाती है, उसमें गोबर की खाद डाल के, सड़ी हुई गोबर की खाद,
1: यानी गड्ढों की

0: भराई
1: भराई की जाती है, इससे भी हमें लाभ होता है, पौधा अच्छी तरीके से चलता है और उसमें कीड़े मकोड़े कम लगते हैं।
0: दीक्षित साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे कृषि वानिकी की उन्नत पद्धतियों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 9415118551, 9415118551, 94-151-18551।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का कृषि वानिकी की उन्नत पद्धतियों के बारे में दीक्षित साहब?
1: किसानों से हमारी यही अपील है कि जहाँ भी आपकी जमीन है, मेड़ खाली है, घर के आसपास है, कहीं भी को जो चीजें हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा पौधों का लगाएं। उससे क्या होगी, हमें अब अतिरिक्त आय मिलेगी, हमारा पर्यावरण ठीक होगा, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारा ठीक होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, उपजाऊ मिट्टी रहेगी, प्रदूषण नहीं होगा। और सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें जो हम वानिकी करते हैं इसमें जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि फसल के साथ साथ हम पौधों का भी कर रहे हैं, इससे जो हमें अतिरिक्त आय मिलती है इससे हमें फायदा होगा।
0: सुरेश चंद्र दीक्षित साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और कृषि वानिकी की उन्नत पद्धतियां कौन कौन सी हैं जिनको किसान भाई बहन जलवायु परिवर्तन के दौर में अपनाएं, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि वानिकी की उन्नत पद्धतियां, अभी आपने इस विषय पर सुरेश चंद्र दीक्षित से की गई ये भेंट वार्ता सुनी। इनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। हमारी सेहत, कार्यस्थल पर उच्च रक्तचाप का बढ़ता खतरा और सावधानियां, इस विषय पर प्रोफेसर गौरव चौधरी, कार्डियोलॉजी KGMU लखनऊ से आप भेंटवार्ता सुन सकेंगे कार्यक्रम नई उड़ान में शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत राधे श्याम दीक्षित से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा, डिजिटल पथ पर बढ़ता ग्रामीण भारत। इनसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी सुनेंगे, आलेख एवं वाचन शिवराम पांडे का, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत सुनवाने जा रहे हैं, तो कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये लोक भजन डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के स्वर में।

कार्यक्रम चल रहा है लोक माधुरी। आज के कलाकार हैं डॉक्टर अनिल त्रिपाठी। अब सुनिए ये गंगा गीत स्वर डॉक्टर अनिल त्रिपाठी का।

0: लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय अपराह्न के 3:24 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा संपन्न होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे शाम 5 बजे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

0: अभी आप लोक माधुरी कार्यक्रम में डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीतों का आनंद ले रहे थे। इनके साथ संगत करने वाले कलाकार थे ढोलक पर इफ्तिखार आलम, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया, साइड रिदम पर सिद्ध प्रकाश त्रिपाठी। आज का लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: पढ़ाने के लिए

0: की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। प्रस्तुत है आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे शीतल प्रसाद मिश्रा का तबला वादन। हिंदी कार्यक्रम

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजे आरंभ होती हमारी सांध्यकालीन सभा। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा

रात 8 बजे आप सुनेंगे धर्मराज उपाध्याय का काव्य पाठ। शाम 7:31 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर प्रशांत शुक्ला की टॉक डिकोडिंग सिम्बलॉज। रात 8:10 पर सुगम संगीत कार्यक्रम में सुनिएगा अरशद हुसैन चिश्ती के गाए नात व कव्वाली। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में किसान साथी सुनेंगे राधे श्याम दीक्षित से की गई भेंटवार्ता। विषय है डिजिटल पथ पर बढ़ता ग्रामीण भारत। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। साथ ही 6:50 पर किसान साथी सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम में किसान डायरी। आलेख व वाचन है शिव राम पांडे का, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग अब से थोड़ी देर में शाम 5:10 पर, और शाम 5:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नई उड़ान। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः 10:10 पर आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। कल रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत भारती। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। उर्दू कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:30 और जिले की हलचल आप सुनते हैं प्रातः 9:15 पर। फसल चक्र का चुनाव डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी जानकारी देंगे प्रातः 6:05 पर कार्यक्रम कृषि चर्चा में। प्रातः 7 बजे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे गर्मी के मौसम में डायरिया से बचाओ, जानकारी देंगी नीना सोनकर। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में प्रातः 9:50 और दोपहर 2:45 पर लोक माद्री कार्यक्रम में आप सुनेंगे अंजलि श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत। बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन दिन में 1:15 पर। विज्ञान और किसान कार्यक्रम का समय होगा दिन में 2:30। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर, और शाम 5:45 पर सुनिए का कार्यक्रम नई उड़ान। लोकायतन कार्यक्रम में नंद किशोर वर्मा से की गई भेंटवार्ता किसान साथी सुनेंगे। विषय है जल संचयन से ग्रामीण समृद्धि। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। समय होगा शाम 6:30 और 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर हरि कृष्ण मिश्र से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता। विषय है ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कार्य। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अनुपम त्रिपाठी से प्रवीण कुमार की भेंटवार्ता। विषय है एआई से अंतरिक्ष तक, भारत के बढ़ते तकनीकी कदम। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक मोरल की वार्ता आप सुनेंगे। विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया दौर और हिंदी साहित्य। सुगम संगीत कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा अनुराधा पौडवाल के गाए भजनों का। इसके साथ ही फिल्म संगीत का भी आप आनंद समय समय पर लेते रहेंगे। ये थी जानकारी आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

0: सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पथ, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ढल गया है दिन, हो गई है शाम और बज गया है 5:11। और हाजिर हैं आपके दो दोस्त, मैं यानी के मांडवी और मेरे साथ हैं
1: मैं आयुषी,
0: लेकर के आपका अपना प्रोग्राम युवा तरंग। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खास दिन की जो इंसानियत की सेवा की मिसाल है, जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, यानी कि आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं दिन, वो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जिसे हम 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और ये दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है जिससे कि हमको पता चले कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। अब जैसे कोई मुश्किल में फंसा हुआ है तो उसकी मदद कौन करेगा, उसकी मदद लोग ही करेंगे। और कुछ ऐसी संस्थाएँ बना दी जाती हैं जो आपदा प्रबंधन के लिए काम करती हैं, उन्हीं में से वर्ल्ड रेड क्रॉस डे पे ही हम लोग रेड क्रॉस एक संस्था है जिस पे बात करेंगे।
1: बिल्कुल मानवी। और दोस्तों, इस दिन की सबसे खास बात यही है कि ये हमें सिखाता है कि सच्ची इंसानियत क्या होती है। रेड क्रॉस के स्वयंसेवक हर परिस्थिति में लोगों की मदद करते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपेक्षा के। उनका यही निस्वार्थ भाव हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने स्तर पर दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम करें।
0: बिल्कुल आयुषी। और रेड क्रॉस सिर्फ आपदा के समय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई महत्वपूर्ण काम करता है, जैसे कि रक्तदान शिविर का आयोजन करना हो गया, और प्राथमिक उपचार जो होता है उसकी ट्रेनिंग देना, और स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता फैलाना। और ये सब काम वो समाज को मजबूत बनाने के लिए, उसको सुरक्षित बनाने के लिए करता है।
1: हाँ, और आज के समय में दोस्तों, जब दुनिया कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है, तब ऐसे संगठनों की भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हमें ये समझाता है कि मदद करने के लिए बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, छोटी छोटी कोशिशें भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
0: तो दोस्तों, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि हमें अपने अंदर की संवेदनशीलता को जागृत रखना चाहिए, जगाए रखना चाहिए, और जहाँ भी मौका मिले दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
1: और दोस्तों, इसी प्रेरणादायक सोच के साथ आइए हम भी ये संकल्प लें कि हम इंसानियत और सेवा की इस भावना को अपने जीवन में अपनाएंगे और समाज को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देंगे। और दोस्तों, इसी सोच के साथ अब कार्यक्रम में वक्त है एक गीत का, आइए सुनते हैं।

दोस्तों अब समय है कार्यक्रम में आपको एक प्रस्तुति सुनाने का, जिसका शीर्षक है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, फैशन का नया चेहरा या दिखावे की दुनिया, जिसमें हमने इस डिजिटल दौर की उस चमकदार दुनिया को समझने की कोशिश की है जो देखने में बेहद आकर्षक है लेकिन अपने भीतर कई गहरी सच्चाइयां छुपाए हुए हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी आयुषी और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग। दोस्तों आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत है लेकिन उसके पीछे की सच्चाई उतनी ही गहरी और सोचने वाली है। बस एक नोटिफिकेशन और हमारी उंगलियां खुद ब खुद स्क्रीन पर चलने लगती हैं। हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है, कपड़े, चेहरे, जगह और यहां तक कि जिंदगी भी। आज का विषय है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, क्या ये फैशन का नया चेहरा है या दिखावे की दुनिया। आज का समय डिजिटल युग का समय है जहां पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि यूजर नेम से होती है, जहां लोग अपने असली चेहरे से ज्यादा अपने प्रोफाइल को सजाते हैं और जहां एक तस्वीर, एक वीडियो या एक रील किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इंस्टाग्राम पर फैशन इन्फ्लुएंसर्स इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो लोग जो कभी आम थे आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनका हर पोस्ट, हर स्टोरी, हर वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं होता बल्कि एक इमेज होती है, एक ऐसी छवि जिसे देखकर लोग खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम इंस्टाग्राम खोलते हैं तो हमें एक के बाद एक ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जो हर बार पहले से ज्यादा परफेक्ट लगते हैं। कोई महंगे ब्रांड के कपड़े पहने होता है, कोई शानदार लोकेशन पर फोटो खिंचवा रहा होता है, कोई अपने गेट रेडी विद मी वीडियो में फ्लॉलेस स्किन और परफेक्ट मेकअप दिखा रहा होता है। धीरे धीरे ये सब हमारे दिमाग में एक आदर्श बना देता है, एक ऐसा आदर्श जिसे हम हासिल करना चाहते हैं लेकिन जो अक्सर वास्तविकता से बहुत दूर होता है। फैशन इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि आज वो सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते बल्कि ट्रेंड्स को बनाते हैं। पहले फैशन डिजाइनर्स तय करते थे कि क्या पहना जाएगा, फिल्में तय करती थी कि कौन सा स्टाइल लोकप्रिय होगा, लेकिन आज एक इन्फ्लुएंसर का एक वीडियो पूरी दुनिया का फैशन बदल सकता है। किसी ने एक

0: स्टाइल पहना और अगले ही दिन हजारों लोग उसी स्टाइल को अपनाने लगते हैं। इस तरह इंस्टाग्राम ने फैशन को लोकतांत्रिक बना दिया है, जहां हर किसी के पास अपनी पहचान बनाने का मौका है। आज के समय में ब्रांड्स भी इन्फ्लुएंसर्स पर निर्भर हो गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग अब एडवर्टाइजमेंट्स पर कम और रियल पीपल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जब एक इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट यूज करता है तो उसके फॉलोअर्स उसे सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट नहीं मानते बल्कि एक रिकमेंडेशन मानते हैं। इसीलिए आज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन क्या ये दुनिया सच में उतनी ही परफेक्ट है जितनी हमें दिखती है? तो सच्चाई ये है कि जो हम देखते हैं वो सिर्फ एक चयनित हिस्सा, चुना हुआ पार्ट होता है। एक फोटो के पीछे कई फिल्टर्स, कई असफल कोशिशें होती हैं। एक वीडियो के पीछे कई रीटेक्स होते हैं और एक परफेक्ट लाइफ के पीछे कई अनदेखी परेशानियां होती हैं। कई बार जो लोग हमें सबसे ज्यादा खुश दिखाई देते हैं वो अंदर से उतने ही संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कोई अपनी असफलता नहीं दिखाता, कोई अपनी कमजोरी नहीं दिखाता, और यही वजह है कि हम एक ऐसी दुनिया को सच मान लेते हैं जो पूरी तरह से सच्ची नहीं होती। इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारे दिमाग और हमारे आत्मविश्वास पर। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी उतनी अच्छी क्यों नहीं है, हमारे पास उतने फॉलोअर्स क्यों नहीं है, हम उतने सुंदर या स्टाइलिश क्यों नहीं है। धीरे धीरे ये कंपैरिजन हमें अंदर से कमजोर करने लगता है। हम अपने आप को कम आंकने लगते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अपनी असली पहचान खोने लगते हैं। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सिर्फ दिखावे की दुनिया नहीं है, ये एक अवसर भी है। आज कई लोग अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ रहे हैं। कोई फैशन डिजाइनिंग में नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई सस्टेनेबल फैशन को प्रमोट कर रहा है, कोई बॉडी पॉजिटिविटी का संदेश दे रहा है। वो लोगों को ये सिखा रहे हैं कि सुंदरता सिर्फ एक आकार या रंग में नहीं होती बल्कि आत्मविश्वास में होती है। छोटे छोटे बिजनेसेस जो कभी बड़े बाजार तक नहीं पहुंच पाते थे, आज इन्फ्लुएंसर्स के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। इस तरह सोशल मीडिया ने सिर्फ व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरे समाज को बदलने की क्षमता दिखाई है। तो आखिर सच क्या है? क्या इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स एक भ्रम है या एक नई सच्चाई? शायद वो दोनों ही है। वो एक सपना भी है और एक सच्चाई भी है। और असली बात ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर हम इसे इंस्पिरेशन माने तो ये हमें आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर हम इसे कंपैरिजन बना लें तो ये हमें खुद से दूर कर सकता है। याद रखिए, असली फैशन वो नहीं जो ट्रेंड्स में है, असली फैशन वो है जो आपको आप बनाता है। आपकी सादगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंडिविजुअलिटी, यही आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपकी असली पहचान किसी फिल्टर की मोहताज नहीं है। आपकी मुस्कान किसी एडिटिंग की जरूरत नहीं रखती। आपकी जिंदगी किसी कंपैरिजन की नहीं बल्कि अप्रिसिएशन की हकदार है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूर करें लेकिन उसमें खोए नहीं। इंस्पिरेशन लें लेकिन कंपैरिजन से बचें, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे एक अलग कहानी होती है और आपकी कहानी भी उतनी ही खास है। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। ना आपको किसी जैसा बनने की जरूरत है, ना खुद को कम समझने की। बस खुद पर भरोसा रखिए और अपनी असली पहचान के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो अगली बार जब आप इंस्टाग्राम खोलें तो सिर्फ स्क्रॉल ना करें, थोड़ा सोचें भी और खुद से कहें कि मैं किसी और जैसा नहीं, मैं अपने जैसा ही सबसे बेहतर हूँ। और इसी सोच के साथ दोस्तों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक गीत का, आइए सुनते हैं।
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: दोस्तों चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है पुरातत्व का महत्व एवं उभरते करियर अवसर। वार्ताकार हैं अनामिका जी जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं एशियंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार, मेरा नाम अनामिका है। मैंने AIH एंड आर्कियोलॉजी में लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। आज रेडियो के जरिए हम उस विषय के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से हजारों साल पुरानी मिट्टी में दफन सभ्यताओं को जान पाया गया। हम बात कर रहे हैं आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व की। पुरातत्व को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं, खासकर उन लोगों के मन में जो इतिहास में रुचि रखते हैं, जो यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, हमने चलना कब से शुरू किया, या फिर जो पुरानी इमारतें हम देखते हैं वे किस सदी में बनाई गईं और उन्हें किसने बनाया। पुरातत्व आपके ऐसे तमाम सवालों के जवाब खोजता है। पुरातत्व के अन्य पहलुओं के बारे में जानने से पहले हम यह जानेंगे कि आखिर पुरातत्व क्या है। पुरातत्व या आर्कियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो इंसानों द्वारा प्रयोग में लाए गए अवशेषों के जरिए अतीत की परतें खोलती है, यानी वे वस्तुएं जिनका प्रयोग पुरामानों ने कभी न कभी किया होगा या जो उस दौर में रही होंगी

0: में पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी या फिर झोपड़ियाँ और इमारतें, ऐसे कई पुरावशेष शामिल हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट इन अवशेषों की खोज एक्सप्लोरेशन और एक्सकेवेशन विधियों के जरिए करते हैं। एक्सप्लोरेशन विधि में हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जाकर उस स्थल का निरीक्षण करते हैं, वहीं एक्सकेवेशन जो एक अहम विधि है, उस स्थल की एक्सकेवेशन के मेथड्स के जरिए हम उनकी खुदाई करते हैं। जैसे कि आपने कभी ना कभी अपनी इतिहास की किताब में सिंधु सभ्यता के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। वहाँ की पक्की सड़कें, स्नानागार और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम देखकर ही हम उस समय की तकनीक के बारे में जान पाए हैं। इस सभ्यता को उजागर करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ही हैं। भारत में ऐसे और भी कई स्थल हैं जिन पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसर्च कर रही है। भविष्य में पुरातत्ववेत्ताओं के जरिए हमें अतीत के बारे में और भी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। अब सवाल यह आता है कि जो लोग पुरानी सभ्यताओं या अवशेषों में दिलचस्पी रखते हैं और भविष्य में एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में खुद को देखना चाहते हैं, वे इस क्षेत्र में अपनी राह कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले, अगर आपने 12th में इतिहास पढ़ा है तो यह एक अच्छा बेस है। लेकिन अगर आप किसी और स्ट्रीम से भी रहे हैं, आप निराश नहीं होइए, तब भी आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। भारत में कई यूनिवर्सिटीज़ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आर्कियोलॉजी चुनने का अवसर देती हैं। इसके बाद आप भारत के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान से आर्कियोलॉजी में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि रिसर्च में है तो प्रोफेसर बनने का विकल्प भी पुरातत्व विषय में मौजूद है, आप उस ओर भी जा सकते हैं। शुक्रिया।
1: दोस्तों, अभी आपने सुनी है वार्ता, और आइए कार्यक्रम में सुनते हैं अभी गीत।

0: दोस्तों, अब बस समय हो गया है उस खास सेगमेंट का जिसका आप सभी को इंतजार रहता है, जो हम हर शुक्रवार लेकर आते हैं, और वो है रोजगार सूचनाएं। जी हाँ दोस्तों, रोजगार सूचनाएं, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नई नई नौकरियों की जानकारी, सुनहरे अवसर और आपके उज्जवल भविष्य की एक मजबूत शुरुआत। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा रोजगार सूचनाओं की ओर।
1: तो सबसे पहले बात करते हैं फैब्रिकेशन सुपरवाइजर की। ये एक जिम्मेदारी भरा पद है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति को फैक्ट्री या वर्कशॉप में होने वाले निर्माण कार्यों की निगरानी करनी होती है। धातु को काटने, जोड़ने और वेल्डिंग जैसे कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है। उसे अपनी टीम को निर्देश देना, काम की गुणवत्ता बनाए रखना और समय पर कार्य पूरा करवाना होता है। इस पद के अंतर्गत कुल 5 रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें उम्मीदवार को लगभग 99,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। इस पद के लिए आयु सीमा 30 से 48 वर्ष निर्धारित की गई है और इसमें अनुभव होना बहुत अनिवार्य है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये पद अनुभवी उम्मीदवारों के लिए ही है।
0: और अब बात करते हैं मैकेनिकल हेल्पर की। ये एक सहायक भूमिका है, जिसमें व्यक्ति मशीनों से जुड़े कार्यों में टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर की मदद करता है। इसमें उपकरण पकड़ना, मशीनों की सफाई करना, छोटे मोटे कार्यों में सहायता देना और सीखते हुए काम करना शामिल होता है। ये उन युवाओं के लिए अच्छा अवसर है जो तकनीकी क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। इस पद के लिए कुल 20 रिक्तियां हैं और इसमें लगभग 30,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा 25 से 35 वर्ष रखी गई है और इसमें भी संबंधित कार्य की समझ या अनुभव होना आवश्यक है।
1: अब हम बात करते हैं CNSC, VTL और ARC ऑपरेटर की। ये एक तकनीकी और आधुनिक मशीनों से जुड़ा हुआ पद है, जिसमें कंप्यूटर नियंत्रित मशीनों के माध्यम से धातु को काटने, घुमाने और आकार देने का काम किया जाता है। इस काम में बहुत अधिक सटीकता और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती भी पूरे उत्पाद को प्रभावित कर सकती है। इस पद के अंतर्गत कुल 15 रिक्तियां हैं और इसमें लगभग 42,000 प्रतिमा वेतन दिया जाएगा। इस पद के लिए आयु सीमा 24 से 35 वर्ष निर्धारित है और इसमें अनुभव होना अनिवार्य है।
0: इसके बाद बात करते हैं पाइप फिटर की। इस पद में व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की पाइपलाइन को जोड़ना, उसकी मरम्मत करना होता है।

0: ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र, फैक्ट्रियों और बड़े निर्माण कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें सटीकता और अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पाइपलाइन में किसी भी प्रकार की त्रुटि बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। इस पद के लिए कुल 15 रिक्तियां उपलब्ध है और इसमें 44,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा है 24 से 35 वर्ष और अनुभव अनिवार्य है।
1: अब बात करते हैं मैकेनिकल फिटर की। इस पद में व्यक्ति मशीनों के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने, फिट करने और उन्हें सही तरीके से चलाने के लिए तैयार करता है। ये कार्य मशीनों की कार्य क्षमता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सही फिटिंग के बिना मशीन सही ढंग से काम नहीं कर सकती है। इस पद के अंतर्गत कुल 15 रिक्तियाँ हैं और इसमें 58,000 प्रतिमा वेतन दिया जाता है। इस पद के लिए आयु सीमा 26 से 42 वर्ष रखी गई है और अनुभव अनिवार्य है।
0: इन सभी पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार रोजगार पोर्टल पर जाकर अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन करते समय किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय लखनऊ से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, हर अवसर एक नई शुरुआत का संकेत होता है, जरूरत है बस उसे पहचानने की और सही समय पर कदम बढ़ाने की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रोजगार सूचनाएं। फिर मिलेंगे नई रोजगार सूचनाओं के साथ, तब तक के लिए आइए सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो मुझे आने के आपकी अपनी दोस्त मांडवी
1: और आयुषी को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार और सुनते रहिए ये गीत।

युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवा तरंग, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। दोस्तों, कभी किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को किसी अनजान इंसान ने अस्पताल पहुंचाया हो, कभी बाढ़, भूकंप या महामारी के समय मदद के लिए सबसे पहले कोई संस्था सामने आई हो, तो समझ लीजिए कि वहाँ कहीं ना कहीं मानवता का लाल निशान यानी रेड क्रॉस ज़रूर मौजूद रहा होगा। दोस्तों, आज 8 मई है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, यानी इंसानियत, सेवा और करुणा को समर्पित एक खास दिन। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिन रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, एक बात जो हम समझते हैं वो यही है कि जब हम अपने आप को इंसान कहते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि जो धरती पर मौजूद जीव हैं उनमें हम अलग कैसे हैं। अलग ऐसे हैं कि हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है, हम सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं, हम किसी के दुख को महसूस कर सकते हैं और उस दुख को ख़त्म करने के लिए थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। और शायद अगर हम रेड क्रॉस की बात करते हैं तो उसका संदेश यही है कि मानव जीवन की रक्षा और उसकी पीड़ा को कैसे कम किया जा सके। तो आज के दिन हमें भी ये संकल्प लेने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें ये महसूस करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति किसी दुख से कराह रहा है, कोई आपदा उसे परेशान कर रही है, किसी वजह से वो किसी पीड़ा में है, तो हम उसकी मदद, उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए, इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि हम लोगों की मदद करें। और जब मदद की बात आती है तो हम अपने आसपास अक्सर देखते हैं, चाहे हम सड़क दुर्घटना की बात करें या कोई दैवीय आपदा की बात करें या कोई ऐसी अनहोनी की बात करें जो हमारे आसपास घटित होती है, अक्सर हमारे मन में सवाल ये आता है कि हम ही क्यों, यानी कि मैं क्यों आगे बढ़ूं। कई बार लोग इस वजह से भी आगे नहीं बढ़ते हैं कि कानूनी दांवपेच में कौन पड़ेगा या बार बार कौन मदद करेगा, या हम मदद कर भी दें तो हमें क्या फ़ायदा। बहुत सारे सवाल मन में होते हैं, लेकिन जब हम मानवता की बात करते हैं तो हमें इन सारे सवालों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मदद के लिए एक कदम सबसे पहले हमें ही आगे बढ़ाना चाहिए। हम देखते हैं, आज अगर सड़क दुर्घटना की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क दुर्घटना में जब घायल होते हैं तो उनकी मृत्यु महज इस वजह से होती है कि समय पर उन्हें अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सके। और इसके पीछे की वजह ये है कि हम ये सोचते हैं कि भाई कौन कानूनी दांव पेच में पड़ेगा और हम क्यों प्रयास करें। हमें कहीं जाना होता है, हमें देर हो रही होती है और हम उसका साथ छोड़ देते हैं या उसके साथ जाने से इनकार कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जबकि यही ज़रूरत होती है कि हम इंसानियत दिखाएं। और भले ही हमारा कोई ऐसा काम हो जिसमें हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा हो, मगर उस काम को सोचे बिना हम कुछ क्षण उसके पास रुकें, उसका हालचाल जानने का प्रयास करें और अगर ज़रूरत हो तो उसे अस्पताल तक पहुंचाएं। तो आज का दिन इसी को समर्पित है कि कैसे हम मानवता को, कैसे हम इंसानियत को आगे बढ़ा सकें, कैसे किसी की विपत्ति में हम काम आ सकें, ये समझने की ज़रूरत है। तो भाई, हमारा तो दायित्व ये है कि हम आपको बताते रहें, समझाते रहें और हम खुद भी इस तरह के जो काम होते हैं उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उम्मीद है कि हम, आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको अपनी बात बताते हैं तो आपको हमारी बातें समझ में आएंगी और आप भी कुछ वैसा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी एक बहुत ही खूबसूरत से गीत की बारी है, आइए सुनते हैं और फिर लौट करके आते हैं तो कुछ खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं।

0: दोस्तों, नई उड़ान कार्यक्रम में अब बारी है हमारी आज की विशेष श्रृंखला की, जिसका नाम है हमारी सेहत। और आज इस श्रृंखला में हम आपको जानकारी देंगे कार्यस्थल पर उच्च रक्तचाप का बढ़ता खतरा और सावधानियां इस विषय पर। और इस विषय में आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं डॉक्टर गौरव चौधरी जी। आप प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट KGMU में, और आपसे बातचीत कर रही हैं नीना सोनकर जी।
1: श्रोताओं, आज आकाशवाणी लखनऊ के VIP स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ स्थित लारी कार्डियोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर गौरव चौधरी जी को। और आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है कार्यस्थल पर उच्च रक्तचाप का बढ़ता खतरा और क्या हम सावधानियां बरतें जिससे कार्यस्थल पर जब हम जाएं तो हम इस परेशानी से बचे रहें। डॉक्टर गौरव चौधरी जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम श्रोताओं से मुखातिब होकर कुछ बातें कहना चाहेंगे, वो ये कि भागती दौड़ती जिंदगी है, हर इंसान तेज चलना चाहता है और कहा भी जाता है कि तेज का जमाना है, हमें स्लो नहीं चलना है। यानी सुबह सवेरे हर इंसान काम के लिए तैयार होता है, जल्दबाजी होती है कि ऑफिस सही समय पर पहुंचना है, या फिर कहीं और भी वो काम करने जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि समय का बहुत महत्व है और समय से हमें पहुंचना है। तो ये जो जल्दबाजी है, चाहे वो घर से निकलने की हो, जल्दी बाइक को ड्राइव करके अपने कार्यस्थल पर पहुंचने की हो, तो ये सब बातें किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इससे क्या दिक्कत होती है।
2: देखिए, जो आपने ये विषय उठाया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी लोग रेस में आगे निकल जाना चाहते हैं
1: जी।
2: पर इसका मैं एक दार्शनिक या आध्यात्मिक एक उत्तर देना चाहूंगा कि इस संसार में जो भी कुछ भी है वो टेम्पररी है, कोई परमानेंट तो है नहीं
1: जी।
2: और जो प्रेजेंट टेंस है वो कल पास्ट टेंस हो जाएगा
1: जी।
2: फ्यूचर प्रेजेंट बनेगा, फिर वो पास्ट हो जाएगा। तो किसी भी भाग दौड़ का अगर हमें लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट हो रहा हो और हम उतना स्ट्रेस ना लें कि जिससे हमारी हेल्थ गड़बड़ा जाए, क्योंकि आज के दिन हम बहुत स्ट्रेस लेके उठेंगे, किसी एंग्जाइटी में रहेंगे, तो आजकल एक नई टर्म आई है स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक इस पे शोध किया है और काफी उसके बारे में डिस्कशन हुआ है कि अगर बहुत स्ट्रेस व्यक्ति को है सुबह भाग दौड़ पहुंचने का
1: जी,
2: बहुत जल्दीबाजी का, चारों तरफ नॉइस पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है और आप किसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि जल्दी पहुंचना है
1: जी,
2: लेकिन अगर इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ जा रहा है
1: जी,
2: एक मुख्य कारण है स्ट्रेस, तो ब्लड प्रेशर आगे चल के क्या कर सकता है? ब्लड प्रेशर आगे चल के व्यक्ति को हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, फालिश की बीमारी, तो ये तीनों ही हमारे देश में मृत्यु दर का सब में 28-30% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से आजकल हमारे देश में डेथ हो रही है। इस जीवन में अगर बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो मैं तो कहता हूं दो ही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, बर्थ और डेथ। हम इस प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं, जो भी गिवन लाइफ है, जो भी व्यक्ति को जीवन मिला है उसको धीरे धीरे धैर्य के साथ जिए, क्योंकि एंड पॉइंट तो डेथ ही है, तो बहुत जल्दी करके भी क्या ही मिल जाएगा
1: जी।
2: तो ये समझना बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी बहुत दिक्कत पैदा कर सकती है किसी के भी शरीर में। आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी बताई कि हमें इत्मीनान रखना है जिंदगी में, क्योंकि जब जिंदगी रहेगी तभी सब कुछ है। अब एक आम आदमी या किसी मेल फीमेल, हम सबकी बात कर रहे हैं, कि जब ब्लड प्रेशर की बात आती है तो ब्लड प्रेशर किस तरह का होना चाहिए? प्रेशर सबको रहता है, कार्यस्थल की हम बात कर रहे हैं, जो भी महिलाएं या पुरुष कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर के बारे में आप क्या समझाएंगे?
2: देखिए, जो आपने कार्यस्थल की बात कही ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अभी तक हमारे देश में उतनी सिंसेरिटी से, उतने ध्यान से देखा नहीं गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप अमेरिका में या वेस्टर्न कंट्री में जब भी किसी व्यक्ति की जॉब शुरू होती है
1: जी,
2: तो वहां पर उसका ब्लड प्रेशर, शुगर, लिपिड, रूटीन ब्लड की जांचें,

0: या 18 वर्ष की आयु होते ही मैंडेटरी है लगभग।
1: जी
0: वहाँ कोई भी जॉब ज्वाइनिंग होगी तो आपकी एक जॉब सिक्योरिटी को देखते हुए आपकी मेडिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे देश में कुछ आर्मी में या पुलिस में तो चेकअप होता है, लेकिन रूटीन जॉब्स जिनमें स्ट्रेस हो या ना हो उसमें भी जांच होना चाहिए। तो एक बार जब कोई व्यक्ति अगर अपने वर्क प्लेस के रिलेटेड, क्योंकि आपने बात कही है, वर्क प्लेस पे जब भी ज्वाइनिंग हो तो तभी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, लिपिड और शुगर की जांच होनी चाहिए, जो कि एक वेस्टर्न स्टैंडर्ड में 30-40 साल से नॉर्म है। यही एक बड़ा डिफरेंस है जो हम वेस्टर्न कंट्री को इंडिया से कंपेयर करें, क्योंकि आपके पास एक रोड मैप है कि इनका ब्लड प्रेशर भाई 18 वर्ष की आयु में 120-80 था और उसका हर महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में आप चेकअप करते रहें, तो ऐसी कोई पैनिक की या एंग्जायटी की सिचुएशन अचानक से नहीं आ जाएगी कि भाई आपने कभी ब्लड प्रेशर ज्वाइनिंग के टाइम चेक नहीं, किसी ने जॉब में किया नहीं, अब वो 35 साल का हुआ, 40 साल का हुआ, स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन आई जॉब में, अचानक उसका बीपी समझिए 160-100 पहुंच गया, तो ये पहली बार नहीं हो रहा होता क्योंकि उसका कभी चेकअप ही नहीं हुआ। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कुछ स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं पढ़ रहा था कि बच्चों की मतलब डायबिटीज को चेक करने के लिए शायद बोर्ड के एग्जाम के पास 12th के बाद ये रूटीन ब्लड की शुगर की जांच होने का गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आ रहा है। तो ऐसे ही ब्लड प्रेशर अगर हम पहले से पता रख रहे हैं, और कोई ऐसे नहीं कि हम 3-4 साल में कभी ध्यान आया तो कभी चेक कर लिया या कभी सर में दर्द हुआ तो चेक कर, ये एक रूटीन प्रक्रिया होनी चाहिए कि हमारे घर में जो भी कम से कम 18 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हो गए हैं उनका ब्लड प्रेशर बेसलाइन, लिपिड बेसलाइन और शुगर बेसलाइन चेक हो जाए। उसके बाद आप कभी वर्क प्लेस पे आएंगे, कभी आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई धड़कन बढ़ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर सुबह शाम घर में रीडिंग लें हफ्ते 2 हफ्ते का, और अपने कोई भी चिकित्सक जो नियर बाय फैमिली फिजिशियन हो उनसे मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज भी एक सही माप क्या है ब्लड प्रेशर ऊपर का और नीचे का क्या होना चाहिए?
0: देखिए बहुत ही डेवलपमेंट हुए हैं इधर ओवर द इयर्स, कई गाइडलाइन आई, JNC गाइडलाइन, अमेरिकन गाइडलाइन, इंडियन गाइडलाइन। तो अगर मोटी मोटी बात पे मैं कहूं तो पहले जो ब्लड प्रेशर हम नॉर्मल मानते थे अब उसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम स्टेज मतलब प्री हाइपरटेंसी बोलते थे, अब उसको भी हमने हाइपरटेंशन की श्रेणी में रख दिया। मैं कहूं तो अब 120-80 ही नॉर्मल है। अगर किसी का 130-85 भी ब्लड प्रेशर जा रहा है, 80 से 90 के बीच में अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर जा रहा है और 130 से 140 के बीच में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन हो जाता है। मतलब उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और 3 महीने की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को मैं भी बताऊंगा, जैसे कि नमक कम रखना, रेगुलर वॉक करना। अगर वो फिर भी बना हुआ है तो हो सकता है व्यक्ति को दवा की जरूरत पड़े, और 140-90 के ऊपर तो बहुत ही अलर्ट हो जाना है। इस पे तो इंडिकेटेड है ही कि हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जल्दी स्टेज में, अगर उसका लाइफस्टाइल से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा।
1: कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब कि अगर इस तरह का बीपी है जो आपने 140-90 बताया, तो दवा जरूर खानी है, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना है, उनसे परामर्श करने के उपरांत ही, और कुछ ऐसे लोग जैसे कार्यस्थल पर आते हैं तो उनकी बात भी होती है एक दूसरे से कि मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम होम्योपैथी की दवा खा लो या फिर कुछ आयुर्वेद की तरफ जाने की सलाह देते हैं कि एलोपैथी अभी शुरू नहीं करेंगे, तो क्या सही है ये बताइए।
0: देखिए कभी भी कोई भी व्यक्ति को जब पता चलता है कि उसे कोई बीमारी ऐसी हो गई है जिसका उसको शायद जीवन भर इलाज करना पड़े
1: जी,
0: तो कोई भी व्यक्ति उस इलाज से बचना चाहेगा। और कई बार हमने सुना है कि लोग कोई जड़ी बूटी, कोई अर्जुन की छाल, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में आयुर्वेदिक दवा लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि कई बार लीवर पे, किडनी पे असर आ जाता है, और पेशेंट जो कि एक नॉर्मल 5 मिलीग्राम या 2.5 मिलीग्राम की टैबलेट खाने से ठीक हो सकता था, वो ऐसी जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चीजें ले लेता है जिससे उसका किडनी और लीवर खराब हो जाता है। हमने काफी पेशेंट अपने एडमिट होते थे देखे हैं जिनका किडनी फेलियर हो गया, वो कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवा खा रहे थे जिसका साइड इफेक्ट पता ही नहीं था, पहली चीज। दूसरी बात रही दवा खाने की, आप अगर देखें कोई भी व्यक्ति जीवन भर में खाना खाता है, 3 टाइम खाना खाता है क्योंकि उसके लिए जीवन के लिए जरूरी है, वो 200 ग्राम से आधा किलो का तो सेवन कर ही रहा है, अगर उसमें वो 2.5 मिलीग्राम जो कि 1000वां हिस्सा है, अगर वो दवा खानी भी पड़े और उसके खतरा नॉर्मल पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है जिसका ब्लड प्रेशर दवा के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, उसकी तुलना में जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है वो कई गुना रिस्क पे है हार्ट अटैक के, फालिश के, हार्ट फेलियर के। तो कोई भी दवा से अगर हमारा जीवन बच सकता है तो हमें वो दवा लेनी चाहिए, उसको इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि हम दवा लेंगे हमारा क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है हमारी सोसाइटी में।
1: डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दवा लेना जरूरी है, और बहुत सारी पैथीज का भी आपने जिक्र किया, और ये भी सच्चाई है कि हर चीज को छानना किडनी को ही पड़ता है, तो इतनी सारी जड़ी बूटियां, इतनी सारी और भी दवाएं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा, एलोपैथी का होगा, अपने मन से किसी भी चीज के बारे में कोई भ्रम ना पालें, कोई विश्वास ना करें, एक विशेषज्ञ डॉक्टर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो उसको सही से दिखाएं जाकर, और इलाज को शुरू करें उसके परामर्श के हिसाब से। अब ये बताइए डॉक्टर साहब कि जैसे ब्लड प्रेशर की गोली कोई भी खाता है, कोई भी इंसान, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, घर में कोई भी, तो कहा जाता है कि एक नियत समय पर उस गोली को खाना चाहिए, तो जैसे नाश्ता

0: कोई भी करता है उस समय उसको गोली रखनी चाहिए। मान लीजिए वो भूल जाता है, मिस हो जाती है गोली, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफिस आने की जल्दी है और उसने गोली नहीं खाई है और उसको ऐसा लगता है कहीं मैंने खा तो नहीं ली, तो इसी पशुपेश में वो जब ना खाए तो क्या होगा?
1: देखिए ये बहुत ही जरूरी चीज है जो आपने बताया। कई बार ये कहा जाता है कि दवा आपको सुबह खानी चाहिए, लेकिन अगर इसका साइंटिफिक एविडेंस आप देखें तो आज तक कोई ऐसा साइंटिफिक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जिसको हम बोलते हैं हाई क्वालिटी एविडेंस नहीं है कि सुबह लेने से बेनिफिट है कि शाम लेने से बेनिफिट है। जो भी व्यक्ति को उचित लगे कि वो शाम के टाइम ज्यादा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि कुछ स्टडीज हैं जिसमें लोगों का ब्लड प्रेशर रात के टाइम बढ़ता है, उसको बोलते हैं नॉन डिपर्स, उनमें कई बार गोली शाम के समय बेनिफिट होती है। ये हर्मिडा ट्रायल एक है, उसमें जो आया हर्मिडा सीरीज एक है जिसमें निकल के आया कि शाम के टाइम भी अगर लेंगे तो शायद उतना ही बेनिफिट या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो समय से कोई फर्क नहीं पड़ता आप सुबह लें या शाम को लें, लेकिन अगर आप शाम को ले रहे हैं तो रेगुलर कोशिश करें आप शाम को ही लें। अगर आप सुबह को ले रहे हैं तो आप कोशिश करें सुबह ही लें, और एक फिक्स टाइम हो जाएगा कि आप रेगुलर उसमें लीजिए। इन केस अगर वो गोली मिस हो जाती है तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसको 12 घंटे बाद ले सकते हैं, या ब्लड प्रेशर चेक करिए, अगर बहुत हाई नहीं है तो अगली शाम को भी 24 आवर बाद भी ले सकते हैं। दूसरा, आजकल जैसे 30 टैबलेट का आपने पैक ले लिया
0: जी,
1: तो उस पे आप डे काउंट कर लीजिए कि भाई आज सातवां दिन है, 7 गोली खत्म हुई, 8वां दिन है, आज 8 खत्म हो जानी चाहिए थी तो 8वीं गोली नहीं ली है
0: जी।
1: तो एक बड़ी गोली की स्ट्रिप लेना ठीक रहता है, 45 दिन की, 30 दिन की, तो उससे जैसे आपने कहा कंफ्यूजन हो गया, मैं याद नहीं रहा हमने ली कि नहीं ली, तो एक वो अच्छी मार्किंग है, कुछ पे नंबर भी लिख के आता है कि डे के हिसाब से आता है कुछ टैबलेट पे, पर नहीं भी आ रहा तो आप ध्यान रख लीजिए कि भाई 30 गोली थी, आज 7वां दिन था, आज की गोली मिसिंग है, तो आप उसको अगर 1-2 घंटे का गैप है तो ले लीजिए, लेकिन हाँ पूरे 12 घंटे भूल गए तो 12 घंटे बाद ले सकते हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। यूजुअली आपको रेगुलर अपना ब्लड प्रेशर, अगर आप ब्लड प्रेशर हैं और दवा पे कंट्रोल है तो हफ्ते में 2-3 बार घर पे चेक कर लेना उचित रहता है
0: जी। मान लीजिए डॉक्टर साहब कि कोई भी इंसान गोली खा रहा है और उसके बाद भी उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो कितनी जल्दी तुरंत उसे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
1: देखिए जो आपने कहा है, कई बार एक टैबलेट पे अधिकतर लोगों में कई बार कंट्रोल नहीं होता है
0: जी।
1: तो अब ये नया कॉन्सेप्ट आया कि आप एक टैबलेट ना लेके कॉम्बिनेशन पिल, इसको बोलते हैं SPC, सिंगल पिल कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसके अंदर क्या होगा कि 2 टैबलेट का कॉम्बिनेशन होगा, बट उसकी आधी डोज में, आपको पूरी पूरी डोज ना लेके आधी डोज में ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। उससे एक बेनिफिट होता है कि एक दवा की टैबलेट की अगर हम डोज बढ़ाते गए तो उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं, 2 टैबलेट लेंगे आधी मात्रा में लेंगे कॉम्बिनेशन को तो साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे करके 2-3 टैबलेट का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ऐसी गोली भी है जिनमें ट्रिपल कॉम्बिनेशन आजकल आता है, SPC ट्रिपल कॉम्बिनेशन, एक स्टडी भी हुई है उसका, फॉर्चुनेटली एक मेरे अंडर ही स्टडी हुई है जिसमें 3 टैबलेट का कॉम्बिनेशन दिया गया, उसमें 6 हफ्ते पर ही 98% लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया था
0: जी।
1: और उसमें कम मात्रा में भी लेना पड़ता है। दूसरी बात आपने कही, अगर वो टैबलेट ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम डोज ले रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको अपने नियर बाई जो भी फिजिशियन देख रहे हैं उनसे मिलिए, क्योंकि हो सकता है वो कोई दूसरी टैबलेट ऐड करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना वर्सेस कंट्रोल ना रहना ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप दवा तो ले रहे हैं पर BP अगर कंट्रोल नहीं है तो आपको उसका इलाज का पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, फिर भी कुछ रिस्क बच जाता है जो मैंने बताया, स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, किडनी फेलियर का, वो रिस्क हमें खत्म करना है सिर्फ टैबलेट की एडिक्वेट डोज लेके। हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी हो सकता है हमारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें, बाकी अगर ऐसा कई बार हो रहा है तो आपको किडनी की भी जांच करानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल चल रहा था अब कंट्रोल नहीं चल रहा है तो हो सकता है उसके किडनी पे भी असर आ रहा हो, क्योंकि किडनी की डिजीज के साथ जब ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें गोलियों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि डॉक्टर से परामर्श समय समय पर करना है, और आपने ये भी बताया कि हमें अपने डॉक्टर की सलाह को मानना होगा। डॉक्टर साहब, अब ये जो बात मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि ब्लड प्रेशर का संबंध सीधा दिल से है और शरीर के जितने भी अंग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर असर भी डालते हैं, तो दिल की धड़कन जब तक है, कहा जाता है संसार में हम हैं, और अगर धड़कन नहीं है तो हमारा दिल नहीं धड़क रहा है तो हम नहीं है, तो इस धड़कते हुए दिल को कैसे महफूज रखें, क्या खाएं, ऐसा क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए एक बहुत बड़ा जो आज के दौर में जो बदलाव आया है, जो जनरेशन में आया है, आप ध्यान दीजिए कि क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश में भी रहा हूँ अपने बचपन में
0: जी, जी।
1: तो हम देखते थे बचपन में हमारे दादा दादी शाम के 5-6 बजे तक पूरे गांव में सब लोग खाना खा लेते थे, 7-8 बजे तक पूरे गांव में बिजली बंद होके सब सो जाते थे और सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे। दूसरा इंग्लिश प्रोवर्ब, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो मैं इसी का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि खाना हम 7 बजे के बाद ना खाएं, और सुबह फिर आपको 12 घंटे की फास्टिंग मिल रही है, अर्ली मॉर्निंग में उठें 6 बजे के आसपास, ठंडी हवा होती है उस समय वॉक करें कम से कम 30 मिनट्स पर डे, गाइडलाइन है अमेरिकन यूरोपियन, 30 मिनट

0: प्रतिदिन कम से कम 5 दिन एक हफ्ते में, तो 150 मिनट की रेगुलर वॉक करें। अपने खाने में नमक की अधिकता ना रखें, कम से कम नमक लें, एक्स्ट्रा सॉल्ट ना डालें। दूसरा, तेल, चिकनाई और आलू चावल चीनी, जो हमेशा कहता हूँ, जिससे आपका फैट बॉडी में, पेट के ऊपर जो बोलते हैं विसरल फैट, वो नहीं बढ़ेगा, तो उससे डायबिटीज़ होने का खतरा और इंसुलिन का रेजिस्टेंस होने का खतरा कम हो जाता है। ये सिर्फ जैसे ही कोई व्यक्ति अगर 12 घंटे की फास्टिंग रखेगा और शाम को जल्दी खाना खा लेगा, तो उसका 2-3-4 kg वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा, जो कि आगे चल के उसे होने वाली डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से बचाएगा। दूसरा, आजकल हमारा गवर्नमेंट का भी आजकल बहुत ध्यान है, जो हम मोटा अनाज, जो मिलेट और ये सब चीजें खा रहे हैं, तो कोई भी चीज जिसमें मैदा है उसको अवॉइड करें। होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, जिसमें भी मिलेट, जिसमें भी मोटा अनाज है, जिसमें उसका फाइबर आपको मिल रहा है
1: जी।
0: तो उससे एक तो शुगर का जो रश होता है, शुगर रश, जिससे तुरंत अचानक शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, वो सब अवॉइड होगा। और नमक और तेल, चिकनाई कम रखेंगे तो इन जनरल लिपिड की संभावना कम रहेगी, होने वाली डायबिटीज की संभावना कम रहेगी, और आप रेगुलर अगर नमक भी अगर की अधिकता नहीं रखेंगे तो ब्लड प्रेशर भी काफी हद तक कंट्रोल रहेगा
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने कार्यक्रम के आरंभ में कुछ ऐसी बातें की थी कि दार्शनिक बातों से आपने शुरुआत की थी, तो चलते चलते कार्यस्थल पर इस तरह की कोई समस्या ना हो, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से पॉजिटिव रहना है?
0: देखिए, समय इम्पोर्टेंट है, कि जरूरी है, जो भी कोई व्यक्ति कर रहा है अपने अच्छे के लिए कर रहा है। जो भी कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, वो चाहता अपना अच्छा चाहता है, लेकिन अनजाने में कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। आप वर्क प्लेस की बात कर रही हैं, तो वर्क प्लेस पे हमारा एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट ये कि हम खुश रहें, प्रॉस्पर करें, हेल्थ अच्छी रहे, वेल्थ अच्छी रहे। लेकिन अगर हेल्थ ही सब में पहली पिलर है, किसी भी आप डोमेन की बात करिए, अगर हेल्थ ही खराब हो गई तो आपकी एजुकेशन और वेल्थ वो भी खराब हो गई। तो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको स्ट्रेस फ्री कम से कम रहना है, थोड़ा मेडिटेशन करिए, और जैसे मैंने कहा ना, आप जब शाम को 7 बजे खाना खाएंगे, सुबह 5-6 बजे उठेंगे, तो आपके पास ऑफिस जाने से पहले भी 4 घंटे होंगे। ये नहीं कि आप 9 बजे उठ रहे हैं, 9:15 बजे 9:30 बजे तैयार होकर निकलना है और 10 बजे तक पहुंचना है या 9:30 तक पहुंचना है। तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, सुबह 5-6 बजे के आसपास उठें तो आपका एक मेडिटेशन का समय रहेगा, आप थोड़े दिन ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, आप लाइट म्यूजिक, भजन सुन सकते हैं, और अपना लाइट नाश्ता करें, और अगर कोई ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो दवा लें। आप देखिएगा, अगर इतनी भी अगर हमने बदलाव कर लिए, तो ये जो वर्क प्लेस का स्ट्रेस है, ये काफी हद तक कम हो जाएगा, और होने वाली कोई भी ऐसी अनटूवर्ड घटना वो नहीं घटेगी
1: जी। डॉक्टर गौरव चौधरी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कार्यस्थल पर उच्च रक्तचाप का अगर खतरा है, मतलब किसी भी इंसान को, तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत पॉजिटिव बातें भी आपने बताई, पूरी उम्मीद है कि श्रोता इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। आपने अपना कीमती समय आकाशवाणी लखनऊ को दिया, इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आज आपको जानकारी दी, देखिए अक्सर हम लोग भी यही बताते रहते हैं, मगर आज डॉक्टर साहब ने बताया है तो आप ज़रूर समझ पाएंगे कि कैसे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से मुझे, यानी कि अभिषेक को, दीजिए इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। एक आवश्यक सूचना सुनिए। आकाशवाणी @90 राष्ट्रीय सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता नियम एवं शर्तें। ये प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। प्रतिभागी केवल एक प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। विजेता सिग्नेचर ट्यून का पूर्ण स्वामित्व

आकाशवाणी के पास होगा। रचनाकार भविष्य में किसी भी रॉयल्टी का दावा नहीं करेंगे। ट्यून पूरी तरह ओरिजिनल होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की रॉयल्टी फ्री लुप्स या स्टॉक म्यूजिक का उपयोग मान्य नहीं है। AI म्यूजिक जनरेट से बनाई गई प्रविष्टियां सख्त रूप से प्रतिबंधित हैं। आकाशवाणी को चयनित ट्यून को प्रसारण मानकों के अनुसार मास्टर रिमिक्स या छोटा करने का अधिकार है। सभी प्रविष्टियां MyGOV पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी, साथ में अधिकतम 150 शब्दों का एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट भी देना होगा। अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आकाशवाणी@90 राष्ट्रीय चैनल जिंगल प्रतियोगिता। नियम एवं शर्तें। यह प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है। प्रतिभागी केवल एक ही प्रविष्टि जमा कर सकते हैं। प्रत्येक जिंगल पूरी तरह मौलिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकल या पहले से कॉपीराइट किए जिंगल का उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। कॉपीराइट प्रविष्टि जमा करने पर प्रतिभागी आयोजकों को अपने डिजाइन जिंगल पर विशेष अपवर्तनीय और रॉयल्टी फ्री लाइसेंस प्रदान करते हैं। विजेता प्रविष्टियां आकाशवाणी की संपत्ति बन जाएंगी। AI द्वारा बनाई गई आवाज या AI से तैयार संगीत का उपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित है। ऐसी कोई भी प्रविष्टि अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। एक प्रतिभागी एक प्रति चैनल एक प्रविष्टि जमा कर सकता है। अधिकतम जानकारी के लिए वेबसाइट www.mygov.in पर विजिट करें।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। वरिष्ठः भाजपा नेता सुवेन्दु अधिकारी भाजपा विधायक दलस्य नेता निर्वाचितः। सः पश्चिम बंग प्रदेशस्य प्रथमः भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री भवितुं सज्जः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सोमनाथ मन्दिरं भारतस्य दृढतायाः, एकतायाः, सभ्यतायाः च बलस्य कालातीतं प्रतीकत्वेन वर्णितम्। डीआरडीओ तथा भारतीय वायुसेनया स्वदेशीयस्य ताराग्लाइड शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफल

0: दत्ताम शान सूचयन उक्तवान यत अस्मिन् वर्षे वैश्विक वृद्धेः आईएमएफ इत्यस्य अपेक्षानुसारं भारतस्य योगदानं संपूर्णे वैश्विक वृद्धेः 17% यावत् अस्ति।
1: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
2: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंहः अवदत् यत् प्रवास विषये भारतस्य दृष्टिकोणः प्रवासिनां संरक्षणस्य मूल प्रचालन सिद्धान्तैः प्रवासस्य जीवन चक्रस्य सर्वसमावेशक शासनेन सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगेन च मार्गदर्शितः अस्ति। श्रीमंत्री न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र संघस्य भारतस्य स्थायी अभियाने द्वितीयान्तर्राष्ट्रिय प्रवास समीक्षा मंचे प्रतिनिधि दलस्य प्रमुखान संबोधयनासीत।
2: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: प्रशासनेन उक्तं यत् सम्पूर्णे देशे गृहे एलपीजी इत्यस्य आपूर्तिः सुकरः अस्ति। कस्मिन्नपि वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना नास्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर मन्त्रालयीयं वार्तालापं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य सचिवः सुजाता शर्मा इत्येषा उक्तवती यत् प्रशासनस्य प्रयासः अस्ति यत् देशीय ग्राहकेभ्यः गैस इत्यस्य अभावः न भवेत् तथा च पश्चिम एशियायाः विकसित स्थितौ मूल्यानि स्थिराणि एव भवेयुः।
3: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
0: आकाशवाण्या स्वीय 90वें वार्षिकोत्सवस्यावसरे अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां मैराथन इत्यस्य आयोजनं कृतम्। प्रायः 3.5 किलोमीटर मितं मैराथन इत्येतत् आकाशवाणी भवनात् आरभ्य कृषिभवने, रेलभवने, आरबीआई भवने च भूत्वा पुनः आकाशवाण्याम् एव समाप्तम्। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य प्रसारभारत्याः च कर्मचारिणः स्वीय परिवारस्य सदस्यैः च सह अस्यां मैराथन धावन प्रतियोगितायां भागं ग्रहीतवन्तः। सर्वे प्रतिभागिनः धावन समापन पदकं प्राप्तवन्तः। पुरुष महिला विभागयोः शीर्षत्रयेभ्यः धावकेभ्यः पारितोषकानि प्रदत्तानि। अस्माकं संवाददात्रानुसारं प्रसारभारत्याः सीईओ गौरव द्विवेदी, आकाशवाण्याः महानिर्देशकः राजीव कुमार जैनः च स्पर्धायै हरितध्वजं प्रदर्शितवन्तौ। भारतस्य सिमरनजीत कौर इत्येषा अद्य सांघाई नगरे आयोजितस्य आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इत्यस्मिन् महिलानां रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवती इति वार्ताः।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: सौरभ भैया।
0: हाँ पूर्व भैया,
1: क्या हाल चाल है?
0: हाल चाल सब बढ़िया है, बस मौसम के हम देख रहे हैं कैसे जो है, रात में एकदम जाड़ हो लागत है और दिन में एकदम गर्मी हो लागत है।
1: बिल्कुल सही कहा भैया। अच्छा

0: एक चीज है, तमाम देखो पंच भाई जहां इसे थोड़ा बहुत परेशान नहीं हुआ, तमाम पंच भाई का लाभ भी उठाए रहे हैं।
1: बिल्कुल लाभ उठा रहे हैं। और इस समय देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पर्यावरण यहाँ कैसे संरक्षित किया जाए।
0: बिल्कुल सही कहे हो, तो वह तो बता रहे हैं। अब देखो नर्सरी में जाओ तो 10-50 मनई उका टहलत मिली है तुमका, कहे कि देखो बिरवा खरीद रहे हैं और वही सोचते हैं कि पानी गिरगवा है, खेत में नमी है, मेड़न पर नमी है, तो बिरवा लगवा दी जाए। तो देखो जो पर्यावरण संरक्षण है इसका एक जो मुख्य जड़ है, आधार है, वही हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी वनस्पति है।
1: बिल्कुल भैया, कैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएँ, है ना, जिससे जो है वातावरण में यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, तो वैसे जो है अपन वातावरण शुद्ध हो और पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए। वही के
0: बिल्कुल
1: साथ साथ यह ज़रूरी है कि जैसे पानी बरस रहा है तो ये जो वर्षा का जल है इसका संचयन कैसे किया जाए, है ना।
0: देखो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो हमरे पंच भाई चूंकि अब या तो एक प्रकार से बेमौसम की बारिश है, लेकिन बरसात जब आवत है तो वही के पहले वे अपनी खेत की तैयारी कर लेते हैं। जो खेत में रुके वाला पानी है वो खेत में रुकत है, और जो घर में स्टोरेज करे वाला है वे रोके वाला है, उसका घर में रोका जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। इसके साथ में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक का प्रयोग बहुत बढ़ी हुआ है ना। कोनो सामान ले जा रहे हैं तो प्लास्टिक वाली थैली ले के जा रहे हैं, पन्नी जी का कहा है जी का, बहुत जगह निमोना का कहा ऐसे कुछ कहा थे,
0: बिल्कुल भैया,
1: है ना, कुछ सर सबको अपन पंच भाई अलग अलग तरीके से कहा थे, तो उसका प्रयोग करते हैं तो वह बहुत खतरनाक होते हैं, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल विकी अपेक्षा देखो हम पंच का जो घरेलू झोला का या
1: हाँ
0: बोरा
1: कपड़ा के झोला
0: का
1: होते हैं।
0: हाँ इस्तेमाल करी तो वो एक देखो दीर्घकालिक तक चलते हैं, और वही उसे कोनो पर्यावरण का नुकसान भी ना होते, क्योंकि जो झिल्ली या पॉलीथीन जो हम प्रयोग करी थी का सिर्फ एक बार प्रयोग करी, बाद में का फेंक देते हैं।
1: बिल्कुल, उनका फेंक देते थे तो वह जमीन में जाके, हाँ जो उन पानी वर्षा के होते हैं उनका नीचे जाने नहीं देते कोई चीज हो, तो इसे जब जाने नहीं देते तो अंदर के जो उन भूमि है वह खराब होते और उसे जो है अपन पर्यावरण भी खराब होते।
0: बिल्कुल, अगर जो खेतन में यहाँ पहुंच जाते हैं तो खेत की भी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो
0: तो
1: यह के
0: इसे
1: जरूरी है कि जो ये पन्नी है इसका इस्तेमाल न करें प्लास्टिक के लिए, है ना, अपने झोलन का प्रयोग करें। और दूसरा बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो उन कचरा होते है ना, तो इसमें गीला कचरा है सूखा कचरा है इसका अलग अलग रखे चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा थे हो, और गीला और सूखा तो अलग रखो, जो घर के अवशेष भी हैं उनके लिए भी देखो सब बतावा करते हैं कि अगर जो किचन के अवशेष हम लोग जिका कहते हैं ग्रहवाटिकम प्रयोग के लिए, तो वह का उपयोग हो सकते हैं।
1: कहे मियाँ
0: जो ग्रहवाटिका होते
1: ग्रह
0: हैं और
1: वाटिका,
0: हाँ और
1: हाँ
0: किचन के जो अवशेष होते हैं, जो मान लिया हुआ कुछ
1: रसोईया
0: निकला
1: क्या,
0: रसोई केर, तो
1: हाँ
0: वही का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अपेक्षाकृत फेंके के।
1: बिल्कुल भैया, तो इसलिए जरूरी है जैसे टीवी है या जो बल्ब जलते हैं या फ्रिज है, इनको सबका अनावश्यक नहीं चलाओ चाहिए। अगर इनका अनावश्यक नहीं चलावा जी तो इसे ऊर्जा बची वह पर्यावरण जो है अच्छा रखे में यहाँ बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखा।
0: बिल्कुल सही कहा थे। अच्छा देखो भैया एक चीज़ है, बातें तो तमाम हैं लेकिन अब अपने गांव की जो दशा है वह पहले से देखो बहुत भिन्न हो चुकी है। सब लोग चाहे पर्यावरण के प्रति हैं या शिक्षा के प्रति या स्वास्थ्य के प्रति, सब जागरूक हो रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: जागरूक हो रहे हैं और डिजिटल हो रहे हैं
0: बिल्कुल, अच्छा इनका
1: अपन।
0: कारण जागरूक हो का भी डिजिटल है, तो आओ यह से संबंधित एक वार्ता सुन लीन जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो यह वार्ता है डिजिटल पथ पर बदलता ग्रामीण भारत, इनके वार्ताकार हैं।
1: राधेश्याम दीक्षित भैया, तो एका सुना जाए और जाना जाए।
0: बिल्कुल
2: आज की इस विशेष वार्ता में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे गांवों के भविष्य को नई दिशा दे रहा है, वो है डिजिटल पथ पर बढ़ता ग्रामीण भारत। आज का युग डिजिटल युग है, मोबाइल फोन हो या इंटरनेट की सुविधा और सभी प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं, ये सभी सुविधाएं अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रह गई हैं। अब आधुनिक तकनीकी क्रांति, जिसे डिजिटल क्रांति भी कहा जा रहा है, ये तेजी से गांवों तक पहुंच रही है। कभी जो काम करने के लिए हमें शहरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आज वही काम हम अपने गांवों में बैठकर मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी ही आसानी से पल भर में कर सकते हैं। डिजिटल पथ पर आगे बढ़ते ग्रामीण भारत में ये बदलाव कई रूपों में देखने को मिल रहा है। इसमें हम बात करते हैं शिक्षा की। गांवों में अच्छी और गुणवत्ता परक शिक्षा की पहुंच एक बड़ी समस्या थी, इसमें व्यापक सुधार हुआ है। इस कमी को पाटने में डिजिटल माध्यम बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज तकनीकी प्लेटफॉर्म्स के अनेक माध्यमों से बच्चे ऑनलाइन ढंग से आसानी से और बेहद कम लागत में पढ़ाई कर रहे हैं।

सरकार के स्वयं पोर्टल से निःशुल्क शिक्षा, तकनीकी शिक्षा देश भर के विद्यार्थी पा रहे हैं। स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से वे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ऑनलाइन कक्षा में प्रतिभाग ले रहे हैं और नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। इससे गांव के बच्चों को भी शहरों के बच्चों के बराबर अवसर मिल रहे हैं। डिजिटल पथ के चलते ही आज हर मोबाइल फोन पर पूरी दुनिया सिमटी आ रही है और कमाल की बात है कि ये सब कुछ हो रहा है बहुत ही कम खर्च में। आज डिजिटलीकरण की ही देन है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को कई राज्यों में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खाते में धनराशि सरकार भेज पा रही है। शिक्षा की तरह ही डिजिटलीकरण ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी मुश्किलों को आसान किया है। डिजिटल तकनीक ने किसानों की खेती बाड़ी के साथ ही सरकार की योजनाओं की पहुंच बढ़ाई है, किसानों और ग्रामीणों की जिंदगी को भी आसान बना दिया है। अब देखिए, आजकल किसान अपने मोबाइल पर मौसम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वे समय पर बुआई और कटाई का निर्णय ले पाते हैं। इतना ही नहीं, मौसम की सटीक जानकारी मिलने से खेतों में फसलों का भारी नुकसान भी अब रुक गया है। इसके अलावा किसान भाइयों को नई नई खेती की तकनीकें, उन्नत बीजों और खाद के बारे में भी जानकारी आसानी से अपने मोबाइल फोन पर ही मिल जाती है। कई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनके उपयोग से किसान साथी अपनी फसल की फोटो अपलोड करके कृषि सलाह भी ले रहे हैं। सरकार की कृषि, उद्यान और मंडी के साथ ही ONDC, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी एक खुला बाजार कहते हैं, ऐसी वेबसाइट्स के जरिए किसान अपनी फसल का उचित मूल्य जान सकते हैं और सीधे अपने जनपद, राज्य ही नहीं पूरे देश के बाजार से जुड़ रहे हैं। भारत सरकार देश के हर एक किसान को किसान सम्मान निधि डिजिटलीकरण के चलते ही सीधे किसान भाइयों के खाते में भेज पा रही है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत आज गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC या जन सुविधा केंद्र या कहीं कहीं किसान सुविधा केंद्र भी इन्हें कहा जाता है, बनाए गए हैं। ये सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। आज खतौनी, खसरा योजनाओं के लिए आवेदन करना आसान हो गया है। जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब अब ग्रामीण जनता की पहुंच से बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। इसी तरह इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण लोग सभी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी देश की सभी तरह की प्रतियोगिताओं में आवेदन कर पा रहे हैं। अब किसी को भी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती। आधार कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड, बैंकिंग सेवाएं, ये सभी सुविधाएं अब गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। डिजिटल पथ पर आगे बढ़ते भारत के गांव-गांव में ग्राम सचिवालयों के माध्यम से डिजिटल क्रांति से प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हो रहा है। बैंकिंग और लेन देन के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है। डिजिटल क्रांति का प्रभाव इस पर भी पड़ा है। आज ग्रामीण लोग भी डिजिटल पेमेंट जैसे UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM का उपयोग कर रहे हैं। इससे न केवल समय की बचत हो रही है बल्कि लेन देन भी सुरक्षित और पारदर्शी हो गया है। सरकार की कई योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रहा है, जिससे भ्रष्टाचार में भी कमी आई है। आज देश के हर एक गांव में BC सखियां, जिन्हें बिजनेस कोरेस्पोंडेंट कहा जाता है, ये बैंकिंग की सारी सुविधाएं घर घर तक पहुंचा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी डिजिटल तकनीक का बड़ा योगदान है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से तेजी से बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लोग शहरों के डॉक्टरों से आसानी से सलाह लेने लगे हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। कई जगहों पर स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी और जागरूकता भी डिजिटल माध्यमों से दी जा रही है। हर मौसम में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता अब डिजिटल तकनीक के माध्यम से आसानी से जन जन तक पहुंच रही है। ये सही है कि डिजिटल पथ पर आगे बढ़ते ग्रामीण भारत की बहुत सी चुनौतियों का समाधान हुआ है।

0: और कामकाज आसान और तेज हुआ है। लेकिन इस डिजिटल यात्रा में कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। बहुत से गांवों में इंटरनेट की गति और नेटवर्क की समस्या अभी भी कई जगहों पर बनी हुई है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। कई लोग अभी भी मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को डिजिटल तकनीक से जोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं इन चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग सिखाया जा रहा है। लोग धीरे धीरे डिजिटल तकनीक को अपनाते जा रहे हैं और इसके लाभ को अच्छी तरह से समझते हुए प्राप्त करते जा रहे हैं। श्रोताओं, आज जरूरत है कि हम सभी इस डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा बने, अपने बच्चों को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रेरित करें, किसानों को नई तकनीक से जोड़ें और गांव के हर व्यक्ति को डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि डिजिटल तकनीक केवल सुविधा का साधन नहीं है, बल्कि ये गांवों के विकास का एक मजबूत आधार बन चुकी है। अगर हम इसका सही उपयोग करें तो हमारा ग्रामीण भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि विकास की नई ऊंचाइयों को भी छुएगा।
1: सौरभ भैया,
2: हाँ पूर्व भैया,
1: देखो भैया कत्ती बढ़िया जानकारी दिहिन राधेश्याम दीक्षित भैया की डिजिटल पथ पर बढ़त भय। देखो अपन जो ग्रामीण भारत है
2: वो कैसे बदल रहा है और पंच भाई का कैसे उपयोग कर रहे हैं, तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल भैया धन्यवाद।
2: अब एक चीज और जरूरी है, समझ मौसम है, मौसम यहाँ अचानक देखो आज जैसे बहुत धूप है दोपहर में, है ना, तो अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि लू चली।
1: बिल्कुल भैया,
2: है ना, तो लू से बचाव के लिए अब सावधानियां जो है वो बहुत जरूरी है।
1: हाँ तो भैया सावधानियां बता दो पंच बहन की यहाँ कि देखो दिन में अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें तो सूती कपड़ा वगैरह गमछा वगैरह पानी लेके निकलें।
2: बिल्कुल पानी लेके निकलें। और दूसरी बात यह है कि अब गर्मी बहुत तेज हुई है ना, तो गर्मी में जरूरी है कि प्यास ना लगे, तब हूँ थोड़े थोड़े समय पर थोड़ा थोड़ा पानी पियत रहें।
1: बिल्कुल,
2: है ना, तीम पानी की मात्रा शरीर में बनी रहे और लू हो लगे से बच जी हैं, है ना।
1: बिल्कुल,
2: और जैसे अपने गांव देहात के सब जो उन पर पारंपरिक पेय हैं, जैसे सतुआ है, शरबत है, आम पन्ना है, बेल का शरबत है, हैं, और नारियल पानी, ये सब अपन पिए रहें तो ये जो है शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं और ठंडा रखते हैं।
1: तली भनी चुनी चीज़ों से देखो परहेज करा जाए इस समय, और देखो भैया रखा हुआ खाना कतई न खावा जाए।
2: बिल्कुल रखा हुआ न खावा जाए, और दूसरी बात जो नहीं सब्जी खाई जाए वो भी मौसमी खाई जाए, है ना, ताकि सेहत के लिए बढ़िया जो है लाभदायक रहा है। और जब धूप में है निकलें तो आँखें में है जो है चश्मा जरूर लगा लें।
1: बिल्कुल सही कहा
2: है ना।
1: तो और देखो भैया इसे बातें तो बहुत होती हैं,
2: हाँ,
1: लेकिन पंचभाइन का एक और देखो इस समय चल रहा है कि हर जगह देखित है न्योता आए रहे हैं, हाँ, चाहे हाँ, शादी विवाह हो चाहे मुंडन हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो आओ एक मुंडन गीत सुन लीजिए।
2: बिल्कुल सुना जाए
1: श्रीवास्तव के स्वर।
2: बिल्कुल बिल्कुल।

0: सौरभ भैया।
1: हाँ अपूर्व भैया।
0: देखो भैया, कत्ता शक्ति श्रीवास्तव भेनी गौनई सुनाइन कि मुंडन में देखो कत्ती खुशी होत है। और देखो अपना जो भारतीय परिवेश है, इमा हर अवसर पर लोक संगीत का महत्व है।
1: बिल्कुल, लोक संगीत का महत्व है। और देखो यू सिर्फ अवसर के बात नहीं, अपने संस्कृत से जुड़ा हुआ है।
0: हाँ।
1: और एक ही एक बहुत ही सांस्कृतिक विरासत है, एक ही धरोहर है। तो ये धरोहर के यहाँ संरक्षित रखना और पारंपरिक रूप से उसका आगे बढ़ाना, यूँ हम सब लोगों का एक जोन है, कर्तव्य है।
0: बिल्कुल सही कहो। और देखो और तमाम चीज़ें हैं, जैसे अब तो तमाम विधाएं धीरे धीरे लुप्त हो जा रही हैं। एक या पहले हम पंच सुना करते रहे, नौटंकी रहे, ढोला रहे, हाँ, लेकिन तब हूँ जो कुछ बचा है तो उनका हमका लोगन के यहाँ संरक्षित करे चाहिए।
1: और दूसरी बात, जो नहीं लुप्त हो गई हैं तो उनको जो है कैसे पुनर्जीवित किया जा सके, उनका कैसे जो है पुनः उनका शुरुआत की जा सके, अपने जो नई पीढ़ी है उनका बतावा जा सके, उनके अंदर जो है उनके लिए दिलचस्पी पैदा की जा सके, इपरो काम करे के जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: कहे कि यह तो हमारे असली पहचान है भारत के।
0: बिल्कुल सही बात भैया। अच्छा अब तो ये देखो घर परिवार की बातें हो ही गई हैं, कुछ खेती बाड़ी संबंधित बातें कर ली जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो देखो इस समय खेतन की अगर जो तरफ रुख किया जाए तो हुआ पर अपनी जो जायद फसलें हैं बहुत बढ़िया तरीके से देखो बाजार में पहुंच रही हैं, लेकिन थोड़ा कहूँ ना कहूँ जैसे पहले हम लोग बात कह रहे रहन, मौसम दिक्कत कर देते हैं।
1: बिल्कुल भैया, मौसम दिक्कत के देते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो उन बारिश हो रही है या बीच में धूम निकल रही है, इसका ध्यान रख कर अपन का काम कर रखे का निर्णय लिया जाए।
0: बिल्कुल, जब से हम पंच भाई देखो वैज्ञानिक पद्धति अपनाए रहे हैं, अब तो गांवन तक का जी का भैया कहते हैं तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं और हम लोग मौसम की जानकारी दीन करित है। तो जो मौसम का ध्यान में रख के यहाँ भैया जो पंच भाई कर रहे हैं काम, निश्चित रूप से वही अपेक्षा करते अन्य लोगों की, देखो उनका कम नुकसान।
1: बिल्कुल भैया, और डिजिटल इंडिया के तहत तो देखो हर फोन पर सारी जानकारी उपलब्ध है, हैं अपने पंचवन जानकारी जा रही हो, मान लो कोई वैसे तुरंत जानकारी चाहे तो तुरंत जो उन्हें उसका उपयोग करो और फोन से जानकारी लो, लेकिन उसका

0: जानकारी लेके एक बार जो है एक बार देख जरूर लो कि यह सही जानकारी है, इस तो नहीं क्यों कहूँ गलत है।
1: नहीं बिल्कुल सही, इके प्रथम में सचेत रह कि यहाँ चाहिए। और चूंकि देखो मान लिया अनावश्यक रूप से देखो कहूँ कहूँ ज़्यादा बारिश हो जाता है या कहूँ कहूँ पर देखो अपेक्षाकृत कम बारिश होते जब पानी की आवश्यकता होते तो वैसे जो हमारी खेती पर प्रभाव पड़ते हैं वही का दूर करे के देखो वैसे तमाम साधन हैं हमारे पंच भाई अपनावत भी हैं, चाहे पशुपालन के रूप में हो चाहे भैया मौन उत्पादन जी का कहा मधुमक्खी पालन।
0: हाँ, कहा कि मतलब यू है आप कृषि वानिकी के बात करना चाहते हो।
1: बिल्कुल, यह भी एक ऐसा तरीका है जो कि हम पंच जो कहूँ कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई ई माध्यम से भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक एक खेत ने जो है अनाज है फल है चारा ईंधन से सब प्राप्त किए जा सकते हैं न।
1: हाँ,
0: जैसे फसल खराब हो के स्थित हो तो इससे पहले जो है फसल के अपना बीमा करा ले,
1: बिल्कुल सही कहा,
0: जिसे अपना जो पैसा के जोखिम है कम हो जी है। और दूसरा बात यू है कि जो मृदा संरक्षण है यू बहुत जरूरी है कि पेड़न के जड़ें जो मिट्टी यहाँ मजबूत पकड़ रखती हैं है, उनका जो है ध्यान रखे चाहिए।
1: देखो वानिकी का मतलब भी यही है कि एक खेत में हम हर तरीके की लगभग फसल या फल या सब्जी उत्पादन कर सके। मान लिया जैसे हम वर्तमान समय में गेहूं लगाए रहन कुछ समय पहले या धान लगेबा कुछ समय बाद, इके बीच में देखे थे हम पंच तमाम मेड़ पर ऐसी तमाम जगह खाली पड़ी रहते हैं जिसका उपयोग हम पेड़ लगावे के लिए कर सकते हैं, चाहे वो देखो नींबू का पेड़ हो या जिका भैया पपीता का है या करौंदा का है, ये तमाम ऐसे पेड़ हैं जो कि एक बार लगाए के बाद में हमका समय समय पर फल भी देते रहते हैं और जो हमारी मेड़ पर चूंकि लगे होते हैं तो जो बारिश के कारण या कोई कारण बस जो हमार भूमि का कटाव है उसका भी रोकत है।
0: उनका भी रोकत है। और दूसरा बात यह है कि जब तक ये लगे रहते हैं तब तक जो भूमि है पूरी भूमि का सदुपयोग हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: है ना, ऐसा नहीं है कि कोई जो है चीज़ जो है परी खराब हो रही है। और दूसरा बात यह है कि जब एक साथ होते हैं तो एक साथ रख रखाव हो जाते हैं, एक साथ जो है जब चीज़ें लगती हैं तो थोड़ा लगतों में यहाँ सहूलियत मिल जाती है, तो यह सब जो है बहुत फायदा करते हैं।
1: दूसरी चीज़ है हम देखें भैया अगर जो साधारण खेत परे होते हैं इसे तो उम्मा थोड़ा फसल कटे के बाद कहूँ ना कहूँ देखा तो बढ़िया ना लगा, लेकिन जब पहले से मेड़ पर एक प्रकार से हम बागवानी कह रखे है एक खाई बना के यहाँ तो फसल
0: अरे
1: खूबसूरत लागत हुआ। यह बहाने मने ही है घर के है पता लगत पहुना है कहीं मौसिया चाह टहल आओ चले तुमका दिखाई।
0: अरे हम खुद ही कहियो दाए ऐसे जाई थे शाम के यहाँ जब अपन जो प्रोग्राम जो नावत है लोग आयता ने हम खेती किसानी यूं हुए मेड़ के किनारे बैठ के यहाँ आराम थे तहदिल से सुनी थे पेड़ की छाया में।
1: बिल्कुल सही कहो, तो इसे अब जो तुम बताओ देखो ईंधन की भी प्राप्ति हो जाते है मान लिया तमाम ऐसे पेड़ होते हैं और एक झाड़ के रूप में अगर जो हम कोई पेड़ लगा रहे हैं जैसे करौंदा है नींबू है तो इसे भी देखो साथ साथ में यूं बचाव हो जाते हैं कि जो बाहरी पशु हैं वह अपेक्षाकृत कम खेत में घुसते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, विका देखे हाँ यू डराता है कि कहूँ छुटा ना जाए।
1: बिल्कुल
0: यह है वो नहीं घुसते हैं तो यूँ तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात आप कहो, यूँ अपने पंच भाई जो उन्हें सबका अपना ओक चाहिए।
1: तो ये तमाम चीज़ें जो कुछ हैं अगर जो हम कोई चीज़ मिलाए का करे थे तो ये वानिकी के रूप में यह आवत है कि हम विविधता लाई अपनी खेती
0: हाँ,
1: बाड़ी
0: उनका मुख्य बात यह है कि कैसे जो उन खेती में अगर कोई नुकसान होते तो उनका कैसे जो उन है उनकी क्षतिपूर्ति हो, और दूसरा बात यह है कि नुकसान होते कैसे बचे।
1: बिल्कुल सही कहा थे। और दूसर एक और चीज़ है भैया देखो जो पर्यावरण के प्रति जो कृषि वानिकी है ये एक बहुत बड़े भैया अर्थ के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि इसे जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होते है वो पर्यावरण का बहुत शुद्ध करते हैं।
0: बिल्कुल पर्यावरण यहाँ शुद्ध करते हैं और जब ऑक्सीजन का उत्सर्जन होते है तो अचून अपन पंच भाई हैं हम लोग हन है ना, और जो अपन जानवर हैं इनके सेहत के लिए लाभदायक होते हैं जब बढ़िया ऑक्सीजन मिलते हैं।
1: और जो पेड़ पौधन के जो अवशेष होते हैं जैसे मान लीजिए पत्ता झड़ रहे हैं या और है कुछ फल गिरे हैं तो वही खेत में यहाँ गिरे के बाद में कहूँ ना कहूँ उर्वरक के रूप में भी उनका उपयोग हो जाता है।
0: बिल्कुल उर्वरक के रूप में यहाँ उपयोग हो जाते है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी यू है कि कृषि वानिकी यहाँ अपनावा जाए है ना। और कृषि वानिकी देखो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे प्रमुख हो तो कईयों प्रकार के हैं लेकिन मुख्य तीन प्रकार के होते हैं कि ऐसे फसलों के साथ जैसे आप बताओ कि पेड़न के संयोजन
1: बिल्कुल
0: है ना जी का बात है कृषि सिल्वी कल्चर, और दूसरा होते है एक सिल्वो पास्चर जी का मतलब होते है कि पेड़न के साथ घास के मैदान और पशुपालन है, और तीसरा होते है कृषि सिल्वो पास्चर जी का समझा जाए तो फसल पेड़ और पशुपालन तीनों एक साथ कैसे प्रबंधन की

0: जाए तो ई तरह तरह से अपन पंच जो है अपनी सहूलियत और ज़रूरत और अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके आधार पर कृषि वानिकी का प्रयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, देखो अच्छा, और एक चीज़ है, आज दिन है शुक्रवार, ठीक है, और शुक्रवार के दिन देखो हमारे पंच भाई इंतजार किया करते हैं कि कौन का कोई ऐसे समाचार है, ऐसे देखो भैया जानकारी है या खबर है जो हमारे काम के लिए है, क्योंकि शुक्रवार के दिन हम अपने पंच भाई का सुनवाई था
0: किसान
1: किसान
0: डायरी
1: डायरी।
0: जो कि बीते सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित होते हैं, जिनके माध्यम से हमका सबका अपने पंच बहन के यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण समाचार

0: और समाचार जाने जाएं।
1: किसान बहनों भाइयों नमस्कार। किसान डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियां। केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिया फलों की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर। भारत शुरू कर रहा गेहूं का निर्यात। गेहूं के उचित और लाभकारी मूल्य में वृद्धि। 30 नवनिर्मित बृहत गो संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 15 मई से अभियान। घर बैठे मिलेगी खतौनी की प्रमाणित नकल। गौशालाएं बनेगी जैविक खेती का उत्पादन केंद्र। ब्लॉक स्तर पर बन रहे ऑटोमेटिक मौसम केंद्र और स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम आयोजित। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में आयोजित फ्रूट होरोजाइन 2026 में प्रतिभाग करते हुए उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित न रखा जाए, अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में किसानों के साथ ही फल उत्पादन तथा निर्यात सहित इसके कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों के साथ सीधा संवाद करते हुए श्री चौहान ने कहा कि भारत अगर दुनिया के फल बाजार में आगे बढ़ना चाहता है तो फलों की गुणवत्ता सुधारना सबसे जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेल्फ लाइफ बढ़ाने, निर्यात के दौरान गुणवत्ता बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन करने पर अब विशेष ध्यान देना होगा। कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि CSIR के वैज्ञानिक संस्थान, निर्यातक, एपीडा और संबंधित एजेंसियां मिलकर एक टास्क फोर्स बनाएंगी। यह टास्क फोर्स उत्पादकों और निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने तथा एक प्रभावी और समयबद्ध एक्शन प्लान तैयार करने का काम करेगी। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने क्लीन प्लांटिंग मटेरियल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसी क्रम में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जहां आम, अमरूद, लीची, एवोकाडो जैसे फसलों के लिए रोग मुक्त, नस्ल शुद्ध पौध सामग्री तैयार और संरक्षित की जाएगी। भारत में 4 साल के बाद एक बार फिर गेहूं का निर्यात शुरू हो रहा है। बम्पर फसल उत्पादन और वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों के चलते भारतीय गेहूं अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिर से प्रतिस्पर्धी बन गया है। इसी के साथ भारत ने गेहूं निर्यात की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंज्यूमर गुड्स कंपनी ने कांधला बंदरगाह से 22,000 मेट्रिक टन गेहूं की पहली खेप लोड करना शुरू कर दिया है। यह खेप संयुक्त अरब अमीरात के लिए भेजी जा रही है। भारत ने वर्ष 2022 में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद 2023 और 2024 में भी खराब मौसम और उत्पादन में गिरावट के कारण प्रतिबंध जारी रखा गया। उस दौरान घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें बढ़ गई थीं और भंडार भी कम हो गया था। इस साल रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद के चलते सरकार ने गेहूं निर्यात की अनुमति दे दी है। बम्पर फसल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमतें और माल भाड़े में बदलाव के कारण भारतीय गेहूं फिर से वैश्विक खरीदारों के लिए आकर्षक बन गया है। केंद्र सरकार ने सीजन 2026-27 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 355 रुपये से बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। नया मूल्य 10.25% बेसिक रिकवरी रेट पर लागू होगा। सरकार ने यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया है। नए FRP से देश भर के लाखों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने साफ किया है कि यदि गन्ने की रिकवरी दर 10.25% से अधिक होगी तो प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा। केंद्र सरकार FRP तय करती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें इससे अधिक राज्य सलाहकारी मूल्य घोषित करते हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में किसानों को ज़्यादा रेट मिलता है। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विगत दिनों प्रदेश के 15 जनपदों के 30 बृहद गो संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया। इसके तहत जनपद हरदोई में 7, शाहजहांपुर में 6, गोरखपुर, जालौन, अलीगढ़ तथा

बस्ती में दो दो और फर्रुखाबाद, सीतापुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, बिजनौर, फतेहपुर, बांदा तथा हापुड़ में एक एक बृहद गो संरक्षण केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना से न केवल गोवंशों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा बल्कि उनके लिए चारा, पानी, चिकित्सीय सुविधाएं एवं स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। प्रदेश में अब तक कुल 630 बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि 518 केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में बृहद गो संरक्षण केंद्रों के निर्माण हेतु 1 अरब रुपये का प्राविधान किया गया है। डॉक्टर नित्यानंद सुशील को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने 7 मई 2026 को अपना नया पदभार ग्रहण कर लिया है। डॉक्टर सुशील इससे पहले भी इस संस्थान में पौध रक्षा अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं। इसके अलावा वे भारत सरकार के अन्य कई संस्थानों में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि कोई भी पात्र किसान किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित न रहने पाए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 15 मई से विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों और बैंकों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया। बैठक में श्री शाही ने कहा योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का डाटा का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय पोर्टलों पर फार्मर आईडी का प्रभावी उपयोग कर योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाए ताकि पात्र किसानों की पहचान कर उन्हें लाभान्वित किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए खतौनी की प्रमाणित नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब लोगों को तहसील या कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे घर बैठे ही खतौनी की प्रमाणित प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत आप राजस्व विभाग की आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद खतौनी की नकल विकल्प का चयन कर जनपद, तहसील और ग्राम की जानकारी भरनी होती है तथा संबंधित घाटा संख्या का चयन करना होता है। निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते ही प्रमाणित पत्र तुरंत डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाती है। यह सुविधा 24 घंटे संचालित है और UPI सहित विभिन्न डिजिटल भुगतान माध्यमों को सपोर्ट करती है। प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशालाओं में गोबर से कंपोस्ट, बायोगैस, जीवामृत एवं घनामृत के उत्पादन, उपयोग और विपणन को लेकर व्यापक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने समीक्षा बैठक में कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को पुनर्स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध गोबर संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग कर बड़े पैमाने पर जैविक खाद का उत्पादन संभव है और इसके माध्यम से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश की गौशालाओं को उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करते हुए उन्हें कंपोस्ट, जीवामृत एवं अन्य जैविक उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाए। मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में लाखों मेट्रिक टन कंपोस्ट उत्पादन की क्षमता मौजूद है जिसके लिए गौशालाओं, डेयरी इकाइयों और किसानों के स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने झांसी, चंदौली, फर्रुखाबाद, कानपुर और बाराबंकी जैसे जनपदों में संचालित सफल बायोगैस एवं जैविक खाद मॉडलों का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया कि इन मॉडलों का अध्ययन कर प्रदेशव्यापी विस्तार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गोबर आधारित खाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उसका मानकीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि पैकेजिंग, नमी स्तर और गुणवत्ता को स्पष्ट मानक तय किए जाएं ताकि किसानों को विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सकें। इसके साथ ही सहकारी समितियों के माध्यम से गोबर की उपलब्धता बढ़ाने तथा यूरिया के साथ इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए। प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज स्थापित किए जाने की योजना।

0: योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय भागीदारी निर्धारित है तथा इसे वर्ष 2024-25 से आगामी 5 वर्षों तक लागू किया जा रहा है। बैठक में श्री शाही ने कहा कि योगी सरकार किसानों को सटीक मौसम आधारित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के माध्यम से प्राप्त मौसम डेटा को फसल उपयोग, फसल बीमा, आपदा प्रबंधन तथा कृषि योजनाओं के निर्माण में किया जाएगा, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में विगत दिनों स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ और सहारनपुर मंडल के किसान, उद्यमी, निवेशक एक मंच पर जुटे। इस तरह के आयोजन राज्य के 18 मंडलों में किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में डेयरी सेक्टर की को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसकी थीम स्वदेशी उन्नत गोवंश, समृद्ध निवेश, सुरक्षित भविष्य और खुशहाल उत्तर प्रदेश है। इस आयोजन में मेरठ और सहारनपुर मंडल के किसान, पशुपालक, उद्यमी और निवेशक एक मंच पर एकत्र हुए। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव पशुधन एवं दुग्ध विकास मुकेश मिश्रा और दुग्ध आयुक्त श्रीमती धनलक्ष्मी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रगतिशील पशुपालकों और निवेशकों ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे अन्य किसानों को भी नई दिशा और प्रेरणा मिली। यह थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: अपूर्व भैया, हाँ सर, देखो अपने पंच भाई किसान डायरी सुनी, जो कि बीते सप्ताह के कृषि समाचार पर आधारित रहा है, और जिका संपादन के हिंदा है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, और जिका लेखन वाचन के हिंदा है शिवराम पांडे भैया। तो ये दोनों उनके बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माध्यम से हमका सबका अपने पंच भाई के यहाँ कृषि संबंधित महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हुए, और उम्मीद है अपन पंच भाई जो उनका समाचार सुनी हैं उनका सदुपयोग करें हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से।
2: बिल्कुल भैया। अच्छा देखो, एक चीज़ है कि अबे इस समय जगह जगह पर हम तो देखे ना, चाहे जो भी राजस्व कर्मचारी हैं, जैसे कि लेखपाल हैं, कानूनगो हैं और प्रधान भैया हैं, ये सब देखो गांवन में जाएगा पंच भाई से, किसान भाई से बता रहे हैं कि अपनी वही फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लें।
1: बिल्कुल, फार्मर रजिस्ट्री जरूर करा लें, अपन फार्मर आईडी जरूर बनवा लें, कहे कि इससे अपन पंच भाई के यहाँ बहुत सारे लाभ प्राप्त हैं।
2: देखो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, वह कहूँ ना कहूँ यह से देखो संबंधित है, जिनकी कंप्लीट है फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी, उनके पर आई रहा है, और जो कोई कारणवश ना करवा पाए ना है तो उनका देखो भैया किसान सम्मान निधि ही ना मिल पाई रहे। और इसके अलावा खेती बाड़ी से संबंधित जितनी योजना है, चाहे वह किसान क्रेडिट कार्ड हो या फसल बीमा योजना हो
1: या डीबीटी में यहाँ आसानी हो या ऋण की सुविधा हो, है ना, केसीसी है या सटीक कृषि सलाह हो, तो ये जो भी जानकारी है तो इनकी जानकारी मिलना बड़ा आसान हो जाता है ना। कहे कि यू एक डिजिटल रूप से ने एक पहचान पत्र है जी के माध्यम से ने यू साबित होते हैं कि अपन पंच भाई जो है किसान है और फार्मर आईडी उनकी बनी है, तो फिर अपने जो सारे जो उपयोग है लाभ है वो ले सकते हैं,
2: लाभ ले सकते हैं, और समय समय पर देखो उनका सूचना भी दी जा सकते है, और उनका अगर जो कोनो दिक्कत आ रही है तो वर्तमान समय देखो थोड़ी बहुत दिक्कतें ये जरूर आई कि कहूँ ना कहूँ आधार माँ और जो खतौनी है उमा नाम अगर जो नाय मेल खा रहा है या दिक्कत आई है सुनामी यहाँ, या आधार से देखो फोन नंबर लगा होना जरूरी है, तो ये थोड़ी थोड़ी कमी अगर जो कोई मियाँ हैं पंच भाई मियाँ किसान भाई मियाँ तो वो अपनी सुधार लें।
1: फार्मर रजिस्ट्री और फार्मर आईडी का यह तो एक लाभ है कि जितना उनका जिका अंग्रेजी में कहते हैं डाटा, मतलब जानकारी है, जैसे किसान क्या नाम है, भूमि क्या विवरण है, फसल क्या विवरण है, उनकी भौगोलिक स्थिति है, जो उन सब जानकारी है वो सब एक जगह आ जाते हैं। तो उसके बाद जैसे आप बताओ कुछ कुछ समस्याएं आ जाती, समस्याएं फिर नए होती हैं, तो अपने पंच भाई जो हैं उनका कोई भी योजना हो उनका लाभ उठाने में आसानी होते है और सरलीकरण हो जाते योजना।
2: बिल्कुल भैया, देखो अगर जो ये समस्या है तो तुम्हारा देखो रजिस्ट्रेशन हो ही ना पी है, ये पहले दिक्कतें दूर हुई हैं, रजिस्ट्रेशन तब हुई है,
1: और जब हुई तो उसके बाद इसको दिक्कत नहीं हुई।
2: भैया ई के बाद में यहाँ तुम जी का कहते हैं कि हर सरकार की योजना में भागीदार के रूप में जाने जी हो और भागीदारी कह सकते हो। अब देखो कबो कबो देखे तो देखो

0: या अब चाहे धान की बिक्री हो, गेहूं की बिक्री हो, वी के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होते लेखपाल का, ऑनलाइन करे कि यहाँ पढ़ाते हैं। यही तरीके, चाहे देखो खाद लेना हो या पास लेना है, जो भी है, अब फार्मर रजिस्ट्री और आईडी के द्वारा ही संभव है भविष्य में। तो इमा कतई न देखो, हमारे किसान भाई चूके हैं, यूँ अपन जरूर करा लें। और एक चीज़ है, देखो हम के माध्यम से एक चीज़ जरूर कहा चाहिए कि तमाम पंच भाई जो अशिक्षित हैं, कोई कारणवश ना ही वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं या उनका कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए जो हमारे बीच के भाई लोग हैं उनकी मदद करें भैया,
1: मदद
0: और
1: करें,
0: उनका पहुँचावा हुआ
1: उनका
0: तक।
1: पहुँचावें। देखो सबका साथ में लेके चले चाहिए, सरकारों का थे सबका साथ सबका विकास। तो फिर अपने पंचों भाई के हैं, अपने जो साथी पंच हैं उनका साथ और विकास में योगदान देख चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भैया कि जो जैसे खाद है या बीज है पर सब्सिडी मिलत है, यहाँ किसान आईडी से जुड़ के सीधे जो है मिल जाते हैं खाते में है, और कालाबाजारी उसे रुकत है। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी भूमि यहाँ लेकर विवाद हो जाते हैं अपने पंच भाई में यहाँ। तो जब इनकी जानकारी डिजिटल रूप से ने संरक्षित होते हैं कि कौन भूमि है, तो भूमि के स्वामित्व में जो लेके विवाद होते हैं वो जो धोखाधड़ी होते हैं कमी आवत है।
0: बिल्कुल भैया सही कहो। तो निश्चित रूप से हमारे पंच भाई देखो प्रयास कर भी रहे हैं, और सब लोग मिलकर एक इका सबकी बनवाए रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखो यह योजना भी सफल हुई है और सब लोग भागीदारी के बनी हैं।
1: बिल्कुल। और अब जो है अपने पंच भाई के यहाँ जो है कुछ गीत गौनाई फिर से एक बार सुनवा दी जाए, कहे कि वह जरूरी है।
0: तो एक देखो है सतीश चंद्र श्रीवास्तव के सुरमा, कहरवा सुन लीन जाए, गुरिया चढ़ी के मचनवा,
1: बिल्कुल
0: उड़ावे सुगना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सुना जाए।

0: सौरभ भैया
1: हाँ पूर्विया,
0: देखो कितनी बढ़िया गवनोई सुना है। अब तनी जल्दी जल्दी बाजार भाव बताओ पंच भाई।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अपन पंच भाई बाजार सुनो है, बाजार भाव सुने। बाजार भाव जो है ये चार मंडन के है, लखनऊ, कानपुर, गोंडा, अयोध्या है। जो उन गेहूँ है वो लखनऊ में है 2595 रुपया, कानपुर में है 2585 रुपया, गोंडा में है 2518 रुपया और अयोध्या में है 2585 रुपया। और जो छोटा चना है वो लखनऊ में है 6620 रुपया, कानपुर में है 6440 रुपया, गोंडा में है 6750 रुपया और अयोध्या में यहाँ 6320 रुपया। और जो पका टमाटर है वो लखनऊ में यहाँ 1300 रुपया, कानपुर में यहाँ 1250 रुपया, गोंडा में यहाँ 1200 रुपया और अयोध्या में यहाँ 1200 रुपया। और गुड़ की बात करें तो लखनऊ में यहाँ 4620 रुपया और कानपुर में यहाँ 4260 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से थोक बाजार भाव रहा है चार मंडिन का। अपने पंच भाई के यहाँ जो है कल के कार्यक्रम बता दीजिए।
0: हाँ बिल्कुल, कल के कार्यक्रम अपन जो है सुनिए, लोकायतन कार्यक्रम वार्ता है जल संचयन से ग्रामीण समृद्धि, वार्ताकार है नंदकिशोर वर्मा। और खेती किसानी में अपन जो है सुनिए, ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सामयिक कृषि कार्य, ये क्या, वार्ताकार हैं डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र भैया और भेंटकर्ता हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब मौसम की जानकारी कुछ दे दो।
1: बिल्कुल, मौसम की जानकारी यह है कि आज 8, 12, 13 और 14 मई के यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ वर्षा होकर संभावना है। और जबकि 9, 10, 11 मई के यहाँ मौसम शुष्क रही। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है 8, 9, 12, 13, 14 के यहाँ कहीं कहीं पर वर्षा हुई। और जो है 10 और 11 मई के यहाँ मौसम शुष्क रहने की संभावना
0: बिल्कुल
1: है।
0: भैया, तो देखो यह के साथ साथ अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो
1: अपने
0: पंचमहल से
1: पंच
0: जल्दी
1: भाई
0: जाए विदा।
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण

0: को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हों पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने बताया कि RDSS योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल SMS और WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहाँ एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: NCRB रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार

0: कार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, बहुत लाइट रेनफॉल छीटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10-11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
0: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
2: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
3: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
2: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
4: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
5: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
2: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं अंग्रेजी कार्यक्रम।
2: गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज शिबा वेलकमिंग यू टू द इंग्लिश प्रोग्राम। लाइफ माय डियर फ्रेंड्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। द मोर वन अंडरस्टैंड्स एंड द बेटर वन डज इट, द मोर एवेन्यूज ओपन अप for a systemic and systematic interpretation, where not only one

0: Akashwadi at 90.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। आइए

अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम था जीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है फरेब।

0: जिगर फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे धर्मराज उपाध्याय का काव्य पाठ।

हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज है 8 मई और 8 मई को पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिन मानवता, सेवा, करुणा और निस्वार्थ सहायता की भावना को समर्पित है। इस अवसर पर उन लाखों स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता है जो संकट, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और महामारी जैसी परिस्थितियों में मानव जीवन बचाने के लिए निरंतर कार्य करते हैं। विश्व रेडक्रॉस दिवस का आयोजन महान समाजसेवी और रेडक्रॉस आंदोलन के संस्थापक हेनरी डुनेन की जयंती के उपलक्ष में किया जाता है। उन्होंने मानव सेवा को जीवन का सर्वोच्च धर्म माना। युद्ध में घायल सैनिकों की पीड़ा देखकर उनके मन में एक ऐसे संगठन की स्थापना का विचार आया जो बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों की सहायता करे। इसी सोच से रेडक्रॉस आंदोलन की शुरुआत हुई। रेडक्रॉस संस्था का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना, पीड़ितों की सहायता करना तथा स्वास्थ्य और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह संस्था जाति, धर्म, भाषा और देश की सीमाओं से ऊपर उठकर कार्य करती है। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, महामारी और युद्ध जैसी परिस्थितियों में रेडक्रॉस के स्वयंसेवक सबसे पहले

सहायता के लिए आगे आते हैं। आज के समय में जब दुनिया अनेक चुनौतियों से जूझ रही है, तब रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ गई है। कोविड महामारी के दौरान भी दवाइयों, रक्तदान, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की सहायता की। रक्तदान शिविर के आयोजन में भी इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विश्व रेडक्रॉस दिवस हमें यह संदेश देता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमें भी अपने समाज में जरूरतमंदों की सहायता, रक्तदान, सेवा और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए। छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में आशा की नई किरण बन सकती है। विश्व रेडक्रॉस दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि मानवता, प्रेम और सेवा का महापर्व है। ये दिन हमें दूसरों के दुख को समझने और मानव कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देता है।

0: आइए अब हिंदी कार्यक्रम के संक में एक काव्य पाठ आपको सुनवाते हैं। प्रस्तुत कर रहे हैं श्री धर्मराज उपाध्याय।
1: सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दुख क्या होता है कि प्रेमियों के लिए होती हिज्र बड़ी दुखदाई, मुझको तो बेवफा की दीद दुख देती है। और साफ साफ मना करे लगे कंजूस भला, दानियों से दान की उम्मीद दुख देती है। और फिर अगला सुनाता, और दुख क्या होता है कि एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, दूसरे ने कहा मुझे पाप दुख देता है। एक ने कहा कि अपराध दुख देता मुझे, दूसरे ने कहा मुझे पाप दुख देता है, तीसरे ने कहा जिसे पाले रहा उम्र भर, आस्तीन का वो मुझे सांप दुख देता है। मेरी अगली रचना सुनिएगा। श्री कृष्ण जी ने चाहा कि हम दोबारा अवतार लें, हमने मना किया। हमने कहा प्रभु वो द्वापर युग था जो चल गया, अब ये कलयुग है, इसमें दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा कि क्या दिक्कत आएगी। तब मैंने कहा कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, कदम की ठंडी छाँव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा। प्यारे दोस्तों, हरा रहे, नीला रहे और रंग लाल रहे, खुशियां हो चारों ओर कोई ना मलाल रहे। हरा रहे, नीला रहे और रंग लाल रहे, खुशियां हो चारों ओर कोई ना मलाल रहे, भाईचारे की होली खेली जाए हर बार, प्रार्थना है देश में तरक्की का गुलाल रहे। कि होली खेलने के लिए मैं जो ससुराल चला, मेरे पीछे पीछे संग संग आए बाबूजी, बाबूजी भी चल दिए। होली खेलने के लिए मैं जो ससुराल चला, मेरे पीछे पीछे संग संग आए बाबूजी, जहां चला वहां चले, जहां रुका वहां रुके, जैसा मेरा ढंग उसी ढंग आए बाबूजी, जैसा मेरा ढंग उसी ढंग आए बाबूजी। और बाज सी आंख लिए शेर जैसी चाल लिए, बाज जैसी आंख लिए शेर जैसी चाल लिए, बाज जैसी आंख लिए, जीतने को जैसे कोई जंग आए बाबूजी। और ससुर हमारे बस रोकते ही रह गए, दौड़कर सासू जी को रंग आए बाबूजी, दौड़कर सास जी को रंग आए बाबूजी। और ये हवा जब फगुनहट गाए,

0: तो होली का मजा आए, हवा जब फगुन हट गाए तो होली का मजा आए, नशा हर अंग में छाए तो होली का मजा आए, विरह की वेदना में एक बिरहिन कह रही थी कल, बलम परदेश से आए तो होली का मजा आए, बलम परदेश से आए तो होली का मजा आए, कि सिर पर गंगा माथ चंद्रमा और गले में नाग, सिर पर गंगा माथ चंद्रमा और गले में नाग, डम डम डमरू बजा के भोले खेल रहे हैं फाग जोगीरा सारा रा रा रा।
1: ये काव्य पाठ अभी आप सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे श्री धर्मराज उपाध्याय। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यही संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: हम आपको याद दिला दें, रविवार 10 मई को हेल्थ एंड फिटनेस कार्यक्रम में विषय है डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, जिसके लिए आपकी समस्याओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में होंगे डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ खान। समय होगा दिन में 12 बजे से 1 बजे तक, जिसे आप सुनेंगे एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे अरशद हुसैन चिश्ती के गाए नात व कव्वाली।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे अरशद हुसैन चिश्ती के गाए नात व कव्वाली। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

अभी आपने सुना अंदाज फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था अलका याग्निक और उदित नारायण ने। इन्हीं की आवाज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है क्या कहना।

अभी आपने सुना कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब यहीं संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर

0: हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा

0: मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रति

0: के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई।

0: चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: of her maiden World Cup medal. Simranjeet will now face world number one Kang Shae-young of South Korea in the semi-finals. Indian women's recurve team has already assured the country's first medal in the tournament with a stunning win over record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-final yesterday. In football, India scripted history by qualifying for the quarterfinals of the AFC Under-17 Women's Asia Cup for the first time with a commanding 4-0 victory against Lebanon in the final Group B fixture at Suzhou in China today. For India, Preetika Burman in the 7th and 85th, Alva Devi Senjam in 36th and Joya in 72nd minute scored goals. Reaching the semi-final of this tournament would guarantee India's spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. And in IPL cricket, Delhi Capitals have set a target of 143 runs for Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi. Put into bat, Delhi Capitals scored 142 runs, losing 8 wickets in the stipulated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to be the first BJP Chief Minister of West Bengal, swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मनुष्यात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: कल सुबह सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: आज सुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की।

0: अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कजगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद से उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई सीपीआईएम वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली है कांग्रेस के 5 जबकि वीसीके सीपीआई और सीपीआईएम नेज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबराह ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज टीवी के पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था। हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवी के की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनशियात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवात की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनशियात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनशियात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनशियात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जबकि मुनशियात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये मौशरे माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
3: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में घरेलू एलपीजी की सप्लाई मुस्तहकम है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की जानिब से एलपीजी का जखीरा खत्म होने की कोई इत्तला नहीं है। नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नज़र कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफिन तक पहुंचा दिए गए। ये आकाशवाणी है।

भारत और सिंगापुर ने अहम शराकत दारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की पांचवीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनाक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के उसूल का इआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्मे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। ये आला सतही जायजा फाल हुकुमरानी, शहरियों पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेश की वार्निंग निजाम, वसाइल की फरोग और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि उसे 1 माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट सीजनिंग और फाइनेंसिंग समिट के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकती एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें 1 माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नज़र एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलांस प्रोग्राम, सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक़वामी सेहत हुकाम के तआवुन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में जमीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया जमीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ, मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजव्वजा अराजी की पैमाइश के इकदाम क़िता अराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी, सफाई और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी

करते हुए हाईकोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान यह फैसला किया गया। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और अद्वैत सेठना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी मंसूबाबंदी की इंतहाई नाकिस पेशरफ्त पर तनकीद की और कहा कि यह कानून 5 दहाइयों से ज्यादा नाफिजुल अमल है। खवातीन के कौमी कमीशन NCW ने संगीन जंसी जराइम के मामलों में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई, सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन और बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमीन के लिए मौजूदा पैरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंगयू जू को सीधे सेटों में 0-6 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ एक जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की किम जियोंग से होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। आप भी सुन सकते हैं अपनी पसंद के फिल्मी की, जिसके लिए आपको करना होगा हमें ईमेल। हमारा ईमेल एड्रेस है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो कीजिए हमें मेल और सुनिए अपनी पसंद की फिल्मी की। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु रामशंकर रक्षा मौर्या मिर्जा तोरा बेग पप्पू इन सभी ने सुनना चाहा है संजू फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने।

संजोग फिल्म की इसी गीत को सुनना चाहा था। खालिसपुर उचगांव अमेठी से मोनू सेठ, गीता सेठ, परी सेठ, हर्षित भोला, रेशु, मनीष तिवारी और आंचल सेठ ने। और इन्हीं के साथ ही नरहरपुर सफीपुर जिला उन्नाव से कुलदीप तिवारी, किरण, लक्ष्मी, राहुल, मीठी, मोहिनी, सार्थक और उनके पूरे परिवार ने इसी गीत को सुनना चाहा था। कार्यक्रम में आइए अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं कुदरत फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर कैथल, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की।

कुदरत फिल्म के इसी गीत को सुनना चाहा था। कानपुर से अनिका शर्मा, प्रतीक शर्मा, विष्णुकांत, अखिल शर्मा और पूरा परिवार। और इसी के साथ ही नीता, नेहा, गौरव, राजाजीपुरम लखनऊ से, इन सभी ने इसी गीत को सुनना चाहा था। कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है चलते चलते, जिसे गाया है अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने। इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है रिग्नी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। अगली फरमाइश हमारे पास आई है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामुरिया, अजय तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया और इसी के साथ ही आनंद दोहरे, अनुशील शर्मा, सूर्यांश शर्मा, अनुप्रिया सिंह, इन्हीं ने सुनना चाहा है वास्तव द रियलिटी फिल्म का गीत जिसे गाया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम संतोषनपुरवा सांडी जनपद हरदोई से, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा ने ये फरमाइश भेजी है और ये सुनना चाहते हैं रिफ्यूजी फिल्म का ये गीत जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।
1: रात की हथेली पर चांद जगमगाता है
2: मगर चांद सांस नहीं लेता।

आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ऐतराज़ फिल्म का ये गीत। और इस गीत को सुनना चाहा है नेहा वर्मा, कोमल, सुधाकर, अंजलि, अर्पिता, ब्रह्मनाखेड़ा, जिला हरदोई से। और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है भोपाल से शिवम, शीतल, नेहा, रामजीत और राम बाबू की। और यही गीत हमारे साथ सुनना चाहते हैं विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे, ग्राम ललहुआ मितौली, ज़िला खीरी से। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ऐतराज़ फिल्म का ये गीत।

0: एतराज फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@lucknow.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಟ್ 90.
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का चित्रपट से। कार्यक्रम में पहला गीत हमने लिया है महबूब की मेहंदी फिल्म का, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना अभिमान फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वरों में। फिल्म का नाम है आंधी।

मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था हिमालय की गोद में। कार्यक्रम में अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है चिराग।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना इज्जत फिल्म का ये गीत, और इसी के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे शीतल प्रसाद मिश्रा का तबला वादन। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं झपताल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर